सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है सोमवार, शक संवत 1948, आषाढ़ महीने की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। 5:58:45 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है।

0: इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी रांची है। खेती किसानी में चर्चा का विषय है प्राकृतिक खेती। जानकारी दे रही है अनीता तिर्की।
3: वर्षा के मौसम में कई दिनों तक लगातार वर्षा के कारण मधुमक्खी घर से बाहर नहीं निकल पाती है जिससे पराग और नेक्टर एकत्रित नहीं हो पाता है। इस अवधि में मधुमक्खियों के उपयुक्त फसल बहुत कम होते हैं। तेज बौछार और आंधी में कॉलोनी को बचाना भी मुश्किल होता है। वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों के शत्रु कीट और रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। मधुमक्खियों के समुचित प्रबंधन का एक सामान्य होता है कि कॉलोनी अधिक कमजोर ना हो जाए।
4: प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को

0: बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक खेती में एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती की जा सकती है, क्योंकि 1 एकड़ के लिए बीजामृत, घन जीवामृत और जीवामृत तैयार करने के लिए गाय के 1 दिन का गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता होती है। इस खेती पद्धति में बीज के उपचार के लिए बीजामृत, उर्वरक प्रबंधन के लिए घन जीवामृत और जीवामृत, गोबर की खाद, कंपोस्ट और प्रकृति में उपलब्ध जैसे रॉक फास्फेट और जिप्सम तथा रोग व्याधि प्रबंधन के लिए नीमाशास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो प्राकृतिक खेती का मूल आधार देशी गाय का गोबर और गौमूत्र के साथ फसल अवशेष प्रबंधन है, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के अंदर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करना है, बढ़ोतरी करना है। अर्थात प्राकृतिक खेती का अर्थ है सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती। प्राकृतिक खेती आज की जरूरत इसलिए बन गई क्योंकि आज सभी लोग चाहते हैं कि उनकी जो मिट्टी है वो स्वस्थ और टिकाऊ खेती के लिए बनी रहे, मानव और पशुधन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जल संरक्षण के लिए, भूमंडलीय उष्मीकरण को रोकने के लिए, देश में उर्वरकों पर खर्च होने वाले अनुदान राशि में कमी लाने के लिए, गुणवत्ता युक्त अधिक फसल उत्पादन के लिए, गौ वंश की बढ़ोतरी और महत्व को समझने के लिए, रसायन मुक्त फसल उत्पादों की बढ़ती मांग के लिए, किसानों की किसानी में बदलाव और अधिक आमदनी के लिए आज प्राकृतिक खेती ज्यादा आवश्यक है। प्राकृतिक खेती करने के लिए मुख्य घटक बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसा है। प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले बीजामृत को आप खुद तैयार कर सकते हैं। बुआई करने से पहले बीजों का संस्कार अर्थात बीजों का उपचार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बीजामृत बहुत ही उत्तम है। इसके निर्माण के लिए देसी गाय का गोबर 5 किलोग्राम, देसी गाय का मूत्र 5 लीटर, चूना 250 ग्राम, पानी 20 लीटर और खेत की जो मिट्टी है मुट्ठी भर, इन सभी को पानी में घोलकर 24 घंटे तक रख देना है। दिन में 2 बार लकड़ी से इसे अच्छी तरह से हिलाना है। इसके बाद बीजों के ऊपर बीजामृत डालकर उन्हें शुद्ध करना है। उसे छाया में सुखाकर फिर बुआई करनी है। बीजामृत द्वारा शुद्ध हुए बीज जल्दी और ज्यादा मात्रा में उगते हैं, जड़ें तेजी से बढ़ती हैं, पौधे भूमि के द्वारा लगने वाले बीमारियों से बचे रहते हैं और अच्छी तरह से पलते भी हैं और बढ़ते भी हैं। जीवामृत की मदद से जमीन को पोषक तत्व मिलते हैं और यह एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिसकी वजह से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां बढ़ जाती है। इसके अलावा जीवामृत की मदद से पेड़ पौधों को क्वक और जीवाणु से उत्पन्न रोगों से बचाया जा सकता है। जीवामृत बनाने के लिए देसी गाय का गोबर आप 10 किलोग्राम लें, देसी गाय का मूत्र 8 से 10 लीटर, गुड़ 1 से 2 किलोग्राम, बेसन 1 से 2 किलोग्राम, पानी 180 लीटर और पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है मुट्ठी भर इसको लेंगे। इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह टंकी में घोल ले। घोल को घड़ी की सुई की दिशा में 2 से 3 मिनट तक घोले। टंकी को बोरी से ढककर 72 घंटे तक छांव में रख दे। सुबह शाम 2-2 मिनट घोले। इस घोल का 7 दिन के अंदर अंदर आप उपयोग कर सकते हैं।
1: प्राकृतिक खेती, खेती किसानी में अभी आप इस विषय पर चर्चा सुन रहे थे। चर्चा कर रही थी अनीता तिर्की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन, संकलन और वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।

0: इंसान की मौलिक इच्छाओं से पहली इच्छा भोजन की होती है। भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे एक ऐसा रसायन बनता है जो प्राण ऊर्जा बनकर संपूर्ण शरीर तंत्र का संचालन करता है। हमारे भोजन से ही प्राण शक्ति पैदा होती है जो शक्ति केंद्र को संचालित करती है। इसलिए भोजन का महत्व है और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हो। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन तीन प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन जहां मन को शुद्ध करता है, वहीं तामसिक और राजसिक भोजन मन में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा करते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसलिए आहार शास्त्र में सात्विक भोजन की सिफारिश की गई है और तामसिक तथा राजसिक भोजन से बचने का आग्रह किया गया है। एक दिन पवनार आश्रम में विनोबा भावे ने उपवास की उपयोगिता पर कहा कि भगवान महावीर ने जितने दिन खाया उससे अधिक दिन नहीं खाया, तभी वे अपनी साधना में सफल हो सके। भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मनियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है भोजन। भोजन सुस्ती लाता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि जो भोजन का संयम नहीं करता वो सुस्ती को कैसे मिटा सकेगा। जो आलस्य, सुस्ती और प्रमाद को नहीं मिटा पाता वो आत्मनियंत्रण कैसे कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं, यदि हम उन इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते तो इन इच्छाओं के आधार पर चलने वाली दूसरी जटिल इच्छाओं को भी कभी समाप्त नहीं कर सकते। जीने की कामना, भोजन की कामना, ये मौलिक इच्छाएं हैं। यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता तो इनके आधार पर चलने वाली अन्य जटिल इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक सबसे पहले अपनी मौलिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे, उन पर नियंत्रण करे। भोजन का संयम ना हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। भोजन में कम खाने का महत्व है। कहा गया है कि जितने आदमी भूख से मरते हैं उससे अधिक ज्यादा खाने से मरते हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है।
1: ये था आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है इस देशभक्ति रचना के साथ।

بدنك फिल्म प्रेम पुजारी की रचना थी, स्वर था मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और सैथियों का। और अब आपको सुनवा रही हैं लता मंगेशकर की गाई भक्ति रचनाएं।

0: लता मंगेशकर की गायी इस रचना के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का।
1: एक व्यायाम

0: या सवेरे उठ जाते हैं। के स्वास्थ्य के लिए एक टॉनिक का कार्य करेगा। एपिसोड
1: एपिसोड 147 147।

पुत्र वेओ की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुनिए। आपको बता दें आज के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता का विषय होगा सुबह की सैर और आपका स्वास्थ्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल, इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। 7:45 पर खुला आकाश कार्यक्रम में सुनिएगा संध्या चौधरी से उनकी स्वरचित कविताएं। 9:10 से 9:25 तक आप सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज डॉक्टर बुद्धा थाली से बातचीत आप सुनेंगे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता से राग अलहिया बिलावल में ध्रुपद गायन।

10 बजे आप वो साथ चलें कार्यक्रम में, आपकी मुलाकात हम करवाएंगे श्री अनूप बिरथरे से। विषय होगा नक्सल अभियान में स्पेशल टास्क फोर्स का योगदान। इनसे बातचीत की है सिंधु मिश्रा ने।

0: दिन के 12 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा गृह लक्ष्मी। इसमें भेंट वार्ता का विषय होगा हार्मोनल इनबैलेंस और स्ट्रेस। एक बजकर 20 मिनट पर अनुरंजनी में सुनिएगा सिप्रा बोस को। इनसे आप सुनेंगे ठुमरी और दादरा। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे 200+ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+2000 पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+4500 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामः क्रमशः प्रकाशितः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं सीबीएसई इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्तजनाः मृताः सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NEET UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। स्वास्थ्य चर्चा में आज की भेंटवार्ता का विषय है सुबह की सैर और आपका स्वास्थ्य। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
4: मित्रों, अपने शरीर को स्वस्थ और अपने को खुश मिजाज रखना आज के समय की एक जबरदस्त मांग है। शारीरिक व्यायाम और जीवन शैली में परिवर्तन करना, ये दोनों बड़े ही एक अच्छे उपाय हैं और इस चीज को आप अपने जीवन में डाल लेते हैं तो आप खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अब अपने आप को ये देखिए कि आप प्रातःकाल क्या सवेरे उठ जाते हैं और सैर को निकलते हैं? यदि नहीं तो आज से ही आप शुरू कर दें। प्रातःकाल की सैर आपके स्वास्थ्य के लिए एक टॉनिक का कार्य करेगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो सुबह की सैर का आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार बर्णवाल। डॉक्टर साहब, सुबह की सैर कितना लाभकारी है अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए?
5: बिल्कुल आपने सही बोला है कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए सुबह का सैर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट है, जितना मेरे लिए सोना इम्पोर्टेंट है। सुबह का सैर हमारे ज़िंदगी में इतनी बड़ी चेंज लाती है, खास करके अगर मानसिक और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हम रहना चाहते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सुबह का सैर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इस सैर से एक नहीं अनगिनत फायदे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अगर आप मैं अगर थोड़ा डिटेल में इससे बात करूं तो सुबह की सैर के कारण से हमारे ब्रेन में एक रासायनिक पदार्थ का सिक्रीशन निर्माण ज़्यादा होता है जिसे सीरोटोनिन कहते हैं, और ये सीरोटोनिन के कारण से मुझे स्ट्रेस फ्री महसूस होता है, यानी स्ट्रेस से संबंधित जितने भी बीमारी हैं, चाहे वो तनाव हो, एंजाइटी हो, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन यानी सुसाइडल आइडिएशन, इतना ही नहीं किसी को गुस्सा आ रही हो, इरिटेशन हो, उसमें ये काफ़ी लाभदायक होता है। यानी सुबह की सैर से जो रासायनिक पदार्थ का सिक्रीशन होता है वो ये सारी चीज़ों को हटाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई भी आदमी सुबह का सैर करे तो इस रासायनिक पदार्थ की अधिक ब्रेन में जो एक सिक्रीशन होता है उसके कारण से लोगों का कंसंट्रेशन बनेगा, उसे उसकी मेमोरी अच्छी होगी, याद अच्छी रहेगी, उसे बहुत ताजगी महसूस होगा और पूरे दिन भर उसे फ्रेश ताज़ा महसूस होगा। ये तो एक मानसिक की अस्थिरता और अच्छे मानसिक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर शरीर की बात करें तो सुबह के सैर के कारण से, सुबह के व्यायाम के कारण से, मॉर्निंग वॉक के कारण से हमारे शरीर पर इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे सैर करने से हमारे बॉडी का जितनी भी तंत्र हैं, चाहे वो पाचन तंत्र हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सांस लेने वाली हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, कार्डियक सिस्टम हो, मतलब ये हम कह सकते हैं कि यदि कोई सुबह में सैर करता है डेली और रेगुलर सैर करता है तो उसे हार्ट की बीमारी नहीं होगी, उसे डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी, हाइपरटेंशन नहीं होगा उसे, सांस की कोई बीमारी नहीं होगी, उसके खाना अच्छे से पचेंगे, भूख अच्छे से लगेंगे, वो पाचन क्रिया में जो प्रॉब्लम है वो भी उसको कभी नहीं होगा। इतना ही नहीं, हमारे लीवर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे मांसपेशी अच्छे से काम करते हैं, ब्रेन तो बताइए ही बहुत तरोताजा महसूस करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुबह की व्यायाम करने से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक जो एक अच्छी होनी हेल्थ होना चाहिए, ये स्वस्थ होना चाहिए, वो पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है और हर आदमी को सुबह का सैर करना चाहिए।
4: जी, और सुबह की सैर से मन में सकारात्मक परिवर्तन भी आता है और एक हम अनुशासन पूर्वक जीवन भी जीते हैं, हम शासित हो जाते हैं जीवन में।
5: जी जी,
4: पर डॉक्टर साहब देखा जाए कि आजकल की जो जीवन शैली है वो बड़ी अव्यवस्थित हो गई है, दिन भर काम करना और खाने का समय का कोई निर्धारित नहीं है और देर रात तक जग कर काम करना और सुबह उठने में परेशानी होना, तो अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करें, सुबह उठने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए?
5: एक्चुअली अगर कोई आदमी सुबह में उठना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जल्दी सो जाए, क्योंकि सुबह उठना ये चीज़ डिपेंड कर होता है कि वो सुबह जब उठता है तो उसे रिफ्रेश रखना चाहिए, उसे इनर्जेटिक महसूस होना चाहिए, उसे रिचार्ज महसूस होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मेरे में सुबह उठते ही एक नए जोश आ गया हो, और ये तब होगा जब वो रात में भरपूर नींद लेगा, जो 6 से 8 घंटा रात में सोना चाहिए। जहाँ तक खाने पीने की सवाल है तो एक बैलेंस डाइट जो आप हर अक्सर बताते हैं कि वो बैलेंस डाइट लोगों को लेना चाहिए, जिसमें जो बैलेंस डाइट में हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, ये सब सारी चीज़ होने चाहिए, और अपनी जो एक रूटीन लाइफ है, जो एक बैलेंस लाइफ है, उसको मेंटेन करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति बैलेंस लाइफ को मेंटेन करता है, यदि वो बैलेंस डाइट लेता है, जो ज़रूरी चीज़ें वो लेता है, भरपूर पानी पीता है और टाइम पर सोता है और आदत डालता है कि वो एक टाइम पर सोए और फिर सुबह वो 5-6 बजे उठ जाए ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए, और ये सारी चीज़ें यदि वो होती है तो सुबह में उसे ताजगी महसूस होगी और साथ साथ यदि वो सैर की ओर निकल पड़ता है, खास करके जो उसकी टाइमिंग और ये सब फिक्स है, तो इस सैर से व्यायाम से उसे काफ़ी तरोताज़ा महसूस होगा और हेल्दी महसूस करेगा।
4: जी, सुबह उठते ही मन में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक नई ऊर्जा के साथ हम उठते हैं और नई सुबह की ओर हम अग्रसरित होते हैं और दिन भर हम ताज़ा महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना समय प्रातःकाल की सैर को दिया जाए और सैर कैसे किया जाए, किस गति से चला जाए? यदि हम बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं तो हम बहुत दूर तक भी जा सकते हैं, तो सैर करने की गति क्या होनी चाहिए?
5: एक्चुअली अगर धीरे धीरे अगर हम चलते हैं तो उससे हमारे शरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसे केवल एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट के अलावे साइकोलॉजिकल फ़ायदा महसूस होता है, लेकिन शरीर और ब्रेन को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। सुबह का सैर का मतलब होता है कि ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक, मतलब तेज़ी से चलें, वो उस तरह से तेज़ी से चलें कि आप चलकर थक जाएं, इस तरह का, जिसे ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक कहा जाता है, तेज़ी से चलें और थोड़ा हाँफें, थोड़ा पसीना निकले और इस ये कंडीशन हो, और ये सैर कम से कम 40 मिनट्स होनी चाहिए, यानी 40 मिनट टू 60 मिनट्स, 40 मिनट से 60 मिनट का मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग सैर, खासकर ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक बहुत ही लाभदायक होता है, और इसे यदि 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर अगर चलते हैं तो ये एक अच्छा माना जाता है, 3 किलोमीटर से कम फायदा नहीं करता है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन एवरेज 5 किलोमीटर अच्छा बोला जाता है कि 5 किलोमीटर चलने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर सप्ताह में 7 दिन अगर सैर करते हैं तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 6 दिन भी करें तो उतना ही फायदा है जितना 7 दिन में होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 40 टू 60 मिनट्स का सैर, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक, 6 to 7 डेज इन ए वीक, ये एक स्टैंडर्ड है और इसे अगर लोग अपनाएं तो वो स्वस्थ रह सकते हैं।
4: डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल उठता है कि प्रातः काल की ही सैर क्यों, सुबह में ही सैर क्यों नहीं, शाम को क्यों नहीं?
5: जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर लोग ऐसे बात करते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं तो अच्छा है कि हम इवनिंग में सैर कर लें, तो जनरली एडवाइस उसे किया दिया जाता है कि नहीं, सुबह अगर कोशिश कीजिए सुबह उठने का, क्योंकि जब सुबह उठते हैं और सुबह का सैर करते हैं तो उससे जितना लाभ मिलता है उसके कंपैरिजन में इवनिंग का सैर नहीं मिल पाता है। उसका ये कारण है कि सुबह में हम रिफ्रेश महसूस करते हैं, इनर्जेटिक महसूस करते हैं, रिचार्ज महसूस करते हैं, और उस समय हमारी वातावरण बहुत ही शांत रहती है, गाड़ियाँ नहीं चलती है, वातावरण में हमारे इन्वायरमेंट में पक्षियों की चहचहाट महसूस होती है, सूर्योदय होता है, तो ये सब का भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे ब्रेन में पड़ता है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि हम बड़े हंस के सुबह का मॉर्निंग वॉक करते हैं और करने के बाद जो मुझे दिन भर ऐसा लगता है कि हम कभी थके ही नहीं हैं, और सुबह से शाम तक अगर काम करते भी रहे मॉर्निंग वॉक के अलावे तो उसे इतनी थकान नहीं लगती है, और वो इसे ज़्यादा फायदेमंद लगता है कंपेरेटिवली इवनिंग वॉक से।
4: मित्रों, यदि आपने सुबह की सैर शुरू नहीं की है तो आज से ही सुबह का सैर शुरू कर दें, दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, और आप सुबह सैर करते हैं जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो यकीन मानिए आप तरोताज़ा रहेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर पवन कुमार बरनवाल आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
5: धन्यवाद।
0: सुबह की सैर और आपका स्वास्थ्य, इसी विषय पर अभी आप डॉक्टर पवन कुमार वरणवाल से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी रांची है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुरीली, फिल्मी गानों का हमारा ये प्रोग्राम है।

0: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सुबह सुरीली कार्यक्रम का पहला गाना है मैं ऐसा ही हूं फिल्म से। इस गाने को सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बीबी अपर्णा ने गाया है। समीर के बोल हैं, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

बीवी नंबर वन। इसी फिल्म का गाना आप सुनेंगे अभिजीत, अलका याग्निक, आदित्य नारायण और अनमोल की आवाज़ों में। समीर का लिखा यह गाना है, तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

ये फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अगला गाना है जानवर फिल्म से। इस गाने को सुनिधि चौहान और उदित नारायण ने गाया है। समीर के बोल है, संगीत आनंद मिलिंद का है।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: इससे गाने के साथ ही आज का सुबह सुरीली कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। खुला आकाश कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए संध्या चौधरी से उनकी स्वरचित कविताएं।
1: माँ से शुरू और माँ से ही अंत। माँ इस संसार की जननी है और उससे बड़ा कोई शख्सियत किसी के सामने नहीं है। तो मैं माँ पर ही सबसे पहली कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है माँ मुझे आने दो। माँ मुझे आने दो, बनकर कली खिल जाने दो। क्यों रोती है तू मेरे आने से, ख्वाब हो तेरा ये ख्वाब सच जाने दो। माँ मुझे आने दो, तेरे प्यार का अरमान हूँ मैं, मुझे भी अपने अरमान सजाने दो। तूने गुजारी है जिंदगी गुमनामी में, तूने गुजारी है जिंदगी गुमनामी में, मुझे अपनी पहचान बनाने दो। मुझे अपनी पहचान बनाने दो, माँ मुझे आने दो। खामोशी को तूने जीवन बना लिया, मुझे जिंदगी के मधुर गीत गाने दो। लिख जाऊंगी तेरा नाम एक दिन फलक पर, लिख जाऊंगी तेरा नाम एक दिन फलक पर। बनकर पड़ी उड़ जाने दो, बनकर पड़ी उड़ जाने दो, माँ मुझे आने दो। मेरी दूसरी कविता है इस जीवन से ओतप्रोत और सच्चाई से रूबरू कराती हुई। शीर्षक है जीवन चक्र। ना है कोई मंजिल ना है आशियाना, ना है कोई मंजिल ना है आशियाना, रास्ते का सफर है रास्ते में ही कट जाना। एक स्वप्न सा है जीवन, एक स्वप्न सा है जीवन, जो सुबह है टूट जाना, है स्वप्न में ही जीना और स्वप्न में ही मर जाना। एक चक्र है ये जीवन, एक चक्र है ये जीवन, बस इसको है जीते जाना। कुछ कर्ज है कुछ फर्ज है, कुछ कर्ज है कुछ फर्ज है, बस इनको है निभाना। है मदारी ऊपर बैठा, है मदारी ऊपर बैठा, उसका काम है खेल दिखाना। उसके हाथों की कठपुतली हमको है नचाते जाना। है सबने यही समझा, है सबने यही जाना, है सबने यही समझा और सबने यही जाना। एक दिन आएगा बुलावा, एक दिन आएगा बुलावा, और सबको है एक दिन ऊपर चले जाना, ऊपर चले जाना। मेरी तीसरी कविता जिंदगी से ही है। शीर्षक है परिंदा। जिंदगी के आसमान में उड़ते हैं ख्वाबों के परिंदे, कुछ अपने कुछ बेगाने से। जिंदगी के आसमान में उड़ते हैं ख्वाबों के परिंदे, कुछ अपने कुछ बेगाने से, हकीकत और फसाने से। बेसुध एक परिंदा उड़ता चला, मिला तो लहरों से कहता रहा, हवा ने तेरा साथ छोड़ दिया, हवा ने तेरा साथ छोड़ दिया, रुक कर आखिर पूछ लिया, रुक कर आखिर पूछ लिया, क्यों उड़ा जब आसमान अपना ना था, आसियाना ढूंढने चला था, तिनकों से महल था बनाना। अब घोंसला याद आता है, अब घोंसला याद आता है, जो पिंजरे की हकीकत देखी, बिखरे मोती चुनकर जो उड़ चला, बिखरे मोती चुनकर जो उड़ चला, आसमान ने भी साथ छोड़ दिया, आसमान ने भी साथ छोड़ दिया, उस रह गुजर को ले आया साथ अपने, उस रह गुजर को ले आया साथ अपने, शायद राहत मिले इस ठिकाने में। शायद राहत मिले इस ठिकाने। मेरी अगली कविता प्रेम पर है और समानता। तो आइए इस कविता को सुनते हैं कि प्रेम और समानता का क्या मापदंड है। सुनो, प्रेम की बात तो है ही खैर अपनी जगह। सुनो, प्रेम की बात तो है ही खैर अपनी जगह। बस एक बात और है जो वाजिब है कि रिश्ते में प्यार हो तो हो, रिश्ते में प्यार हो तो हो, सम्मान हो और हाँ ख्याल भी हो। सिर्फ प्यार नहीं, दोनों के बीच हो एक एहसास और भावना एक दूजे के सम्मान की। साथ हूँ समर्पित हूँ, साथ हूँ समर्पित हूँ तो हकदार भी हूँ। प्रेम के सिवा सम्मान और अपने एक वाजिब स्थान की, अपने एक वाजिब स्थान की। आइए एक जोश से भरी हुई कविता सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है भारत की नारी। मुझे गर्व है मैं भारत की नारी कहलाती हूँ, मुझे गर्व है मैं भारत की नारी कहलाती हूँ। आधुनिकता के दौर में भी मैं संस्कारी कहलाती हूँ। नमन है ये माटी जिस पर मैंने जन्म लिया, जा वार दूंगी धरती पर ये कसम खाती।

0: कहती हूँ, मुझे गर्व है मैं भारत की नारी कहलाती हूँ। वेशभूषा से आधुनिक पर दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लज्जा मेरा गहना यही सबको आज बताती हूँ। शिक्षा पर अधिकार हमारा, शिक्षा पर अधिकार हमारा, यह नारा लगाती हूँ। चट्टानों से टकराकर मैं अपना स्वाभिमान बचाती हूँ, मुझे गर्व है मैं भारत की नारी कहलाती हूँ, आधुनिकता के इस दौर में भी एक संस्कारी कहलाती हूँ। घर के आंगन से आसमान में उड़ान लगाती हूँ, रोके जो भी रास्ता पंख कतरना भी जानती हूँ। बिंदी चूड़ी पायल सिर्फ नहीं रहा मेरा गहना, बिंदी चूड़ी पायल सिर्फ नहीं रहा मेरा गहना, बंदूक कंप्यूटर मोबाइल है आज मेरा गहना। इसके बदौलत मैं देश का परचम लहराती हूँ, मुझे गर्व है मैं भारत की नारी कहलाती हूँ, आधुनिकता के इस दौर में भी एक संस्कारी कहलाती हूँ। वैसे सुंदर कोमल भारत की सशक्त नारी हूँ, वैसे सुंदर कोमल भारत की सशक्त नारी हूँ, पर वक्त पड़े तो बन जाती झांसी की रानी हूँ। परिवार समाज संस्कार की अभिमानी हूँ, इज्जत पर आंच आए बन जाती चिंगारी हूँ, मुझे गर्व है मैं भारत की नारी हूँ, मुझे गर्व है मैं भारत की नारी हूँ, आधुनिकता के इस दौर में भी संस्कारी कहलाती हूँ। आइए हम महिलाओं के एक संघर्ष की कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है संघर्ष। राह संघर्ष की तुझे अकेले ही चलना होगा, कर्म की शाख पर तभी खिल सकेंगे फूल। राह संघर्ष की तुझे अकेले ही चलना होगा, कर्म की शाख पर तभी खिल सकेंगे फूल। मेहनत के पानी से उसे सींचना होगा, निराशा में हाथों की लकीरों को दोष देना नहीं। मुश्किलों से भागेगा तू तो कभी सफल होगा नहीं, टूटते हौसलों के अंधेरों में तुझे दिया दृढ़ निश्चय का जलाना होगा, दिया दृढ़ निश्चय का जलाना होगा, राह संघर्ष की तुझे अकेले ही चलना होगा। मीत रिश्ते नाते सब साथ छोड़ जाएंगे, मीत रिश्ते नाते सब साथ छोड़ जाएंगे, सिर्फ सत्य तेरा साथ निभाएगा। कौन तेरा अपना है इस जहां में, कौन तेरा अपना है इस जहां में, तो खुद ही समझ जाएगा। जिंदगी तजुर्बा है जीने का, तुझे सीखना होगा, राह संघर्ष की तुझे अकेले ही चलना होगा। अगली पंक्तियां। है जिस रास्ते में मुश्किल, है जिस रास्ते में मुश्किल, है रास्ता वही सही, जो भागने लगे डरकर है सबसे बड़ा कायर वही। जिंदगी इम्तिहान है, जिंदगी इम्तिहान है, तुझे देना होगा राह संघर्ष की तुझे चलना होगा। परिश्रम की धूप में जो है चलता, परिश्रम की धूप में जो है चलता, सफलता की छांव उसी को है मिलती, जो अनवरत लड़ता है मैदाने जंग में, जो अनवरत लड़ता है मैदाने जंग में, जीत उसी को है मिलती, हारने का जो डर है तुझे उसे निकालना होगा, राह संघर्ष की तुझे अकेले ही चलना होगा। कर्म की साख पर तभी खिल सकेंगे फूल, कर्म की साख पर तभी खिल सकेंगे फूल।
1: खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप स्वरचित कविताएं सुन रहे थे। कवयित्री थी संध्या चौधरी।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, अब आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की

0: पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
0: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
0: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई हैं। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
4: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
5: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
6: ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
7: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
8: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
9: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेन्दु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में एफआईएच प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
0: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
11: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स INS दूनागिरी

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण। भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। बीआईटी मेसरा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध, शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया एमओयू। राज्यभर में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मॉनसून, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता

0: की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
2: सरकार पूरी कटिबद्ध थी, बच्चों के साथ ये वादा किया था कि ये जो री एग्जाम हो रहा है उसको पूरी सुरक्षा से, पूरी ईमानदारी से, बच्चों के सुविधाओं को देखते हुए कंडक्ट कराएगी। कम समय पे कराने के बावजूद किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी थी, तो एनटीए ने सरकार के सभी अंगों के साथ मिलकर इस एग्जाम को कराया है, जिसमें हमें सभी विभागों का योगदान मिला, सभी डिपार्टमेंट, सभी एजेंसीज का, जिसकी वजह से बिल्कुल टीम भारत, टीम एनटीए के समर्थन में आ गई, जिससे हम ये परीक्षा सुचारू रूप से कंडक्ट कराने में सफल हो पाए।
1: राजधानी रांची समेत राज्य भर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एनटीए और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू थी। राजधानी रांची में परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटाने का प्रयास किया गया तो उसका लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा। बीआईटी मेश्रा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध, शैक्षणिक सहयोग, संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाएं, छात्र एवं फैकल्टी विनिमय, इंटर्नशिप और फैकल्टी विकास कार्यक्रम संचालित करेंगे। बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने इसे अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार आधारित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि यह साझेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, जल संसाधन, जलवायु और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को नई दिशा देगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सबको छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अगुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अगुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने

0: दमन हो रहा है, कोयला माफिया है, उनको जेल में डालने की बजाय आंदोलनकारियों को जेल में डालने का काम किया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर जनाक्रोश मार्च परेड गोल ग्राउंड से, धनबाद के गोल ग्राउंड से आरंभ होगा और कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जाकर यह समाप्त होगा।
1: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 4 मिलीमीटर और खूंटी में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे। रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ सहित अन्य जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय हॉकी के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पुरुष और महिला दोनों टीमों ने विदेशी धरती पर शानदार जीत दर्ज की। ऑकलैंड में महिला टीम ने एफआईएच नेशंस कप 2025-26 फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता और प्रो लीग 2026-27 में जगह पक्की की। वहीं नीदरलैंड में पुरुष टीम ने प्रो लीग मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 नीदरलैंड को 3-2 से हराकर उलटफेर किया। भारत के लिए जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल दागे। झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की प्रथम वार्षिक आम सभा आईपीएस डॉक्टर सरोजनी लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के लगभग 55 पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल प्रशासक और पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान श्रीमती लकड़ा ने खिलाड़ियों को जागरूक करने पर जोर दिया।
2: जो भी एक्स प्लेयर्स हैं उनका हेल्थ बने रहे उसके लिए कई तरह से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम बना सकते, ज्यादा से ज्यादा संख्या एक्स प्लेयर्स जो है भाग लेंगे और ये एक तरह से उनका अच्छे हेल्थ के लिए भी वो अवेयरनेस बना सकते।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने नीट परीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, नीट यूजी में बैठे 20 लाख छात्र, बिहार में 9 फर्जी परीक्षार्थी धराए। दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान ने योगा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मांडर के डोभा में 2 बच्चों की डूबने से मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण, भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। बीआईटी मेसरा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया एमओयू। राज्य भर में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मॉनसून, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी रांची के प्रसारण के साथ फिलहाल मैं हूँ ओली मिंस। नमस्कार साथियों।

आकाशवाणी के रांच केंद्र से अब सुनिए लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नागपुरी लोकगीत जानकी देवी और साथियों के गाए हुए।

0: लोक रंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानकी देवी और साथियों के गाए नागपुरी लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का हमारा प्रोग्राम रस रंजन।
1: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

सुन रहे हैं आपको अमानुष फिल्म का गाना किशोर कुमार का गाया हुआ। इंदिवर के बोल हैं श्यामल मित्रा का संगीत।

अगला गाना भी किशोर कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम है परिचय। गुलजार के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: उनको कोई पूछताछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा जो मिल रहा है उसके लिए मैं सभी के लिए बहुत खुश हूँ।
1: आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
0: गांव हीरानार में ही मेरा जन्म है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे, हम किसान के परिवार की हूँ और गरीब घर की हूँ। तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुंगुर गुंडा, वहां पर पैदल पैदल जाते थे, वहां काम करते थे सेवा भाव में।

0: ऐसा ही कई दिनों से बीता है। फिर माँ भी हमको एकदम, हम लोग दो भाई दो बहन, ऐसे चार भाई बहन थे, बड़े भाई तो नहीं है अभी, हम लोग भी दो बहन एक भाई है। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। फिर 15 साल का आयु था, मेरे मन में ऐसी पता नहीं कैसा आया, और हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि ये सब बचपना में जैसा गुजरे और आज यहाँ तक की पहुँच गए।
1: आप पिछले करीब 40 वर्षों से आदिवासी इलाकों में और वन क्षेत्रों में नशा मुक्ति तथा सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही है, ये सब आपने कब कैसे और क्यों शुरू किया?
0: ये 1984 में मैंने नागपुर चले गई और महिलाओं के बीच में काम देखी, व्यवहारिकता 2-3 महीना सीखने के बाद देखने के बाद मैं वापस आई, और हमें भी मन में आया कि मेरे दक्षिण बस्तर हो, बस्तर हो, जहाँ भी हो, हजारों बहने अनविज्ञता कभी शिक्षा नहीं पाई, स्कूल को पता नहीं है, ऐसी बहनों के बीच में जाके काम करना चाहिए। उसी समय से मेरा 84 से मन में आया है और मैं इस क्षेत्र में 1986 में ही काम शुरू की, और विशेष करके अब उमार को पहले चुई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ, और वहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में काम करना है तो एक आदमी से नहीं होगा, यहाँ के लोकल लोगों को साथ लेना पड़ेगा, इनके साथ में काम होगा। 1986 से ही निरंतर साल भर का पूरे 500 गांवों को संपर्क में ली हूँ, एक लक्ष्य रखी हूँ, सबसे पहले मैं 500 गांवों को संपर्क करूंगी, और इसी समाज से जो बहनें मिलेंगे तो उनके साथ में मुझे काम करना होगा, उनको प्रशिक्षित देना है और कार्य काम कैसा करना है, मैं उन्हीं से स्टार्ट की हूँ। 15-20 साल से 30-35 साल की बहनों को हमने यहाँ पर वापस उनको लाते थे, लाने के बाद उनको साक्षरता सिखाए, उनको एकदम बच्चे जैसा पकड़ पकड़ के उनको बड़ी बहनों को सिखाना, मन तो तकलीफ तो है, जैसा गिल्ली मिट्टी को आकर देना सरल होता है, पर वैसे बड़े लोगों को कठिन परिस्थिति में भी सीखे हैं, तो मैं उनको साक्षरता सिखाने के बाद ही ये सब कार्य शुरू किए हैं, और उनके कारण से सब बहुत अच्छा सफल भी मिला है और कार्य करने में गति हो गया, कि क्योंकि 1 साल हमने पूरे गांव को देखे हैं, परिस्थिति देखे हैं कि इनको कैसा किस टाइप में काम करना है, क्योंकि हम लोगों को देखने से, हमारे ये समाज के लोग हैं जंगल इलाका में रहने वाले, हम लोगों को देखने के बाद ही दोबारा हमारे सामने आना पसंद नहीं करते थे, ये सारे कठिनाई देखने के बाद जो है हम लोगों के मन में ऐसा एक तो काम हुआ कि इनके बीच में हमको बड़े ठोस रूप से काम करना चाहिए। करीबन 150 तक ऐसी बहने पूरी टाइम काम करने वाले बहने भी साथ दिए और साथ मिले कि हम काम को पहला ही ऐसा है।
1: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
0: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है, उनके पास उठना बैठना, उन लोग जैसा रहते हैं उनके साथ रहना, जो खाते हैं उनके साथ खाना, और जैसे कभी ठंड में है तो बिना कपड़ा के सोते रहे, अभी तो विकास हुआ, उस समय उनको पहनने के लिए एक साड़ी होता था, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता था, किसी के पास एक कंबल होना मैंने बहुत बड़ी बात समझते थे। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तकलीफ हुआ है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है। उनके साथ काम नहीं करती तो उनके बीच में नहीं जाती तो शायद काम करने का मुझे भी इतना अनुभव नहीं होता कि हम क्या करेंगे कैसा करेंगे, उनके पास टैलेंट जाने के कारण, इतना घूमने के कारण, ये सभी उस समय रास्ता नहीं होता था, कभी साइकिल जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता था, जैसे गाय बैल जाता है ऐसी रास्ता से हम लोग पूरे समय में उनके पास पहुंचे गए।
1: आपने अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण देती थी या अभी भी किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण देती हैं?
0: इस समय तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए इसलिए मन में आया कि हमारे एक तो ऐसा गरीब स्थिति रहा, तो उस समय सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार भी देना है, संस्कार भी देना है, जागरूकता लाना है, तो ये मन में आया कि हम लोग उनको साक्षरता भी बनाए। साक्षरता लगभग 400-500 बहने उसमें साक्षरता लिए है, 5वीं 8वीं 10वीं कभी स्कूल नहीं गया, ऐसी बहनों को हमने साक्षरता बनाए, आत्मनिर्भर किए। दूसरा है कि हम लोग उनके पास जाते

0: थे, कभी 1 पैसा 2 पैसा होता था। उस समय तो सीट का घर नहीं होता था, घास भूसा का घर होता रहा, वहां पैसा छुपा के रखना, फिर जमीन में गाड़ के रखना, कभी दिमाग पकड़ता रहा, कभी चूहा कतरता रहा। तो ऐसी लोगों का हमने आत्मनिर्भर करना, उनको आर्थिक स्थिति सुधारना है तो कैसा करना होगा, उनको हम लोग उनको सिखाए, पास में लाए, समझाए। और बैंक को कभी नहीं जानते थे, अब वहां तक उनको ले जाके 10-12 हजार खाता खोले। उस समय उनके पास पैसा नहीं होता था, 500 रुपये 50 रुपये में हमने खाता खोले। बैंक मैनेजर से भी बात की है कि इनका आर्थिक स्थिति सुधारना है, इनको निर्भर करना है, उनको स्वयं पर स्वावलंबन बनाना है, तो आप भी इनको मदद करिए, 10 रुपया भी लाएंगे तो उनको खाता में जमा करिए। फिर सिलाई का प्रशिक्षण दिए, साथ साथ में कढ़ाई बुनाई का काम किए, ऐसा आत्मनिर्भर उनको किए हैं, स्वयं सक्षम उन खड़े हो गए। और आज जो है 1 लाख 2 लाख हर महिलाओं में जरूर होगा।
1: महिलाओं के अलावा आपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काफी अच्छा काम किया है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं।
0: क्योंकि उस समय बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, माँ के साथ मजदूरी करना या फिर वहां इकट्ठा करना, आप जान रहे, ऐसा उनका जीवन व्यतीत होता था। हमने सोचे कि इनको इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं का नागरिकता है, ये गांव के होते हैं, और आने वाले समय में उन्हीं लोगों के भविष्य कैसा बनाना है। हम लोग सोच के एक बाल संस्कार केंद्र के नाम से हमने शुरू किए हैं, कई स्थानों में बाल संस्कार की शुरू किए। 4 साल से 5 साल तक की हमने उनको साक्षरता, खेल कूद से हंसते हंसते कई प्रकार का करते हुए उनको आगे बढ़ाए हैं। 6 साल होने से हम तो सीधा स्कूल में उनको भेजने का कोशिश किए हैं। तो ऐसी कई जगह में हमने बाल संस्कार केंद्र के रूप में किए हैं, कई बच्चों का आज ही भविष्य बहुत बना है, हजारों बालक बालिका है शिक्षा पाए हैं और स्कूल जाते हैं, जहां नहीं जाते वहां तक भी हमने इस सब किए हैं। आप स्मार्ट चित्र जैसा हम लोग को देख के भागने वाले माता बहने आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। आज कोई घर में रखवाली करने के लिए भी कोई नहीं, ऐसा बच्चों को भेज रहे हैं। बहुत अच्छा सफल हुआ इसमें भी बच्चों का, आज ही अच्छे अच्छे पद में उन्होंने पहुंचा है, और अभी मिलते भी है तो बोलते हैं कि धन्यवाद दीदी, आपने हमको बहुत आगे किए हैं, बड़े बड़े पोस्ट में है, उनका जिंदगी अच्छा बन रहा है। वैसा कई बच्चों के लिए हमने काम किए शिक्षा के रूप में।
1: बुद्री जी, आपको इस इलाके के लोग बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगता है, और ये नाम आपका कब और कैसे पड़ा था?
0: ये तो मैं 1986 में जब जाने लगी हूँ, तभी से लोग ही ये हमारे लिए पूरा चिंता करती है। एक हमारे घर में कोई बड़े होते हैं तो हम अच्छा लगता है, जैसे कि परिवार में कोई बड़ा होता है, लोग आदर से उसको नाम नहीं लेते, बड़े दीदी के नाम से जाना जाता है। ये नाम 1986 में जब मैं गांव में जाती थी, लोगों के साथ बैठना उठना, हम तो बड़े को बड़े आदर करते हैं, माँ है तो माँ बोलते हैं, बच्चे है तो बच्चों को प्यार से नाम लेते हैं, वो हम लोग अपने आप उन्होंने चुने हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सबका चिंता करते हमारे बड़े दीदी है, वैसा इस नाम से लोग अधिकतर लोग बोलते हैं। और आजकल तो माँ कह के भी पुकारना चालू किए। इस परिवार का हम लोग यहाँ का सब परिवार के एक सदस्य के समान है, और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग हमको बड़े दीदी के नाम से छोटे से लेके बड़े तक नाम लेते हैं, तो अच्छा लगता है समाज में जाके, क्योंकि हम उस समाज से घुल मिल होके रहते हैं, समरसता एक मिलाते हैं, तो सबको एक समान होता है।
1: आपने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार भी किया है, तो ये आपने कब, कहां और कैसे सीखा?
0: जड़ी बूटी का क्या है, हमारे अकेले ने हमारे साथ में 7-8 बहने लोग हैं, तो हमारे बहनों में भी बहुत कुछ इस बारे में ज्ञान है। जैसे जड़ी बूटी इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जंगल में जितना भी रहने वाला हमको बचपन से नॉलेज है, और एकदम कमजोरी हो जाते हैं, 6 महीना तक साल भर तक लोग ऐसी कमजोरी में रहते हैं, हम उन ऐसी लोगों को हम यहाँ का ही जो वस्तु मिलता है तो उसको इकट्ठा करके हम लोग उसको पूरा बना के, कभी सुरन के नाम से बनाते, कभी लड्डू बना के देते हैं जड़ी बूटी का। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे गांव गांव में जा करके इसका भी करते हैं, कुपोषित है सभी है, ये सभी दवा हम लोग उनको बने दवा बने, यहाँ हमारे जो हमारे हाथ में जो खेती करते हैं उसी में से हम लोग इसको बना के खा सकते हैं, तो कितना हम लोग का तंदुरुस्त होता है। हम लोग तो ये तो हमारा परंपरा है, आदिवासियों में तो जुड़ा हुआ रहता, प्रकृति से जुड़े हैं, इसका सब मालूम रहता है। सूजन आने से कैसे

0: उसको करते हैं, उबाल के कैसे नहलाते हैं, सूजन कैसे उतरता है, घाव होने से ये दवा लगाने से घाव बढ़ता है, ये सारे जानकारी हम तो इंसान के गाय बैल से लेकर सभी का सेवा करते हैं।
1: और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, तो आपका योगदान देश और दुनिया जाने और सरकार की ये जो पहल है, ये आपको किस तरह से लगती है?
0: हम लोग तो अभी तक की 1984 से आज तक में जो काम किए हैं, जो हम चाहते हैं कि इस काम को गुप्त रूप से रहे, काम करते रहे, लेकिन ये ऐसा एक काम होता है कि इसको छुपा नहीं सकते हैं। जन जन में पहुंचने वाला काम है, हर व्यक्ति का पुकार है, इस गांव से लेकर नगर से लेकर बड़े बड़े शहर से लेकर केंद्र तक का ये अपने आप ही होने वाला चीज है। तो आगे फोकस हो गया, आगे चला गया, और आज हम जैसे कि धूल में मिले हुए कंकड़ को परसमणि बनाने की कोशिश करने वाले सरकार है उनके हक में, और इसमें बड़ा समाज है, ये समाज का बल है, समाज का ऋणी है। तो आज तक हमने जो किए हैं कि हमने भी न कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा अवार्ड जो है कभी होगा, और सम्मानित करने का कभी मौका हमको भी मिले, ऐसा कभी हम लोग को पता भी नहीं था। लेकिन आज ही आप सभी के सहयोग है, हमारे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला और पूरे बस्तर संभाग, हमेशा लोग सोचते थे कि लोग ही अबूझ है, अब जान रहे हैं। तो ऐसा क्षेत्र में भी आज ही उभर कर खाम सामने आया, ये कार्य का प्रणाम है, ये सब करने के लिए है। और ये सब आज ही जो पिछड़े समाज भी चाहता है कि हमारे बीच में कोई सम्मानित है, वो उनका सम्मानित है ये सब।
1: कार्यक्रम में शामिल होने, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com। पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लीजिए आप सुनिए इम्तहान फिल्म का गाना, किशोर कुमार का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: किशोर कुमार की गाए इस गाने के साथ ही आज का रसरंजन प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी रांची है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता का गाया राग अलहिया बिलावल में ध्रुपद। रचना चार ताल में निबद्ध है, बोल है मोतियन की झाला लगी। संगत करने वाले कलाकार हैं हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती और पखावज पर हैं राम बच्चन पाठक।

0: सन 1942 में जन्मे सुरेश प्रसाद गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता स्वर्गीय श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता की देखरेख में शुरू हुई। भागलपुर विश्वविद्यालय से आप स्नातक हैं और प्रयाग संगीत समिति से म्यूजिक में एमए संगीत प्रवीण। ध्रुपद धमार की शिक्षा आपने दरभंगा घराने के पद्मश्री श्री पंडित सियाराम तिवारी से प्राप्त की। संगीत के कुछ अन्य गुर आपने पद्मश्री पंडित विनायक नारायण पटवर्धन जी से सीखे। आपने वाराणसी, पूना, पटना, मालदा समेत देश के विभिन्न नगरों के साथ साथ विदेशों में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी। ध्रुपद धमार समेत संगीत की अन्य विधाओं में भी आप निपुण हैं। सन 2001 में आप झारखंड में संगम सम्मान से नवाजे गए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के आप वरिष्ठ कलाकार हैं।
1: आज आप राग अलहैया विलावल में ध्रुपद गायन प्रस्तुत कर रहे हैं। विलावल थाट से उत्पन्न राग अलहैया विलावल में दोनों निषाद और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह में मध्यम स्वर वर्जित है, अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। इसका वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गांधार है। इसके गायन वादन का समय दिन का प्रथम प्रहर बताया जाता है। ध्रुपद की रचना चार ताल में निबद्ध है। बोल हैं, मोतियन की झाला लगी, हेम जड़ी हीरन सो चहुं ओर होत उजागर।
0: आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे हैं रामबचन पाठक और हारमोनियम पर साथ दे रही हैं गायत्री चक्रवर्ती। तो आइए सुनते हैं सुरेश प्रसाद गुप्ता का राग अलहैया विलावल में ध्रुपद गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता से राग अलहिया बिलावल में ध्रुपद। संगत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती और पखावज पर थे श्री रामबचन पाठक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आओ साथ चलें।
1: कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मानव जीवन ईश्वर का अनुपम उपहार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सम्मान और सुख की कामना करता है, लेकिन परिस्थितियां, गलत संगति, नशे की लत, बेरोजगारी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन और सामाजिक उपेक्षा के कारण अनेक लोग जीवन की सही दिशा से भटक जाते हैं। श्रोताओं, ऐसे लोग स्वयं को निराशा, अपराध, हिंसा, नशाखोरी और सामाजिक अलगाव के अंधकार में पाते हैं। एक बात जो बेहद गौर करने वाली है कि समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल भटके हुए लोगों की आलोचना करना नहीं बल्कि उन्हें नई राह दिखाकर मुख्य धारा से जोड़ना है। भटकी हुई जिंदगियों को नई दिशा देना केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा भी है। जब किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन, अवसर और सहयोग मिलता है तो वह न केवल अपना जीवन बदलता है बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम मानव जिंदगियों के भटकाव के कारण को तलाशें तो हम पाते हैं कि व्यक्ति का भटकाव अचानक नहीं होता, इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण शामिल होते हैं। युवावस्था में व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होता है। यदि उसे अच्छी संगति नहीं मिलती तो वह गलत आदतों और अपराध की ओर आकर्षित हो जाता है। कई बार मित्रों का दबाव व्यक्ति को नशे, हिंसा और अन्य जो गलत गतिविधियां हैं उस ओर ले जाती हैं। रोजगार के अवसरों की कमी और आर्थिक तंगी लोगों को निराशा की ओर धकेलती है। कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। इसके अलावा परिवार व्यक्ति का पहला विद्यालय होता है, ये हम सब जानते हैं। जब परिवार में प्रेम, संवाद और सहयोग की कमी होती है तब व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नशा व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थ युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझने की क्षमता देती है। शिक्षा के अभाव में लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। भटके हुए लोगों को समाज से अलग कर देना समस्या का समाधान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सुधार और पुनर्वास का अवसर दिया जाए। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का एक दीप अवश्य होता है। सही मार्गदर्शन और प्रेरणा उस दीप को पुनः प्रज्वलित कर सकती है। श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि अनेक लोग जिन्होंने जीवन में गलतियां की बाद में समाज के आदर्श बने। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास मिलता है कि समाज उसे स्वीकार करेगा तब उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा जागृत होती है। यही परिवर्तन नई राह की शुरुआत है। शिक्षा भटकी हुई जिंदगियों को नई दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और उसे जीवन के उद्देश्य समझने में सहायता करती है। वहीं कौशल विकास कार्यक्रम लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि भटके हुए युवाओं को इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाए तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। भटके हुए व्यक्तियों को नई राह दिखाने में परिवार और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार को चाहिए कि वह अपने बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सकारात्मक वातावरण प्रदान करें। समाज को भी ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया है तो उसे अवसर और सम्मान जरूर मिलना चाहिए। कई सामाजिक संस्थाएं नशा मुक्ति, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे प्रयासों को हमें प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। जीवन में प्रेरणा का विशेष महत्व है। अनेक महापुरुषों ने कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त की। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर दुनिया को नई दिशा दी। वहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने परिश्रम और संकल्प से ऊंचाइयों को प्राप्त किया। ऐसे उदाहरण युवाओं को यह संदेश देते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, दृढ़ इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से जीवन बदला जा सकता है। आज समाज में नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। नशा मुक्ति केंद्र ऐसे लोगों को नई जिंदगी देने का कार्य कर रहे हैं। इन केंद्रों में परामर्श, चिकित्सा और मानसिक सहयोग के माध्यम से लोगों को नशे से बाहर निकालने में सहायता मिलती है। पुनर्वास कार्यक्रम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि भटकी हुई जिंदगियों को नई राह देना केवल किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक सहयोग, सकारात्मक मार्गदर्शन और सामाजिक स्वीकृति के माध्यम से हम अनेक लोगों के जीवन में आशा का नया दीप जला सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी या भटका हुआ नहीं होता। परिस्थितियां उसे उस दिशा में ले जाती हैं। यदि हम उसे समझें, उसका हाथ थामें और सही अवसर दें तो वही व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। भटके हुए लोगों को तिरस्कार नहीं, अवसर चाहिए। उपेक्षा नहीं, सहयोग चाहिए और अंधकार नहीं, नई राह चाहिए। यही मानवता का सच्चा संदेश है। श्रोताओं, आज अपने इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे मुख्य धारा से भटके हुए उन लोगों के बारे में जो अब आत्मसमर्पण कर आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास नीति का लाभ ले रहे हैं। समाज से भटके हुए, परिवार से पलायन कर चुके ऐसे भाई बहन जो अब हमारे मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास निरंतर सरकार और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी ओर हमारे स्पेशल टास्क फोर्स की भी अहम भूमिका है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं IG स्पेशल टास्क फोर्स श्री अनूप बिरथरे सर। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री अनूप बिरथरे सर, जो वर्तमान में HDF IG के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी रांची का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए, और आकाशवाणी रांची के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, जोहार।
1: कार्यक्रम में हम आपसे विशेष रूप से आज चर्चा करना चाहेंगे नक्सल से संबंधित। देखा जाता है कि हमारे झारखंड राज्य की ये एक चुनौतीपूर्ण समस्या है कि नक्सल आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर कहें तो हमारे विकास को भी प्रभावित करता है। तो आज हमारे राज्य में झारखंड की विशेष तौर से बात करें तो यहाँ नक्सल की क्या गतिविधियाँ हैं और कितने पॉकेट्स अभी बचे हुए हैं?
2: देखिए, झारखंड राज्य का जब गठन हुआ नवंबर 2000 में, तो उस समय ये जो समस्या है उग्रवाद की और नक्सल की, ये हमको विरासत में मिली
1: जी।
2: 2000 के पहले से ही नक्सली गतिविधियां झारखंड में थी, जो तत्कालीन बिहार के समय में जो साउथ बिहार का इलाका कहलाता था
1: जी।
2: तो राज्य गठन के साथ ही इस चुनौती का सामना हमारे प्रशासन ने, राज्य सरकार ने और पुलिस ने किया। और उसके बाद शुरुआती दौर में संसाधनों की कमी होने के कारण से, पुलिस बल की कमी होने के कारण से, और जो मॉडर्न वेपनरी है, जो संसाधन चाहिए है नक्सलियों से लड़ने के लिए, वो कम होने के कारण से ये समस्या बहुत विकराल रूप में थी। और 24 डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के थे, उनमें से लगभग 21 जिले माओवादी जो उग्रवाद की समस्या से प्रभावित रहे और गंभीर रूप से प्रभावित रहे। और उसके बाद बहुत लंबी एक संघर्ष की गाथा है झारखंड पुलिस की, और झारखंड प्रशासन ने 600 से अधिक हमारे जवान और पदाधिकारी हैं जिन्होंने शहादत दी है नक्सलियों के विरुद्ध में लड़ते हुए। और आज हम उस मुकाम पर हैं जब हम ये बोल सकते हैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कि हम लगभग माओवाद के नक्सल के खात्मे की तरफ में हैं। जैसा मैंने बताया कि पहले लगभग 21 जिले 24 में से हमारे उग्रवाद प्रभावित थे, और अभी मात्र 4 जिले ऐसे हैं जिनको कि नक्सल प्रभावित केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा माना जाता है, और उनमें भी ये समस्या मूल रूप से पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले में सिमट के रह गई है। तो इन्होंने निश्चित तौर पर विकास में बाधक बने हैं, झारखंड को बहुत नुकसान इन्होंने किया है, परंतु राज्य सरकार के संकल्प से और झारखंड पुलिस की मेहनत से, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मेहनत से, अब हम इस समस्या के लगभग खात्मे की तरफ आ चुके हैं।
1: सर, जहां तक शांति और सुरक्षा की बात अगर हम कहें तो एसटीएफ की इसमें क्या भूमिका है?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा और इसको जरूर हमारे पूरे झारखंड राज्य को और श्रोताओं को जानना चाहिए। देखिए, जब ये समस्या राज्य गठन के बाद, ये खूबसूरत हमारा राज्य बना नवंबर 2000 में, उसके बाद जब गंभीर समस्या माओवादी की झेली और बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आम नागरिकों को हत्या की गई माओवादियों के द्वारा और पुलिस बलों के खिलाफ, और डेवलपमेंट के सारे काम इनके द्वारा रोके गए, तो एक विशेष कार्यबल के रूप में, एक स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में, नक्सलियों से लड़ने वाले एक विशेष बल के रूप में झारखंड जगुआर, जिसको एसटीएफ कहते हैं, उसका गठन वर्ष 2008 में किया गया। वर्ष 2008 में इसका गठन किया गया। जैसे आंध्र प्रदेश में 70 के दशक में ही माओवादी समस्या थी, तो उसके उन्मूलन के लिए एक विशेष फोर्स उन लोगों ने बनाई थी जिसको ग्रेहाउंड नाम दिया था। तो उसी तर्ज पर झारखंड जगुआर का एसटीएफ का गठन किया गया। ये बल की जो पूरी ट्रेनिंग है, इनकी जो पूरी लर्निंग है, वो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान करने के लिए स्पेशलाइजेशन है, चाहे इनके वेपन हो, चाहे वज्रवाहन हो, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हो, फायरिंग हो, और उग्रवादियों के खिलाफ लड़ने की पूरी रणनीति और टैक्टिक्स इसने अपनाई। तो ये जो कार्यबल बना 2008 में और आज हम 2024 में खड़े हैं, तो पिछले लगभग 16 सालों में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नक्सलियों की समस्या को ख़त्म करने में, उनकी समस्या को कम करने में। हमारे 24 जो है जवान और पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने शहादत दी है, सर्वोच्च बलिदान प्राणों का दिया है उसमें, और बड़ी संख्या में नक्सलियों को अरेस्ट करने में, और इसके अलावा जो है सरेंडर करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो झारखंड का एक ये स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स है, और जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है नक्सलवाद की समस्या को ख़त्म करने में।
1: जी बिल्कुल। और सर, जहाँ तक हमारी समझ है और हमने जो जहाँ तक देखा और सुना है कि जो भी नक्सली हमारे भाई बहन जो मुख्यधारा से जुड़ते हैं, तो उन्हें एक आत्मसमर्पण नीति का भी लाभ दिया जाता है, जो सरकार की एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी बिल्कुल। हमारे राज्य में जो झारखंड राज्य की उग्रवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास की जो नीति है, वो पूरे देश में सबसे अच्छी आत्मसमर्पण नीतियों में से एक है, और इसमें बहुत सारी नई चीज़ों का प्रावधान भी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन सर के नेतृत्व में किया गया है। और इस आत्मसमर्पण नीति में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे जो भूले भटके हुए जो नक्सली हैं, जो बेसिकली गलत रास्ते में चले गए हैं माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के, उनको वापस आने का पूरा मौका देते हैं। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेगा, उनको केसेस को ख़त्म करने में मदद दी जाएगी, उनको ओपन जेल में हजारीबाग में रखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई नक्सली उसके खिलाफ में कोई पुरस्कार घोषित है, मान लीजिए 5 लाख 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का भी रिवार्ड घोषित है, वो रिवार्ड उनको खुद को या उनके परिवार को मिलता है। इसके अलावा उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनके परिवार को स्वास्थ्य की सुविधाएं और बीमा की सुविधाएं इत्यादि दी जाती हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरेंडर पॉलिसी देती है, और यही कारण है कि अब तक लगभग सरेंडर पॉलिसी के गठन से लेकर और आज तक लगभग 400 से ज़्यादा नक्सली उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, उन्होंने लाभ उठाया है और इस राज्य के विकास में मदद की है और मुख्य धारा में वापस आए हैं। तो जो बचे खुचे जो माओवादी हैं उनसे भी हम लोग ये अपील करते हैं कि वो ज़रूर इस आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं, मुख्य धारा में वापस आएँ, अपने घर पर रहें, परिवार के साथ रहें और झारखंड राज्य के विकास में अपना योगदान दें।
1: जी सर, नक्सल प्रभावित जिलों में कई जगहों में आप रहे हैं और बहुत करीब से आपने इन नक्सली संगठन के लोगों को भी देखा है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि जब हमारे भाई बहन सरेंडर करने के लिए आपके पास आते हैं या फिर किसी भी तरह से संपर्क साधते हैं तो पहला कदम आपकी ओर से क्या होता है?
2: देखिए, मैंने कई नक्सल प्रभावित जिलों में एज SP और अन्य पदों पर काम किया है, जिनमें सिमडेगा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और बहुत सारे अन्य क्षेत्र शामिल हैं। तो इनमें जब हम लोगों ने काम किया तो काफ़ी जो नक्सली थे, उग्रवादी थे, उन्होंने हर साल सरेंडर भी किए हैं, जिनमें इनके बड़े लीडर्स भी शामिल हैं और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो इसमें जो आपने प्रश्न पूछा कि हम लोग सबसे पहले किस तरह का, हम लोग उनका स्वागत करते हैं जब भी वो सरेंडर के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको बाकायदा सेफली जो है पुलिस के पास में बुलाया जाता है। इसके बाद उनको उनके परिवार से मिलाया जाता है, परिवार के साथ में उनको रखा जाता है। सरेंडर पॉलिसी के जो सारे लाभ हैं जो ऑलरेडी उनको पता भी हैं, उसके अलावा भी हम लोग उनको डिटेल में बताते हैं और उनको जो भी जो है सुविधाएं हैं, चाहे वो कैश रिवार्ड हो, चाहे मेडिकल की सुविधाएँ हों, चाहे बीमा की सुविधाएँ हों, वो सारी उनको दी जाती हैं और उनके साथ एकदम हमारे भाई की तरह, जैसे कि मतलब कोई भूला भटका हुआ व्यक्ति हो जो विचारधारा गलत विचारधारा के कारण से भटक गया, उस तरह उनका हम लोग स्वागत करते हैं। बाकायदा भी 15-20 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 25 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया पुलिस मुख्यालय में DGP मैडम के सामने और उसमें हम लोग भी प्रोग्राम में शामिल थे। तो उन सब का बुके दे करके स्वागत किया गया, उनको हम लोग मुख्य धारा में अपने घर के मेंबर की तरह उनका स्वागत करते हैं। तो इतनी उदार जो है क्या नाम है व्यवस्था है और इतना बढ़िया से स्वागत झारखंड पुलिस के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद हम लोग उनको सारी सुविधाएं देने के बाद में जो विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया के तहत उनको हजारीबाग ओपन जेल भेजते हैं। ओपन जेल में उनको अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है। जैसे कि कोई उग्रवादी हैं, वो अगर एक बार हजारीबाग ओपन जेल जाएंगे तो वहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी वो रह सकते हैं। इसके अलावा उनको वहाँ खाने पीने की सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधाएं होती हैं और लीगल एड भी उनको दी जाती है, जो उनके केसेस हैं उनके लिए, जमानत इत्यादि के लिए। तो ये एक्चुअली प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत 400 से ज़्यादा लोगों ने लाभ उठाया है।
1: ये तो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी राहत वाली बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी झारखंड के अभी भी राज्य इससे प्रभावित हैं, यानी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें अभी जो मुहिमें चलाई जा रही हैं उसके तहत क्या कुछ सफलता आपको मिल पाई है?
2: देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी सफलताएं फोर्सेस को मिली हैं, संयुक्त बलों को, जिसमें झारखंड जगुआर है, झारखंड पुलिस है, CRPF है, कोबरा की फोर्सेस हैं।

0: SSB है, तो इसमें एक्चुअली अभी देखा जाए तो एक मात्र चाईबासा में ये समस्या बची है, जिसमें थोड़ी संख्या में जो उग्रवादी बचे हैं, और थोड़ा सा प्रभाव चतरा में और लातेहार के कुछ हिस्सों में इनका है। तो इसमें हम लोगों का जो लगातार सूचना आधारित जो ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिसको कहते हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं, और पिछले 3 से 4 सालों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा सफलताएं इनके खिलाफ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। अभी 22 जनवरी 2026 को इसी साल भी लगभग 17 उग्रवादी एक मुठभेड़ में मारे गए थे चाईबासा में। तो जो हथियार उठा करके और हिंसा करने पर उतारू हैं, उनके खिलाफ में निश्चित तौर पर झारखंड पुलिस गंभीर कार्रवाई करेगी। और लेकिन अगर कोई हमारे उसमें आना चाहता है, मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है, तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। तो अभी इन्हीं 3 जिलों में मुख्य रूप से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और उनकी जो सप्लाई है, उनके जो खाने पीने के इंतजाम हैं, उनके जो गोलियां जहां से उनको पहुंचती हैं, विस्फोटक जहां से पहुंचते हैं, उन सब को भी फोर्सेस ने पूरी तरह चोक कर रखा है। यही कारण है कि इनके बहुत सारे साथी सरेंडर भी किए हैं और टीम को छोड़ करके भी चले गए। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। जो लोग हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, और अगर वो गोली चलाते हैं पुलिस के ऊपर तो उनको मुठभेड़ में उनकी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाकी अगर कोई व्यक्ति सरेंडर के लिए आते हैं तो उसका हम लोग हाथ फैला करके उनका स्वागत करेंगे।
1: सर, सरकार की ओर से आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास नीति बनाई गई है और उसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। ऐसे में आप जो हमारे नक्सल भाई बहन अभी भी जंगलों में भटक रहे हैं, उन्हें आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आकाशवाणी रांची के माध्यम से उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, ये उनको मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आपके बहुत सारे साथियों ने पिछले कुछ वर्षों में सरेंडर किया है और अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, मुख्यधारा में लौटे हैं, उनको कोई जंगल में भटकने की अब ज़रूरत नहीं है और उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, एक सेफ लाइफ वो अपना व्यतीत कर रहे हैं। उसी तरीके से जो है आप लोग भी मुख्यधारा में वापस आएँ, आपका स्वागत है। आप जो है विभिन्न जिलों में जो थाना है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, SPs का नंबर भी लगातार हर जगह मौजूद है, तो जो कंसर्न्ड SP हैं चाईबासा, लातेहार या अन्य जिलों में, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी मुख्यधारा में आइए और हमारे इस महान जो झारखंड राज्य है, सुंदर झारखंड राज्य है, उसको हम लोग विकास के रास्ते पर ले जाने में सहभागी बने।
1: सर, आज हम विकास की बातें करते हैं कि सड़कों के बारे में या स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, तो क्या लगता है कि नक्सल गतिविधियों के कारण इन विकास की योजनाएं भी प्रभावित होती हैं?
0: देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि माओवादी विचारधारा का यही कंट्राडिक्शन है। माओवादी बात हमेशा करते हैं कि गरीबों के शोषण के खिलाफ हम खड़े हुए हैं या हम शोषण के खिलाफ सशस्त्र क्रांति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हमेशा से माओवादियों ने विकास का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पूरी लेवी से संबंधित जो नीति है वो विकास योजनाओं के जो है शोषण पर ही आधारित है। जहाँ पर भी ब्रिज बन रहा है, कोल माइनिंग हो रही है, आयरन माइनिंग हो रही है या रोड्स बन रही हैं, उन्हीं से वो काम से पैसा वसूलते हैं और उस काम को नहीं होने देते हैं। तो मूलतः इनका पूरी विचारधारा और पूरा रवैया विकास विरोधी हमेशा से रहा है। इसके अलावा आप देखिए, रेलवे ट्रैक को उड़ाने का काम जो ये करते थे पहले, स्कूल बिल्डिंग्स को सैकड़ों की संख्या में इन्होंने उड़ाया है। कहीं पर भी नए ब्रिज का निर्माण या रोड का निर्माण हो उसको ये रोकते थे। क्यों? क्योंकि इनको ये पता था कि अगर विकास का काम होगा तो इनकी विचारधारा को कोई भी जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। लोग जागरूक अगर हो जाएंगे, लोगों के पास काम धंधा होगा, रोजगार होगा, तो माओवादी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मूलतः ये विचारधारा विकास विरोधी रही है। कई सालों तक इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम, ब्रिज बनाने का काम, रोड बनाने का काम, नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का काम ये नहीं करने दिया। तो ये और इसके अलावा जो स्कूल हैं, जो सामुदायिक भवन हैं, जो ग्रामीणों के हित के लिए बनाए गए थे, उनको ब्लास्ट करके उड़ाने की कई घटनाएं इन लोगों ने की हैं। तो मूलतः जो है विकास विरोधी वो काम किया और ये एक्सपोज हो गए हैं। अब जो ग्रामीण है हमारे झारखंड की जनता ये समझ गई, इसीलिए उनको अब माओवादियों का सपोर्ट, ग्रामीणों का मिलना बंद हो गया और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है माओवादी समस्या के खत्म होने का। क्योंकि अगर जनता उनके साथ होगी तो इस समस्या को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लोग अब उनसे पूरी तरह विमुख हो गए हैं, लोग उनसे पूरी तरह अलग हो गए हैं और यही कारण है कि आज हम उनको खत्म कर पाए।
1: तो सर, कार्यक्रम के माध्यम से जो अभी भी आपको सुन रहे हैं, वैसे भाई बहनों से आप अपनी ओर से एक STF IG होने के नाते क्या अपील करेंगे?
0: मैं अपील करना चाहूँगा हमारे जो श्रोता हैं, जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उनसे कि आप इस बात को जरूर समझें कि किस तरीके से नक्सलवादी समस्या ने पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा समय से झारखंड के विकास को किस तरह से रोका है। अब हम सब उस दिशा में आ चुके हैं कि हम बहुत तेज़ी से राज्य प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छी योजनाएं राज्य सरकार की हैं जो चल रही हैं, उनका आप लाभ लें। और जो एसटीएफ के कैंप्स हैं चाईबासा के घने सारंडा के जंगलों में और अन्य जगहों पर भी, अन्य फोर्सेस के जो कैंप हैं उनमें भी हम लोगों ने सुविधाएं दी हैं कि ग्रामीण विभिन्न सरकारी योजनाओं के फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, एप्लीकेशन वहां पर दे सकते हैं, वहां पर उनको उससे संबंधित जागरूकता के कार्यक्रम भी हम लोग चला रहे हैं। बेसिकली अब जो कैंप है इंटीरियर में जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए थे वो अब ग्रामीण विकास का एक केंद्र बन गए हैं। तो वहां पर आप जाएं, लोग आपका स्वागत करेंगे, हमारा सामुदायिक पुलिसिंग के प्रोग्राम लगातार चलते हैं, हर तरीके से हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। कहीं पर भी और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भी आप संपर्क करें जो जिला प्रशासन है और उससे। तो मैं यही वो करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए पूरी तरीके से नक्सलियों से दूर रहें, उनको किसी प्रकार का सामान का सप्लाई या सपोर्ट इत्यादि ना करें, और ये समस्या खत्म हो रही है और राज्य तेज़ी से विकास में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सर, नक्सल गतिविधियों के कारण विकास के मार्ग में जो बाधाएँ आती हैं इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बताया, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी अपील आपने हमारे भाई बहनों के लिए भी अपनी ओर से किया कि किस तरह से वो मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं और आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वासन नीति का लाभ ले सकते हैं। सर, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, शुक्रिया।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारी बातें हो रही थी आईजी स्पेशल टास्क फोर्स श्री अनूप बिरथरे सर से। बेहद महत्वपूर्ण बातचीत थी और इस बातचीत के माध्यम से उन लोगों को समझने का अवसर मिलेगा कि किस तरह से हम समाज की मुख्यधारा से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में सुनवाती हूँ आपको एक गीत।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का आओ साथ चले कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को दें विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

मंगल कामनाओं के साथ और एक और प्यारे दिन के साथ आपका स्वागत है। मैं हूँ विनीता, लेकर आई हूँ प्रोग्राम जोहार रांची। तो श्रोताओं, इससे पहले की जानकारियों से भरा ये प्रोग्राम शुरू हो, ये खूबसूरत सा सॉन्ग आपके लिए, आपके अच्छे दिन के लिए।

इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, सचमुच अच्छे से जिंदगी के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जोहार रांची कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब वक्त है सुविचार का। तो कहते हैं ना कि विचार चाहे कितने भी उत्तम और अच्छे क्यों ना हो, वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में दिखती हो। चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लें, डिग्री ले लें, अगर आपका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा नहीं तो ये सब तो बेकार है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारे व्यवहार से, हमारे बोलने से किसी को तकलीफ ना हो, तभी तो आप सही मायने में एक अच्छे इंसान है ना।

और अब कुछ बातें मौसम की, तो मौसम की क्या ही बात करें, है ना। झारखंड में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं। और रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में सोमवार को यानी कि आज के दिन तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वैसे भी कई इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए ये प्री मॉनसून ने काफी रफ्तार पकड़ ली है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में तेज हवा, गरज और वज्रपात के आसार बने हुए हैं। तो बस थोड़ी सी सावधानी के साथ बाहर निकले, छतरी हमेशा साथ रखें। और जहां तक तापमान की हम बात करें, तो अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी से राहत तो मिलेगी पर बहुत ज्यादा नहीं। तो मौसम का आनंद भी ले और खुद का बचाव भी करें।

जोहर रांची कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है आपका। और अब वक्त है इतिहास की बातें करने का, यानी कि आज के दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने का। तो इतिहास में आज की तारीख में जो घटनाएं दर्ज हैं, उनमें सबसे पहले आपको बताएं कि 1340 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1555 में आज के दिन मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को अपना वारिस घोषित किया था। 1593 में सीसाक की लड़ाई में ईसाइयों की सामूहिक सेना ने उस्मानी तुर्कों को हरा दिया था। और आज ही के दिन यानी कि 22 जून 2005 में पूरा इराक विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया था। 2006 में अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। और 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में दिखा था आज ही के दिन। और आज ही के दिन 2007 में सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ धरती पर लौटी थी। और 2016 में इसरो ने अंतरिक्ष में रचा था इतिहास। इसरो ने 20 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे आज ही के दिन।

जोहार रांची में बातें हो रही आज के दिन से जुड़ी, तो अब उनकी बातें जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया। तो 22 जून 1900 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का जन्म हुआ था। 1950 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता टॉम आल्टर का जन्म भी हुआ था और 1922 में फिलिपिनी अभिनेत्री मोनालिसा का जन्म हुआ था। साथ ही आपको बताएं कि अमरीश पुरी, जो कि एक भारतीय अभिनेता के साथ साथ भारतीय थिएटर और सिनेमा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा के साथ साथ अन्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योगों में प्रतिष्ठित खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। खासकर शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तो चलिए ना, सुनते हैं परदेश फिल्म का सॉन्ग

में अब उनकी बातें, जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो आज ही के दिन यानी कि 22 जून 1932 में जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि भारतीय प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, उनका निधन हुआ था। 1994 में भारतीय सिनेमा के सफल फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता एलवी प्रसाद का निधन हुआ था। और आज ही के दिन 2000 में हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन हुआ था। साथ ही प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, समाज सुधारक, लेखक भदंत आनंद कौत्स्यायन ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा था आज ही के दिन 1988 में। तो सभी को आकाशवाणी रांची की तरफ से शत शत नमन।

तो श्रोताओं, चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से ना कल की मुश्किल दूर तो नहीं होगी बल्कि आज का सुकून भी चला जाएगा। तो क्यों परेशान होना कल का सोचकर, अच्छे से आज के दिन में जिए, सुकून से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इन मंगल कामनाओं के साथ जोहार रांची कार्यक्रम में आज बस इतना ही। तो विनीता को दे इजाजत, जोहार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुड्डू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते।
2: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
3: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, ये तो खूबी आनंद का बात है। बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज्यादा खुश है। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
2: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
3: किताब एक ड्रामा का है परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बात भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का, वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए। हम बहुत खुश है।
2: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
3: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था 8वां सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए। इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके बाद में जब डिक्लेयर हुआ, ये संताली भाषा 8वां तफसील में इंक्लूड हुआ, ये जो सक्सेस है ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी। ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों मिलके बैठो सक्सेसफुल ये मिला है।
2: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
3: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो वो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा। लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करते हैं।
2: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
3: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा। लेकिन बांग्ला हम लोगों का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संताली। तो हम लोग क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा संताली स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहां जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है आंसर पेपर में, हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो मास्टर लोग को है बहुत पसंद आता था। ये लड़का तो वो अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हमसे क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है, किताब में हम पढ़ा भी है। क्या करता था, जब लिखता था आंसर पेपर, जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर के पास से, अब लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आगे हम लोग जाओ, पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था। हम तो रिएक्शन लेता था, कैसा लगा है, कैसा ही है, बोलता ना हम बहुत अच्छा लिखा है। तब तक इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया, लिख के गया, लिख के गया, ऐसा करते करते अरे लेखक का दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एकटा इंस्पिरेशन मिल गया।
2: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
3: प्राइमरी गांव में ही है, नुआड़ा गोड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहाँ से पास आउट होके हम कलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ग्रेजुएशन किया है।
2: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
3: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में, अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लर्क शुरू किया हम। चार साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ तीन चार नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बंगाल का ऑडिटरशिप एक साथ मिल गया सब। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर, उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है, ये के लिए हायर पोस्ट के लिए हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर्ड किया है, लास्ट में रिटायर्ड किया है ओडिशा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
2: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
3: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है, दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना दूर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
2: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
3: अभी तो रिटायर्ड कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा, फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक का साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी के साथ तालमेल के काम करके जाएगा, जितना दिन हम जिएंगे इतना दिन काम करेंगे। और अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपुल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा, कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से, इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं, कितना संभव होगा मालूम नहीं।
2: टुडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
3: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सा निग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लेके बहुत सा पीछे चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ना है।
2: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, कहीं नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। लेकिन हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसा भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटेलिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। हर आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
2: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
3: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था वीर बिरसा। तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा सर्जनदा, वही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य अकादमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
2: टुडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
3: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिल रहा है, ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है। अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलेगा, यही अच्छा वाला बात है।

0: हमको ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, यही अच्छा होता है।
1: टूडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टूडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टूडू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में कृष्णा कॉर्डेज फिल्म का गीत। संगीत अनु मल्लिक का है और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई है बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्बू डोम की और जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार की। तो चलिए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

मैंने दिल तुझको दिया, ये इस फिल्म का गीत सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश आई है ग्राम बड़बुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम की।

और अगली फरमाइश आई है बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आजमा फकीर, और लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर की। इन सब ने सुनना चाहा है नमस्ते लंदन फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

बाजीराव मस्तानिया, ये इस फिल्म का गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और इस गीत को सुनना चाहे भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में घर फिल्म का गीत। संगीत आरडी बर्मन का है और इस गीत को लिखा है गुलजार ने और इस गीत की फरमाइश आई है नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी और रोहन केसरी की।

0: कार्यक्रम सुनोइया सब श्रोता बहिन मन के सुमन बहिन बटले जोहार संगे वन्ना बहिन राउट को हो जोहार
1: जोहार सुमन दी और कार्यक्रम सुनवैया सब बहिन मन के वन्ना राय बटले जोहार और असरा करीला कि हमरे कर सब श्रोता बहिन मन नगदे नगद होबे।
0: हाँ वन्ना बहिन, जब सब नगद रहेला नी तबे सब बेस बुझायला है नी। और देखो कि हमरे बहिन मन का तो जो जिम्मेदारी है वो दोहरा है, घर कहूँ चाहे बाहरे सब बटे देखे पड़ेला। और एखन कर बेरा में तो जे भी कामकाजी महिला मन है वो मन के देखब कि एकलापन और जे अवसाद कर समस्या है इके बहुत ज्यादा देखे ले भेटा थे। और जे मन का जिम्मेदारी है जीवन कर काम में जे करे ना उखर में जे असंतुलन है और सामाजिक दबाव कर चलते एगो गंभीर समस्या भी बनते हैं जाते। इके हमरे के बहुत बेर अनदेखा भी करी ला और इकरे कारण से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमरे कर स्वास्थ्य पर इकर प्रभाव भी होवेला जे कि एकदम सही नखे।
1: एकदम सही कहली कि देखो नी आजकल कर महिला महिला मन जे है से घर कर संगे संगे तो बाहरे कर काम भी करत है और दियो बटे कर जे तालमेल है से के बैठाई के में उमने संतुलन कर कमी जे हो जाते और दोहरा जिम्मेदारी और सामाजिक अलगाव कर चलते पनपत है। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच तालमेल नहीं बैठा ले उमने अक्सर अपने के फंसा हुआ भी महसूस करे ना उमने उकर चलते अकेलापन और अवसाद जैसन बीमारी से भी जूझत है। देखो का वेला कि ऑफिस में उमने बहुत कड़ा मेहनत करे ना उकर बाद घरे आए के घर कर काम करे जैसे कि खाना बनाए एक छुआ मन के देखे एक बड़ बुजुर्ग का देखभाल करे कर भार भी उमन कर ऊपरे रहला जेकर चलते उमने मानसिक रूप से दबाव महसूस करे ना। काम कर व्यस्तता और अत्यधिक थकान कर चलते अपन सहेली परिवार और सामाजिक कार्यक्रम ले उमने समय नहीं निकला पा रहे ना जेकर से वो धीरे धीरे एकला हो जाए ना और अकेला रह सीखे ना। छुआ और परिवार के पर्याप्त समय भी नहीं देवे पा रहे ना जेकर चलते उन्हें मन मन अपने के अपराध बोध में रहे लागे ना मने गिल्ट फील करे ना उमने और कहूँ तो शारीरिक और मानसिक रूप से बेसी थाई जे उमने जाए ना उकर चलते उमन के कोनो भी चीज में खुशी नहीं महसूस होवेला।
0: सही कहली। तो देखो जब इमन में ई सब का जो बदलाव इमन का व्यवहार में जो बदलाव आवे लागेला तो इकर में दोस्त मन से परिवार मन से भी इमन कटे लागेला और बातचीत भी कम होवे लागेला जेकर से उमन में चिड़चिड़ापन होवे लागेला खीज होवे लागेला। लेकिन जीवन में इकर से बाचेक है हमरे के अपन सकारात्मक सोच लाने को भी और हर चीज कर जो सीमा तय करे खोवेला। ऑफिस कर काम ऑफिस में निपटाएक चाहिए और घर कर काम जो भेलक से के घर में ही खत्म करेक चाहिए और अपन क्षमता से बगरा जिम्मेदारी के नी लेवेक चाहिए इकर से बाचिक चाहिए और उतने काम के करू जतरा के पारीला खुशी खुशी करे पारीला। और अपन जे करीबी दोस्त हैं उमन संगे चाहे अपन जे जीवन साथी कर संगे हमरे अपन जे भी परेशानी है उके साझा कर सकीला और दिन कर काम से कम आधा घंटा कर समय अपन पसंदीदा काम ले चाहे किताब पढ़े खोलक चाहे गीत सुने भेलक चाहे कहीं टहले निकलू इस तरीकर काम में जरूर लगाएक चाहिए।
1: एकदम सही कहली सुमंदी कि हमरे मन अगर सीमा तय करीला तो अपन जे घर कर काम है और बाहरे कर काम है उके बढ़िया से करे पारब और देखो बेसी जिम्मेदारी के उठाई के तो सबे नहीं पारबे इसलिए ना कहे भी उमन के सीखे के चाहिए और अपन ले कम से कम 20 से 30 मिनट निकलाय के चाहिए जेकर में उन्हें अपन पसंद कर काम अपन रुचि कर काम शौक कर काम करे उमन के जरूर करे के चाहिए। और देखो सबसे बड़ी चीज है कि महिला कर ऊपर इतना काम है तो घर कर आदमी मन कर भी जिम्मेवारी है कि अगर काम में उमन के मदद करे के चाहिए। अगर उमन बाहरे कर काम भी करत है घर कर काम भी कर छुआ भी सम्राट है और बड़ बुजुर्ग कर देखभाल भी करते हैं तो बाकी सदस्य के भी उकर काम में हाथ बटाई के चाहिए जेकर से कि उमन के तनी अपन काम से आराम लागी उमने चिड़चिड़ाबे नहीं और अवसाद जैसे समस्या हो।

0: से कम होवी। और देखो ई उदासी, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लागे और नींद नहीं आवे जैसा समस्या अगर बढ़ जाए तो क्या हमारे मन के नजरअंदाज भी नहीं करे के चाहिए। कोनो थेरेपिस्ट या मनोचिकित्सक से हमारे मन के जरूर परामर्श लेवे के चाहिए।
1: सही कहली। और देखो इकर में सबसे जे कारगर है के कि हमारे के व्यायाम होलक, योग है चाहे सैर, ये सब कर सकीला। इकर से शरीर में एंडोर्फिन जे खुशी देवे वाला हार्मोन है ई निकलेला, जे कि औषाद के कम करे में मदद करेला। और रात के कम से कम 7 से 8 घंटा कर अच्छा नींद लेवे के चाहिए। संगे है अपन खान पान के भी संतुलित आहार के शामिल करे के चाहिए हमरे के। और जेकर में कि भरपूर हरा फल सब्जी खाओ, नट्स खाओ, दूध है चाहे नारियल पानी है, अंकुरित अनाज है, ये सब पौष्टिक भोजन के अपन आहार में हमरे के शामिल करे के चाहिए। तो ई तरह हमरे अपन जीवन कर ई समस्या जे भी है इकर से निपटे के लिए एगो सकारात्मक रुख अपनाए सकीला और अपन आत्मविश्वास के बढ़ाए के चाहिए। जब हमरे हर चीज में सकारात्मकता का नजरिया से देखब तो हमरे अपने आप के कृतज्ञता और दृष्टिकोण के अपन जीवन कर नया रूप देवे और जिये कर बटे अग्रसर होवे लागिला, है नहीं?
0: एकदम सही कहली कि अपन ले समय निकलाए बहुत जरूरी है और अपने के स्वस्थ रखे बहुत जरूरी है, तबे रौरे मन अपन काम के अपन घर के बढ़िया से देखे पा रहे।
1: हाँ, और सकारात्मक दृष्टिकोण लेके चलो।
0: एकदम। तो चलो अब हमरे मन सुनो एगो नागपुरी लोकगीत केतकी देवी और संगी मन कर गावल।

0: ईर हैं केतकी देवी और संगीमन करगावल नागपुरी लोकगीत। और देखो अब हमरे एगो जानकारी कर लेवीला, ये जानकारी है कि हार्मोनल असंतुलन और तनाव इकर बारे बतात है रीमा बनर्जी और इनके से बातचीत कर है वंदना बहिन।
1: आजकल हार्मोनल असंतुलन के मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी आधुनिक जीवन शैली में तनाव, खराब खानपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और नींद में भारी कमी आ गई है। इसके अलावे प्लास्टिक और केमिकल्स में मौजूद तत्व भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए आज हम जानकारी करेंगे कि हार्मोनल असंतुलन क्या है, ये किस कारण से होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके बारे में हमें बताएंगी रीमा बनर्जी। तो रीना जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रीमा जी, सबसे पहले आप हम बहनों को बताएं कि हार्मोनल असंतुलन क्या होता है, ये क्यों होता है और इसके क्या लक्षण हैं?
2: यह हार्मोनल असंतुलन तब होता है जब शरीर की एंडोक्राइन ग्रंथियां बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन बनाती है। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण हैं जैसे वजन में बदलाव, बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक वजन का बढ़ना या कम होना, यह हार्मोनल असंतुलन के लक्षण हैं। थकान, पर्याप्त नींद के बाद भी हर समय थकान और कमजोर महसूस होना, मूड में बदलाव, अचानक मूड बदलना और चिड़चिड़ापन, चिंता या अवसाद होना, त्वचा और बाल में मुहासा होना, त्वचा का रूखापन, बालों का झड़ना या चेहरे पर अत्यधिक बाल आना, नींद की समस्या, रात को ठीक से नींद ना आना या अनिद्रा की शिकायत होना। महिलाओं में विशेष लक्षण यह है कि अनियमित पीरियड्स, भारी रक्तस्राव या PCOS की समस्या होना।
1: आपने हमें बताया कि हार्मोनल असंतुलन क्या होता है और इसके सामान्य लक्षण क्या है, लेकिन ये हार्मोनल असंतुलन जो है वो किस कारण से होते हैं?
2: हार्मोनल असंतुलन के मुख्य कारणों में खराब जीवन शैली, तनाव, अनुवांशिक बीमारियां और उम्र संबंधी बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा PCOS, थायराइड विकार और नींद की कमी भी हार्मोन के स्तर को प्रभावित करती हैं। हम कुछ इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, जैसे खराब जीवन शैली और खानपान। खराब आहार, प्रोसेस्ड फूड, अधिक चीनी और जंक फूड का सेवन इंसुलिन और अन्य हार्मोन्स को असंतुलित करता है। तनाव, लंबे समय तक तनाव में रहने से कार्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है जो अन्य हार्मोन्स के संतुलन को बिगाड़ देता है। शराब और धूम्रपान, नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन शरीर के सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालता है। मेडिकल और शारीरिक कारण, थायराइड की समस्याएं, थायराइड ग्रंथि का कम या ज्यादा हार्मोन बनाना भी इसे प्रभावित करता है। दवाइयों का प्रभाव, स्टेरॉयड या जन नियंत्रण गोलियों का अधिक उपयोग हार्मोन को बदल सकता है। वजन में भारी उतार चढ़ाव, शरीर का वजन अचानक बहुत कम हो जाना या बढ़ जाना हार्मोन्स को प्रभावित करता है। प्राकृतिक परिवर्तनों में जैसे उम्र का बढ़ना, यौवन, गर्भावस्था, रज्जोनिवृत्ति के समय शरीर के स्वाभाविक रूप से हार्मोनल बदलाव होते हैं।
1: आपने हमें बताया कि तनाव भी एक कारण है हार्मोनल असंतुलन का, तो हम जानना चाहेंगे कि तनाव क्या है और तनाव की वजह से हार्मोनल असंतुलन कैसे होता है?
2: सामान्य अर्थ तनाव दबाव या खिंचाव है, या किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति या दबाव के प्रति हमारे शरीर और दिमाग की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके मुख्य अर्थ हो सकते हैं मानसिक और भावनात्मक तनाव, दैनिक जीवन की चुनौतियों जैसे ऑफिस का काम, परीक्षा, पैसों की चिंता, पारिवारिक समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक और भावनात्मक घबराहट को स्ट्रेस कहते हैं। इसके लक्षण हो सकते हैं जैसे घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, थकान, सरदर्द और नींद ना आना। शारीरिक प्रतिक्रिया, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर फाइट ऑफ फ्लाइट प्रतिक्रिया के तहत हार्मोन छोड़ता है। इससे दिल की धड़कन, सांस की गति और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दबाव या खिंचाव, विज्ञान में स्ट्रेस का मतलब किसी वस्तु पर पड़ने वाला वह बल या दबाव है जो उसे खींचने, दबाने या उसके आकार को बदलने की कोशिश करता है। जोर या बल देना, भाषा के संदर्भ में किसी बात पर विशेष बल देने या महत्व देने को भी स्ट्रेस कहा जाता है। हाँ, स्ट्रेस या तनाव की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जब हम लगातार तनाव में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। कोर्टिसोल के असंतुलन से शरीर के बाकी आवश्यक हार्मोन का स्तर गड़बड़ हो जाता है। तनाव से हार्मोन पर भी असर होता है। प्रजनन हार्मोन पर प्रभाव पड़ता है। तनाव के कारण महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे मासिक धर्म अनियमित या दर्दनाक हो जाती है। थायराइड असंतुलन, तनाव के कारण थायराइड ग्रंथियों का कामकाज प्रभावित हो सकता है, जिससे वजन बढ़ना या थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इंसुलिन का स्तर, तनाव हार्मोन इंसुलिन के स्तर को भी प्रभावित करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल में असंतुलन और शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है।
1: रीना जी, आपने हमें बताया कि तनाव भी एक कारण है जिसकी वजह से हार्मोनल असंतुलन होता है। तो क्या तनाव की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी हमारे कुछ प्रभाव पड़ता है, और इसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
2: तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से मस्तिष्क में रसायन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे एकाग्रता में कमी आ जाती है, निर्णय लेने में परेशानी होती है, गंभीर चिंता और डिप्रेशन जैसी भी मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डिप्रेशन और चिंता, लगातार तनाव के कारण मस्तिष्क में सेरोटोनिन जैसे मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर कम हो जाता है, जिससे आप उदासी, निराशा और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। याददाश्त और एकाग्रता में कमी, लंबे समय तक तनाव मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे चीजों को याद रखने और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। मूड में बदलाव, अत्यधिक तनाव के कारण व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ा, गुस्सैल या आक्रामक महसूस करता है। नींद का प्रभावित होना, तनाव के कारण मन शांत नहीं रहता, जिससे अनिद्रा जैसी समस्याएं होती है। पूरी नींद ना मिलने से मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है।
1: हार्मोनल असंतुलन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?
2: हार्मोनल इंबैलेंस को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने आहार में फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ताजा खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए, चीनी और कैफीन से दूरी बनानी चाहिए, रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए, तनाव को प्रबंधित करना और जंक फूड से बचना भी बहुत जरूरी है। हार्मोन को संतुलित रखने के लिए हम ये कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे संतुलित और पौष्टिक आहार, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर से बचना चाहिए। अपने खाने में हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त मात्रा में वसा को शामिल करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। यह इंसुलिन के स्तर को कम करने और कार्टिसोल लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। तनाव प्रबंधन, ध्यान, योग या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अधिक तनाव से हमारे हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है। पर्याप्त नींद लेना चाहिए। रात में 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद हमें इसमें मदद कर सकती है। नींद की कमी शरीर के कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स को प्रभावित करती है।
1: रीमा जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ई रहे रीमा कुमार बनर्जी जे हमरे के जानकारी करवात रहे कि हार्मोनल असंतुलन और तनाव का लखे संतुलित करके हमरे रह सकीला। और चलू एगो नागपुरी लोकगीत सुनीला रूणा देवी और संगी मनकर गावल। एकर पहले कुछ विज्ञापन संदेश।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: ये धारा

0: हाँ तो एखन हमरे मन सुनली नागपुरी लोकगीत रुना देवी और संगी मन कर गावल। तो सुमन दी चलू आइज हमरे मन जानब कि स्तन कैंसर जो होवेला से कितना खतरनाक बीमारी है और महिला मन में ये बीमारी बढ़ते हैं जाते हैं जेकर में कि स्तन कर कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ेला और जे कि बाद में जाके ट्यूमर कर रूप ले लेवेला। से लेकर से बाचे खातिर एगो एक्सरे होवेला जेके कि कहल जाएला मेमोग्राम।
1: हाँ
0: स्तन कर एगो विशेष एक्सरे होवेला जेकर उद्देश्य है कि ब्रेस्ट कैंसर कर जे शुरुआती लक्षण है ओकर बारे में पता लगाए। तो चलू जानना बाइज कि कैसे करल जाएला और इके कखन करवाइक चाहिए।
1: सही, मेमोग्राम मशीन कर सामने खड़ा होय के स्तन के दूगो प्लास्टिक जे होला ओकर प्लेट रहेला ओकर बीच में राखल जाएला और एक्सरे लेवल जाएला। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार 40 बरिस से जे बगरा उम्र कर महिला मन है उमन के मेमोग्राम का जो स्क्रीनिंग है उसे जरूर करवाए चाहिए। और मेमोग्राम स्तन कैंसर कर जांच और निदान ले एगो अनिवार्य साधन है। इकर से लक्षण शुरू होवे पहले है स्तन कैंसर बटे लगे वाला परिवर्तन कर पता लगा सकीला हमरे, है ने?
0: हाँ।

अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। वक्त है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं झूम बराबर झूम फिल्म के गीत के साथ। राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये गीत आप सुनेंगे। संगीत शंकर एहसान लॉय का है और इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

और आइए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा की आवाज़ में माय नेम इज़ खान फिल्म का गीत। संगीत शंकर एहसान लॉय का है और इस गीत को लिखा है निरंजन एंगर ने।

पलक मुछल के गाए इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में जब हैरी मेट सेजल फिल्म का गीत। संगीत प्रीतम का है और इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने।

और आइए अब सुनते हैं कबीर सिंह फिल्म का गीत अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत अखिल सचदेवा का ही है।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसित के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia today for an official two-day visit. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with Cheetah Mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivapur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
2: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS Joint Working Groups on Counter-Terrorism and on Security in the Use of Information and Communication Technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi, and a fire-income-robbery case in Chandauli district. In Jharkhand, at least 8 people were killed and several others injured in multiple lightning strikes reported from different parts of the state during the past 24 hours. The incidents were reported from Ramgarh, Giridih, Khunti, Deoghar, Dhanbad and Sahibganj districts. The injured have been admitted to hospitals for treatment. Officials said that some of them are in serious condition. Meanwhile, authorities have advised people to remain alert during thunderstorms and adverse weather conditions. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir and Ladakh today. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade. Today, the Sensex climbed 360 points to 77,163, while the Nifty rose 105 points to 24,118 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे सम्मान। पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 आईटीआई को उद्योगों की जरूरत के अनुसार किया जाएगा विकसित। 1,687 करोड़ रूपये होंगे खर्च। रांची में नाबार्ड के आम महोत्सव में 100 टन से अधिक आम की हुई बिक्री। जनजातीय किसानों और किसान संगठनों को मिला बड़ा बाजार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट की परीक्षा आज से शुरू। रांची के 6 परीक्षा केंद्रों पर भी 30 जून तक 2 पालियों में चलेगी परीक्षा। निषेधाज्ञा लागू। और राजधानी रांची में चल रही 5वीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का हुआ समापन। पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास बने चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोनाघाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
1: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
3: मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: यह विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। उनके पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण करेंगे। इसे लेकर झारखंड में खुशी की लहर है। दिवंगत शिबू सोरेन की पोती जयश्री सोरेन ने इसे गर्व का क्षण बताया।
4: स्वर्गीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए ये एक भावुक कर देने वाला पल भी है और एक गर्व का क्षण भी है, क्योंकि भारत सरकार ने उनके दशकों के योगदान को, संघर्ष को और उनका झारखंड वासियों के प्रति जो समर्पण था उसको नवाजा और एक सम्मान दिया।
0: केंद्र प्रायोजित पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 आईटीआई उद्योगों को की जरूरत के अनुरूप विकसित करने की मंजूरी मिली है और इनके अपग्रेडेशन पर 5 साल में कुल 1,687 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत एक उन्नत आईटीआई को हब बनाकर उसके साथ 4 स्पोक आईटीआई जोड़े जाएंगे, जहां इंडस्ट्री आधारित नए ट्रेड शुरू होंगे और छात्रों को प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप तथा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रांची में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का सफल समापन हुआ, जिसमें 100 टन से अधिक आमों की बिक्री हुई। इस महोत्सव के दौरान करीब 60 लाख रुपए की बिक्री दर्ज की गई और राज्य के जनजातीय किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को बड़ा बाजार उपलब्ध हुआ। नाबार्ड ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, बाजार से जोड़ने और जनजातीय आजीविका को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने धनबाद मंडल के छिपादोहर, बरवाडीह, महुआ मिलान रेलखंड में कमीशनिंग कार्य के लिए कल से 27 जून 2026 तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने की घोषणा की है। इस कारण रांची सासाराम इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आयुष्मान भारत योजना की खूबियां बताई। श्री सेठ ने कहा कि इस योजना से 9 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
5: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देशवासी जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, खेत खलियान बिक जाता था, बेटा बेटी की पढ़ाई छूट जाता था, आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड, देश भर के करोड़ों लोग आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। लगभग 9 करोड़ से ऊपर लोग अब तक देश भर में आयुष्मान से इलाज करा चुके हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हो गई। यह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी।
6: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से देश भर के साथ ही रांची में 6 परीक्षा केंद्रों पर UGC नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में 30 जून तक होने वाली इस परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बता दें कि UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा दिवस से पहले अपनी परीक्षा तिथि, पाली, समय और अपने परीक्षा केंद्र की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके अलावा PWD या PWBD अभ्यर्थियों को अपने आवंटित केंद्रों का पहले से दौरा करने की सलाह दी गई है ताकि वे स्थान और उपलब्ध सुविधाओं से परिचित हो सकें। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राज्य में कल बारिश के दौरान वज्रपात से CPI नेता और एक महिला वार्ड सदस्य समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 किशोरों सहित दर्जन भर से अधिक लोग झुलस गए। इसके साथ ही देवघर, बरहेट और चित्तरपुर में भी वज्रपात से मौतें हुई। संताल कोयलांचल में 4, खूंटी में 2 और रामगढ़ में 2 लोगों की जान गई। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 461 अंक बढ़कर 77,264 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,153 पर है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG और फार्मा सेक्टर में बढ़त देखी गई। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची में चल रही 5वीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास पहले, पश्चिमी सिंहभूम के तनिष्क कुमार दूसरे और रांची के यश रंजन तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे सम्मान। पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 ITI को उद्योगों की जरूरत के अनुसार किया जाएगा विकसित। 1,687 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रांची में नाबार्ड के आम महोत्सव में 100 टन से अधिक आम की हुई बिक्री। जनजातीय किसानों और किसान संगठनों को मिला बड़ा बाजार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से UGC नेट की परीक्षा आज से शुरू। रांची के 6 परीक्षा केंद्रों पर भी 30 जून तक 2 पालियों में चलेगी परीक्षा। निषेधाज्ञा लागू। और राजधानी रांची में चल रही 5वीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का हुआ समापन। पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास बने चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, ये वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसमें आज आप सुनेंगे ठुमरी और दादरा। कलाकार हैं सिप्रा बोस।

0: अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे गजल हरिहरन की आवाज में।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी

0: तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसमें आज आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में चंद गजलें। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. In a major employment and welfare push, the BJP-led West Bengal government today presented its first full budget 2026-27, focusing on social welfare, infrastructure development and employment, and also announced a slew of women-centric schemes. Presented today by Finance Minister Swapan Dasgupta, has announced the recruitment for 1 lakh vacant posts across various state departments. 33% of these new positions will be reserved for women. We have a detailed report from our Kolkata correspondent.
1: The government proposed a 20% hike in dearness allowance for government and semi-government employees, teachers and teaching staff. Pensioners will also benefit from this increase, which will take effect from 1st October. Presenting a deficit budget of 6,070 crore, Finance Minister Swapan Dasgupta called it a roadmap for building a developed Bengal. He also revealed that the state's debt now stands at over 8 lakh crore rupees, making financial discipline a major challenge. The budget includes recruitment for 1 lakh vacant posts, 20,000 in the police force and 50,000 teachers. 33% of these jobs will be reserved for women, with an additional 10% reserved for Agniveers. Key allocations include rupees 36,000 crore for the Annapurna Yojana, over rupees 8,500 crore for agriculture, rupees 8,000 crore for food and supplies, rupees 7,000 crore for higher education, and nearly rupees 18,000 crore for home and hill affairs. The government also announced salary hikes for parateachers, civic volunteers, and village police. Anganwadi and ASHA workers will receive an additional rupees 5,000 monthly honorarium, while midday meal cooks will get rupees 1,000 more. Further measures include setting up a tea board for workers' welfare, Aushman Bharat health cards for migrant laborers, and the One Nation One Ration scheme. In his speech, the finance minister pledged to build a corruption-free administration, promising citizen services that are simpler, more transparent and accountable. Shondipan Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: The BRICS National Security Advisors meeting is underway in New Delhi. The two-day meeting, being chaired by National Security Advisor Ajit Doval, brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia and Saudi Arabia, South Africa and the UAE. We have a report.
2: During the meeting, the national security advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, non-traditional security challenges confronting the world today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The national security advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
0: The gathering takes place as India holds the BRICS chairship for the fourth time in 2026, having previously led the grouping in 2012, 2016 and 2021. India's chairmanship operates under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflecting Prime Minister Narendra Modi's people-centric vision articulated at the 2025 Rio Summit. President Draupadi Murmu today interacted with Cheetah Mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shyopur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. Officials informed the president that India currently has 52 cheetahs, including 49 in Kuno National Park, while three have been relocated to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. She was also apprised of the tracking system, conservation initiatives and water facilities developed inside the forest for the cheetahs. Project Cheetah was launched by Prime Minister Modi in 2022. with the release of 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park. Subsequently, additional cheetahs were brought from South Africa and Botswana. The cheetah population in Kuno has been steadily increasing through sustained conservation and breeding efforts, marking a significant milestone in India's wildlife conservation program. The Parliamentary Standing Committee on External Affairs, chaired by Member of Parliament Shashi Tharoor, has begun a 4-day study visit to Jammu and Kashmir and Ladakh to review strategic border security and foreign policy issues. Our correspondent reports that the committee will visit Jammu, Srinagar, Kargil and Leh till the 25th of this month to gain first-hand insights into border management and the security situation in frontier areas. The panel is examining recent developments in India's bilateral relations, the suspension of the Indus Waters Treaty and threats posed by cross-border terrorism along the line of control and the international border. It is also focusing on India-China relations and the situation along the line of actual control in eastern Ladakh. BJP National President Nitin Naveen met renowned agricultural scientist and Padma Bhushan awardee Sardara Singh Jhol in Ludhiana today and held discussions on Punjab's agrarian crisis. Following the meeting, Mr. Naveen said it was a privilege to interact with a personality who has made immense contributions to the field of agriculture. He said he gained valuable insights on agricultural issues during his interaction with Shri Jhol and expressed confidence that his views and suggestions would prove beneficial for the nation.
3: I consider it a great honor to meet someone who truly understands the concerns and aspirations of farmers and is committed to helping them progress in the right direction. He has studied these issues extensively, and it is a privilege for me to have the opportunity to meet him.
0: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa-Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh, was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi, and a firing-cum-robbery case in Chandauli district. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia on a 2-day visit to further advance the special partnership between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said he is looking forward to fruitful engagements. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. He will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. In Colombia, right-wing candidate Abelardo de la Espriella has narrowly won Colombia's presidential election, defeating left-wing Senator Ivan Cepeda by a very small margin. According to preliminary results, with almost all votes counted, De La Espriella received about 12.95 million votes, around 49.7% of the votes, while Cepeda received about 12.7 million, around 48.7% of the votes. The election marks a sharp shift in Colombia's politics after the presidency of Gustavo Petro, who was constitutionally barred from running again and backed Cepeda as his successor. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency emergency response teams to rush to the site. State energy giant Qatar Energy confirmed the incident, saying operations were underway to restart parts of the export terminal when the explosion took place. Officials have not yet confirmed whether the blast was accidental or linked to external factors. Global crude oil prices declined sharply by up to 3% today after talks between the United States and Iran concluded in Switzerland, easing concerns over supply disruptions and raising hopes of increased Iranian oil exports. International benchmark Brent crude fell more than 2% to around $79 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude traded near $75 per barrel, a decrease of 3%. The decline came after senior U.S. and Iranian officials reportedly wrapped up the first round of talks aimed at extending a fragile ceasefire and reducing tensions in the region. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in. Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom in a statement outside 10 Downing Street. He said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register the second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
5: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
4: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
4: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
7: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
4: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

जय भारती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरदास मान की आवाज में वीर ज़ारा फिल्म का गीत। संगीत मदन मोहन का है और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

और आइए अब सुनते हैं परदेश फिल्म का गीत। आवाजें हैं हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन, आदित्य नारायण की। संगीत नदीम श्रवण का है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण होने जा रहा है। अलग राज्य के निर्माता और पूर्व मुख्यमंत्री देशम गुरु शिबू सोरेन को कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश का यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेंगी। देशम गुरु के सुपुत्र और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के हाथों इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। यह प्रतिष्ठित सम्मान शिबू सोरेन को लोक कल्याण और आजीवन आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंपई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता और आस्था से जुड़े पवित्र धार्मिक स्थल जाहेर थान जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जाहेर थान, देशावली और माझी थान जैसे पवित्र जगहों पर जाकर शीश नवाना एक ऐतिहासिक पल है। चंपई सोरेन ने इसे पूरे आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा सम्मान बताया है।
1: आज बड़ा गौरव आदिवासी लोग समझ रहे हैं, मुझे बहुत गौरव भी लग रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहाड़पुर गांव में जाहेर थान में जाहेर गाड़ में डोबो जोहार किया, प्रणाम किया। हमारा आस्था, हमारा अस्मिता जो जुड़ा हुआ है, ये आज ऐतिहासिक का पल है।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड के सिनपुर ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा जामिया इस्लामिया की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सुरक्षित आवास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने मेहरमा प्रखंड के गजंडा पंचायत स्थित अमडीहा में एक नए नाला निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने धनबाद मंडल के सीपीडीआर बरवाडी महुआ मिलान रेलखंड पर तीसरी अप लाइन जोड़ने के लिए 23 से 27 जून तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की घोषणा की है। इस कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस सहित कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं हटिया नई दिल्ली और टाटा जम्मू तवी जैसी लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। इस दौरान बरवाडी स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी बंद रहेगा। राज्य में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में हवाओं के रुख में बदलाव के साथ ही बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की अपील की है। हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है। यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार निशानेबाजों को सीधे राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
2: ये तृतीय हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप शूटिंग का ये होने जा रहा है। क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज्यादा थी बच्चों की संख्या में, उसी लिए 4 दिवसीय इसको किया गया है। इसमें 4 दिन में करीब 400 बच्चे शामिल हैं।
0: झारखंड T20 क्रिकेट के लीग चरण का समापन हो गया है। जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आखिरी मुकाबलों में छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स ने शानदार जीत दर्ज की। पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स ने विराट सिंह के धमाकेदार 106 रनों की बदौलत 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और जमशेदपुर स्टीलर्स को 85 रनों के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं दूसरे मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने एक तरफा खेल दिखाते हुए धर्माद डायमंड्स को 9 विकेट से शिकस्त दी और टूर्नामेंट में विजयी समापन किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदियां बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। वक्त है प्रोग्राम रांची मेलोडीज का।

दोस्तों, कभी कभी ना प्यार हमारी जिंदगी में देर से आता है, पर जब आता है ना तो जिंदगी ही बदल देता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्यार जो है ना, ये चीज ही ऐसी है जो जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना देता है। तो चलिए इसी बात पे रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक और बेहतरीन सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ, और आप हैं अपनी दोस्त विनीता के साथ।

हाँ जी, बातें हो रही हैं प्यार की, तो कहते हैं ना कि मोहब्बत वो पहेली है जो सुलझ जाए तो भी मोहब्बत है और ना सुलझे तो भी मोहब्बत ही है। बस इसे एक एहसास की जरूरत है जिसके लिए वो एक नजर ही काफी है, जिसमें बस प्यार ही प्यार हो।

लफ्जों की जरूरत नहीं, बस तुम मुस्कुरा देना, देखकर पल की झपका देना, मुझे यकीन रहेगा कि मोहब्बत जिंदा है।

दोस्तों साथ उसी का चुने जिसके साथ सुकून मिले, क्योंकि खूबसूरत चेहरे हर जगह मिल जाएंगे लेकिन दिल को समझने वाले लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तो बस इन बातों के साथ, प्यार भरे एहसासों के साथ विनीता लेती है इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज धनबाद नगर निगम परिसर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपनगर आयुक्त संदीप अनुराग के नेतृत्व में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके बाद कर्मियों ने एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कम उम्र में विवाह होने पर लड़कियों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक दुष्परिणामों को बेहद सजीव तरीके से प्रदर्शित किया। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया की फुलवरिया शाखा में आज दोपहर एक युवक ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार रसकलाल पासवान पर ईंट पत्थर से अचानक हमला कर दिया। हमले में सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हंगामा बढ़ता देख जब स्थानीय लोगों ने आरोपी दिलीप यादव को रोकने का प्रयास किया तो उसने खुद को भी मारकर घायल कर लिया। सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस ने कपाली ओपी क्षेत्र के कबीर नगर स्थित केजीएन मेडिकल दुकान में रंगदारी न देने पर की गई फायरिंग और लूटपाट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को जमशेदपुर के आजाद नगर से दबोचा। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 जुलाई से आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड की टीम का चयन ट्रायल आज रांची में संपन्न हुआ। मरांग गोम के जयपाल

0: से मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस ट्रायल में राज्य भर से 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चयनित खिलाड़ियों के लिए जुलाई में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ साथ चले, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की है।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मानव जीवन ईश्वर का अनुपम उपहार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सम्मान और सुख की कामना करता है, लेकिन परिस्थितियां, गलत संगति, नशे की लत, बेरोजगारी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन और सामाजिक उपेक्षा के कारण अनेक लोग जीवन की सही दिशा से भटक जाते हैं। श्रोताओं, ऐसे लोग स्वयं को निराशा, अपराध, हिंसा, नशाखोरी और सामाजिक अलगाव के अंधकार में पाते हैं। एक बात जो बेहद गौर करने वाली है कि समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल भटके हुए लोगों की आलोचना करना नहीं, बल्कि उन्हें नई राह दिखाकर मुख्य धारा से जोड़ना है। भटकी हुई जिंदगियों को नई दिशा देना केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा भी है। जब किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन, अवसर और सहयोग मिलता है, तो वह न केवल अपना जीवन बदलता है, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम मानव जिंदगियों के भटकाव के कारण को तलाशें, तो हम पाते हैं कि व्यक्ति का भटकाव अचानक नहीं होता, इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण शामिल होते हैं। युवावस्था में व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होता है। यदि उसे अच्छी संगति नहीं मिलती, तो वह गलत आदतों और अपराध की ओर आकर्षित हो जाता है। कई बार मित्रों का दबाव व्यक्ति को नशे, हिंसा और अन्य जो गलत गतिविधियां हैं उस ओर ले जाती हैं। रोजगार के अवसरों की कमी और आर्थिक तंगी लोगों को निराशा की ओर धकेलती है। कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। इसके अलावा परिवार व्यक्ति का पहला विद्यालय होता है, ये हम सब जानते हैं। जब परिवार में प्रेम, संवाद और सहयोग की कमी होती है, तब व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नशा व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थ युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझने की क्षमता देती है। शिक्षा के अभाव में लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। भटके हुए लोगों को समाज से अलग कर देना समस्या का समाधान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सुधार

और पुनर्वास का अवसर दिया जाए। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का एक दीप अवश्य होता है। सही मार्गदर्शन और प्रेरणा उस दीप को पुनः प्रज्वलित कर सकती है। श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि अनेक लोग जिन्होंने जीवन में गलतियां की बाद में समाज के आदर्श बने। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास मिलता है कि समाज उसे स्वीकार करेगा, तब उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा जागृत होती है। यही परिवर्तन नई राह की शुरुआत है। शिक्षा भटकी हुई जिंदगियों को नई दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और उसे जीवन के उद्देश्य समझने में सहायता करती है। वहीं कौशल विकास कार्यक्रम लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि भटके हुए युवाओं को इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाए तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। भटके हुए व्यक्तियों को नई राह दिखाने में परिवार और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार को चाहिए कि वह अपने बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सकारात्मक वातावरण प्रदान करें। समाज को भी ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया है तो उसे अवसर और सम्मान जरूर मिलना चाहिए। कई सामाजिक संस्थाएं नशा मुक्ति, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे प्रयासों को हमें प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। जीवन में प्रेरणा का विशेष महत्व है। अनेक महापुरुषों ने कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त की। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर दुनिया को नई दिशा दी। वहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने परिश्रम और संकल्प से ऊंचाइयों को प्राप्त किया। ऐसे उदाहरण युवाओं को यह संदेश देते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, दृढ़ इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से जीवन बदला जा सकता है। आज समाज में नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। नशा मुक्ति केंद्र ऐसे लोगों को नई जिंदगी देने का कार्य कर रहे हैं। इन केंद्रों में परामर्श, चिकित्सा और मानसिक सहयोग के माध्यम से लोगों को नशे से बाहर निकालने में सहायता मिलती है। पुनर्वास कार्यक्रम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि भटकी हुई जिंदगियों को नई राह देना केवल किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक सहयोग, सकारात्मक मार्गदर्शन और सामाजिक स्वीकृति के माध्यम से हम अनेक लोगों के जीवन में आशा का नया दीप जला सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी या भटका हुआ नहीं होता। परिस्थितियां उसे उस दिशा में ले जाती हैं। यदि हम उसे समझें, उसका हाथ थामें और सही अवसर दें तो वही व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। भटके हुए लोगों को तिरस्कार नहीं, अवसर चाहिए। उपेक्षा नहीं, सहयोग चाहिए और अंधकार नहीं, नई राह चाहिए। यही मानवता का सच्चा संदेश है। श्रोताओं, आज अपने इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे मुख्य धारा से भटके हुए उन लोगों के बारे में जो अब आत्मसमर्पण कर आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास नीति का लाभ ले रहे हैं। समाज से भटके हुए, परिवार से पलायन कर चुके ऐसे भाई बहन जो अब हमारे मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास निरंतर सरकार और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी ओर हमारे स्पेशल टास्क फोर्स की भी अहम भूमिका है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं IG स्पेशल टास्क फोर्स श्री अनूप बिरथरे सर। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री अनूप बिरथरे सर, जो वर्तमान में HDF IG के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: देती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी रांची का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए, और आकाशवाणी रांची के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जोहार।
0: कार्यक्रम में हम आपसे विशेष रूप से आज चर्चा करना चाहेंगे नक्सल से संबंधित। देखा जाता है कि हमारे झारखंड राज्य की ये एक चुनौतीपूर्ण समस्या है कि नक्सल आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर कहें तो हमारे विकास को भी प्रभावित करता है। तो आज हमारे राज्य में झारखंड की विशेष तौर से बात करें तो यहाँ नक्सल की क्या गतिविधियाँ हैं और कितने पॉकेट्स अभी बचे हुए हैं?
1: देखिए, झारखंड राज्य का जब गठन हुआ नवंबर 2000 में, तो उस समय ये जो समस्या है उग्रवाद की और नक्सल की, ये हमको विरासत में मिली
0: जी।
1: 2000 के पहले से ही नक्सली गतिविधियां झारखंड में थी, जो तत्कालीन बिहार के समय में जो साउथ बिहार का इलाका कहलाता था
0: जी।
1: तो राज्य गठन के साथ ही इस चुनौती का सामना हमारे प्रशासन ने, राज्य सरकार ने और पुलिस ने किया, और उसके बाद शुरुआती दौर में संसाधनों की कमी होने के कारण से, पुलिस बल की कमी होने के कारण से, और जो मॉडर्न वेपनरी है, जो संसाधन चाहिए है नक्सलियों से लड़ने के लिए, वो कम होने के कारण से ये समस्या बहुत विकराल रूप में थी। और 24 डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के थे, उनमें से लगभग 21 जिले माओवादी जो उग्रवाद की समस्या से प्रभावित रहे और गंभीर रूप से प्रभावित रहे
0: जी।
1: और उसके बाद बहुत लंबी एक संघर्ष की गाथा है झारखंड पुलिस की, और झारखंड प्रशासन ने 600 से अधिक हमारे जवान और पदाधिकारी हैं जिन्होंने शहादत दी है नक्सलियों के विरुद्ध में लड़ते हुए, और आज हम उस मुकाम पर हैं जब हम ये बोल सकते हैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कि हम लगभग माओवाद के, नक्सल के खात्मे की तरफ में हैं। जैसा मैंने बताया कि पहले लगभग 21 जिले 24 में से हमारे उग्रवाद प्रभावित थे, और अभी मात्र 4 जिले ऐसे हैं जिनको कि नक्सल प्रभावित केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा माना जाता है, और उनमें भी ये समस्या मूल रूप से पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले में सिमट के रह गई है। तो इन्होंने निश्चित तौर पर विकास में बाधक बने हैं, झारखंड को बहुत नुकसान इन्होंने किया है, परंतु राज्य सरकार के संकल्प से और झारखंड पुलिस की मेहनत से, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मेहनत से, अब हम इस समस्या के लगभग खात्मे की तरफ आ चुके हैं।
0: सर, जहाँ तक शांति और सुरक्षा की बात अगर हम कहें तो एसटीएफ की इसमें क्या भूमिका है?
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा और इसको जरूर हमारे पूरे झारखंड राज्य को और श्रोताओं को जानना चाहिए। देखिए, जब ये समस्या राज्य गठन के बाद, ये खूबसूरत हमारा राज्य बना नवंबर 2000 में, उसके बाद जब गंभीर समस्या माओवादी की झेली और बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आम नागरिकों को हत्या की गई माओवादियों के द्वारा और पुलिस बलों के खिलाफ, और डेवलपमेंट के सारे काम इनके द्वारा रोके गए, तो एक विशेष कार्यबल के रूप में, एक स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में, नक्सलियों से लड़ने वाले एक विशेष बल के रूप में झारखंड जगुआर, जिसको एसटीएफ कहते हैं, उसका गठन वर्ष 2008 में किया गया। वर्ष 2008 में इसका गठन किया गया। जैसे आंध्र प्रदेश में 70 के दशक में ही माओवादी समस्या थी, तो उसके उन्मूलन के लिए एक विशेष फोर्स उन लोगों ने बनाई थी जिसको ग्रेहाउंड नाम दिया था, तो उसी तर्ज पर झारखंड जगुआर का, एसटीएफ का गठन किया गया। ये बल की जो पूरी ट्रेनिंग है, इनकी जो पूरी लर्निंग है, वो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान करने के लिए स्पेशलाइजेशन है, चाहे इनके वेपन हो, चाहे वज्र वाहन हो, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हो, फायरिंग हो, और उग्रवादियों के खिलाफ लड़ने की पूरी रणनीति और टैक्टिक्स इसने अपनाई। तो ये जो कार्यबल बना 2008 में और आज हम 2024 में खड़े हैं, तो पिछले लगभग 16 सालों में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नक्सलियों की समस्या को ख़त्म करने में, उनकी समस्या को कम करने में। हमारे 24 जो है जवान और पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने शहादत दी है, सर्वोच्च बलिदान प्राणों का दिया है उसमें, और बड़ी संख्या में नक्सलियों को अरेस्ट करने में, और इसके अलावा जो है सरेंडर करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो झारखंड का एक ये स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स है, और जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है नक्सलवाद की समस्या को ख़त्म करने में।
0: जी बिल्कुल। और सर, जहाँ तक हमारी समझ है और हमने जो जहाँ तक देखा और सुना है कि जो भी नक्सली हमारे भाई बहन जो मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उन्हें एक आत्मसमर्पण नीति का भी लाभ दिया जाता है, जो सरकार की एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी बिल्कुल, हमारे राज्य में जो झारखंड राज्य की उग्रवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास की जो नीति है, वो पूरे देश में सबसे अच्छी आत्मसमर्पण नीतियों में से एक है, और इसमें बहुत सारी नई चीज़ों का प्रावधान भी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन सर के नेतृत्व में किया गया है, और इस आत्मसमर्पण नीति में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे जो भूले भटके हुए जो नक्सली हैं, जो बेसिकली गलत रास्ते में चले गए हैं माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के, उनको वापस आने का पूरा मौका देते हैं। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेगा उनको केसेस को ख़त्म करने में मदद दी जाएगी, उनको ओपन जेल में हजारीबाग में रखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई नक्सली उसके खिलाफ में कोई पुरस्कार घोषित है, मान लीजिए 5 लाख 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का भी रिवार्ड घोषित है, वो रिवार्ड उनको खुद को या उनके परिवार को मिलता है। इसके अलावा उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनके परिवार को स्वास्थ्य की सुविधाएं और बीमा की सुविधाएं इत्यादि दी जाती हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरेंडर पॉलिसी देती है, और यही कारण है कि अब तक लगभग सरेंडर पॉलिसी के गठन से लेकर और आज तक लगभग 400 से ज़्यादा नक्सली उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, उन्होंने लाभ उठाया है और इस राज्य के विकास में मदद की है और मुख्य धारा में वापस आए हैं। तो जो बचे खुचे जो माओवादी हैं उनसे भी हम लोग ये अपील करते हैं कि वो जरूर इस आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं, मुख्य धारा में वापस आएं, अपने घर पर रहें, परिवार के साथ रहें और झारखंड राज्य के विकास में अपना योगदान दें।
0: जी सर, नक्सल प्रभावित जिलों में कई जगहों में आप रहे हैं और बहुत करीब से आपने इन नक्सली संगठन के लोगों को भी देखा है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि जब हमारे भाई बहन सरेंडर करने के लिए आपके पास आते हैं या फिर किसी भी तरह से संपर्क साधते हैं तो पहला कदम आपकी ओर से क्या होता है?
1: देखिए, मैंने कई नक्सल प्रभावित जिलों में एज SP और अन्य पदों पर काम किया है, जिनमें सिमडेगा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और बहुत सारे अन्य क्षेत्र शामिल हैं। तो इनमें जब हम लोगों ने काम किया तो काफ़ी जो नक्सली थे, उग्रवादी थे, उन्होंने हर साल सरेंडर भी किए हैं, जिनमें इनके बड़े लीडर्स भी शामिल हैं और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो इसमें जो आपने प्रश्न पूछा कि हम लोग सबसे पहले किस तरह का, हम लोग उनका स्वागत करते हैं जब भी वो सरेंडर के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको बाकायदा सेफली जो है पुलिस के पास में बुलाया जाता है। इसके बाद उनको उनके परिवार से मिलाया जाता है, परिवार के साथ में उनको रखा जाता है। सरेंडर पॉलिसी के जो सारे लाभ हैं जो ऑलरेडी उनको पता भी हैं, उसके अलावा भी हम लोग उनको डिटेल में बताते हैं, और उनको जो भी जो है सुविधाएं हैं, चाहे वो कैश रिवार्ड हो, चाहे मेडिकल की सुविधाएं हो, चाहे बीमा की सुविधाएं हो, वो सारी उनको दी जाती हैं। और उनके साथ एकदम हमारे भाई की तरह, जैसे कि मतलब कोई भूला भटका हुआ व्यक्ति हो जो विचारधारा गलत विचारधारा के कारण से भटक गया, उस तरह उनका हम लोग स्वागत करते हैं। बाकायदा भी 15-20 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 25 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया पुलिस मुख्यालय में DGP मैडम के सामने, और उसमें हम लोग भी प्रोग्राम में शामिल थे। तो उन सब का बुके दे करके स्वागत किया गया, उनको हम लोग मुख्य धारा में अपने घर के मेंबर की तरह उनका स्वागत करते हैं। तो इतनी उदार जो है क्या नाम है व्यवस्था है, और इतना बढ़िया से स्वागत झारखंड पुलिस के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद हम लोग उनको सारी सुविधाएं देने के बाद में जो विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया के तहत उनको हजारीबाग ओपन जेल भेजते हैं। ओपन जेल में उनको अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है। जैसे कि कोई उग्रवादी हैं, वो अगर एक बार हजारीबाग ओपन जेल जाएंगे तो वहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी वो रह सकते हैं। इसके अलावा उनको वहाँ खाने पीने की सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधाएं होती हैं, और लीगल एड भी उनको दी जाती है जो उनके केसेस हैं उनके लिए, जमानत इत्यादि के लिए। तो ये एक्चुअली प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के तहत 400 से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है।
0: ये तो बहुत बड़ी बात है और काफी राहत वाली बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी झारखंड के अभी भी राज्य इससे प्रभावित हैं, यानी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें अभी जो मुहिमें चलाई जा रही हैं उसके तहत क्या कुछ सफलता आपको मिल पाई है?
1: देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी सफलताएं फोर्सेस को मिली है, संयुक्त बलों को, जिसमें झारखंड जगुआर है, झारखंड पुलिस है, CRPF है, कोबरा की फोर्सेज हैं, SSB है। तो इसमें एक्चुअली अभी देखा जाए तो एकमात्र चाईबासा में ये समस्या बची है, जिसमें थोड़ी संख्या में जो उग्रवादी बचे हैं, और थोड़ा सा प्रभाव चतरा में और लातेहार के कुछ हिस्सों में इनका है। तो इसमें हम लोगों का जो लगातार सूचना आधारित जो ऑपरेशंस है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिसको कहते हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं, और पिछले 3 से 4 सालों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा सफलताएं इनके खिलाफ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। अभी 22 जनवरी 2026 को इसी साल भी लगभग 17 उग्रवादी एक मुठभेड़ में मारे गए थे चाईबासा में। तो जो हथियार उठा करके और हिंसा करने पर उतारू हैं, उनके खिलाफ में निश्चित तौर पर झारखंड पुलिस गंभीर कार्रवाई करेगी। और लेकिन अगर कोई हमारे उसमें आना चाहता है, मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है, तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। तो अभी इन्हीं 3 जिलों में मुख्य रूप से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और उनकी जो सप्लाई है, उनके जो खाने पीने के इंतजाम हैं, उनके जो गोलियां जहां से उनको पहुंचती हैं।

0: विस्फोटक जहाँ से पहुँचते हैं, उन सबको भी फोर्सेज ने पूरी तरह चोक कर रखा है। यही कारण है कि इनके बहुत सारे साथी सरेंडर भी किए हैं और टीम को छोड़ करके भी चले गए। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। जो लोग हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे उनके खिलाफ़ में कार्रवाई की जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, और अगर वो गोली चलाते हैं पुलिस के ऊपर तो उनको मुठभेड़ में उनकी जो है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और बाकी अगर कोई व्यक्ति सरेंडर के लिए आते हैं तो उसका हम लोग हाथ फैला करके उनका स्वागत करेंगे।
1: सर, सरकार की ओर से आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास नीति बनाई गई है और उसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। ऐसे में आप जो हमारे नक्सल भाई बहन अभी भी जंगलों में भटक रहे हैं, उन्हें आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आकाशवाणी रांची के माध्यम से उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, ये उनको मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आपके बहुत सारे साथियों ने पिछले कुछ वर्षों में सरेंडर किया है और अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, मुख्यधारा में लौटे हैं, उनको कोई जंगल में भटकने की अब ज़रूरत नहीं है और उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, एक सेफ़ लाइफ वो अपना व्यतीत कर रहे हैं। उसी तरीके से जो है आप लोग भी मुख्यधारा में वापस आएँ, आपका स्वागत है। आप जो है विभिन्न जिलों में जो थाना है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, एसपीज का नंबर भी लगातार हर जगह मौजूद है, तो जो कंसर्न्ड एसपी हैं चाईबासा, लातेहार या अन्य जिलों में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी मुख्यधारा में आइए और हमारे इस महान जो झारखंड राज्य है, सुंदर झारखंड राज्य है, उसको हम लोग विकास के रास्ते पर ले जाने में सहभागी बने।
1: सर, आज हम विकास की बातें करते हैं कि सड़कों के बारे में या स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, तो क्या लगता है कि नक्सल गतिविधियों के कारण इन विकास की योजनाएं भी प्रभावित होती हैं?
0: देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि माओवादी विचारधारा का यही कंट्राडिक्शन है
1: जी।
0: माओवादी बात हमेशा करते हैं कि गरीबों के शोषण के खिलाफ हम खड़े हुए हैं या हम शोषण के खिलाफ सशस्त्र क्रांति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है
1: जी।
0: हमेशा से माओवादियों ने विकास का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पूरी लेवी से संबंधित जो नीति है वो विकास योजनाओं के जो है शोषण पर ही आधारित है। जहाँ पर भी ब्रिज बन रहा है, कोल माइनिंग हो रही है, आयरन माइनिंग हो रही है या रोड्स बन रही हैं, उन्हीं से वो काम से पैसा वसूलते हैं और उस काम को नहीं होने देते हैं। तो मूलतः इनका पूरी विचारधारा और पूरा रवैया विकास विरोधी हमेशा से रहा है। इसके अलावा आप देखिए, रेलवे ट्रैक को उड़ाने का काम जो ये करते थे पहले, स्कूल बिल्डिंग्स को सैकड़ों की संख्या में इन्होंने उड़ाया है। कहीं पर भी नए ब्रिज का निर्माण या रोड का निर्माण हो उसको ये रोकते थे। क्यों? क्योंकि इनको ये पता था कि अगर विकास का काम होगा तो इनकी विचारधारा को कोई भी जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। लोग जागरूक अगर हो जाएंगे, लोगों के पास काम धंधा होगा, रोजगार होगा, तो माओवादी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मूलतः ये विचारधारा विकास विरोधी रही है। कई सालों तक इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम, ब्रिज बनाने का काम, रोड बनाने का काम, नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का काम ये नहीं करने दिया। तो ये और इसके अलावा जो स्कूल हैं, जो सामुदायिक भवन हैं, जो ग्रामीणों के हित के लिए बनाए गए थे, उनको ब्लास्ट करके उड़ाने की कई घटनाएं इन लोगों ने की हैं। तो मूलतः जो है विकास विरोधी वो काम किया है और ये एक्सपोज हो गए हैं। अब जो ग्रामीण है हमारे झारखंड की जनता, ये समझ गई, इसीलिए उनको अब माओवादियों का सपोर्ट, ग्रामीणों का मिलना बंद हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है माओवादी समस्या के खत्म होने का, क्योंकि अगर जनता उनके साथ होगी तो इस समस्या को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन लोग अब उनसे पूरी तरह विमुख हो गए हैं, लोग उनसे पूरी तरह अलग हो गए हैं और यही कारण है कि आज हम उनको खत्म कर पाए।
1: तो सर, कार्यक्रम के माध्यम से जो अभी भी आपको सुन रहे हैं वैसे भाई बहनों से आप अपनी ओर से एक एसटीएफ आईजी होने के नाते क्या अपील करेंगे?
0: मैं अपील करना चाहूँगा हमारे जो श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं उनसे कि आप इस बात को जरूर समझें कि किस तरीके से नक्सलवादी समस्या ने पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा समय से झारखंड के विकास को किस तरह से रोका है। अब हम सब उस दिशा में आ चुके हैं कि हम बहुत तेज़ी से राज्य प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छी योजनाएं राज्य सरकार की हैं जो चल रही हैं, उनका आप लाभ लें। और जो एसटीएफ के कैंप्स हैं चाईबासा के घने सारंडा के जंगलों में और अन्य जगहों पर भी, अन्य फोर्सेस के जो कैंप हैं उनमें भी हम लोगों ने सुविधाएँ दी हैं कि ग्रामीण विभिन्न सरकारी योजनाओं के फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, एप्लीकेशन वहाँ पर दे सकते हैं, वहाँ पर उनको उससे संबंधित जागरूकता के कार्यक्रम भी हम लोग चला रहे हैं। बेसिकली अब जो कैंप है इंटीरियर में जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए थे वो अब ग्रामीण विकास का एक केंद्र बन गए हैं। तो वहाँ पर आप जाएं, लोग आपका स्वागत करेंगे, हमारा सामुदायिक पुलिसिंग के प्रोग्राम लगातार चलते हैं, हर तरीके से हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। कहीं पर भी और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भी आप संपर्क करें जो जिला प्रशासन है और उससे। तो मैं यही वो करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए पूरी तरीके से नक्सलियों से दूर रहें।

0: को किसी प्रकार का सामान का सप्लाई या सपोर्ट इत्यादि ना करें, और ये समस्या खत्म हो रही है और राज्य तेजी से विकास में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सर, नक्सल गतिविधियों के कारण विकास के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बताया, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी अपील आपने हमारे भाई बहनों के लिए भी अपनी ओर से किया कि किस तरह से वो मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं और आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वासन नीति का लाभ ले सकते हैं। सर, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारी बातें हो रही थी आईजी स्पेशल टास्क फोर्स श्री अनूप बिरथरे सर से। बेहद महत्वपूर्ण बातचीत थी, और इस बातचीत के माध्यम से उन लोगों को समझने का अवसर मिलेगा कि किस तरह से हम समाज की मुख्यधारा से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में सुनवाती हूँ आपको एक गीत।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का आओ साथ चले कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को दें विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। भेंटकर्ता सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:33 हुए हैं। आइए आपको बताते हैं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। पांच बजकर 2 मिनट से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक साथियों का हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 6:02 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया और 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा उराव भाषा में। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 8 बजे का समय तो आपको मालूम ही है कि फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। और 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचार संध्या ये आप सुन सकेंगे 8:45 पर न्यूज़ एट 9:00 बजे। नौ बजकर 15 मिनट पर आप सुन सकेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। 10 बजे का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरी यादों का। 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। और 11 बजे आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

तो ये थी आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे सांझ सरगम, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम का शुरुआत हम इस फिल्म कृष्णा के इस प्यारे से गीत के साथ कर रहे हैं। आवाज़ अभिजीत भट्टाचार्य का, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने, शब्द रचना आनंद राज आनंद का।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म इश्क से, आवाज़ें उदित नारायण और विभा शर्मा की, शब्द रचना जावेद अख्तर का, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। मुझे यानी पूजा को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 MHz पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम क्रिकेटा। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। यह पुनर्गठित योजना 31 मार्च 2031 तक शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों में लागू रहेगी। इसमें विधि संजीवनी और AI संचालित न्याय सेतु, चैटबॉट जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 3 करोड़ लाभार्थियों तक कानूनी मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची जिले के इटकी स्थित सिमरा गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड की सिनपुर ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा जामिया इस्लामिया के मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आदिवासियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। उन्होंने रामगढ़ की स्थानीय समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिलाया। और हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5 और उम्मीद है आप सभी हमारे कार्यक्रम विवानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे।
1: तो दोस्तों, बता दें आपको कि आपके इंतज़ार की घड़ी अब हो चुकी है ख़त्म। तो आ जाइए अपने अपने रेडियो के करीब, क्योंकि आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर है आप सबके अपनी दोस्त मैं खुशी
0: और मैं शबनम,
1: और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं खूब सारी जानकारियां और साथ ही साथ प्यारे प्यारे गाने भी। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी को और इंतजार न करवाते हुए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और साझा करते हैं ढेरों सारी जानकारियां।
0: जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे यानी विश्व वर्षा वन दिवस। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्षा वन हमारी धरती की प्राकृतिक संपदा है और इनके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है।
1: सही कहा तुमने। तो सबसे पहले हम हमारे सुनने वाले साथियों को बताएंगे कि विश्व वर्षा वन दिवस है क्या और इसे मनाने का भी उद्देश्य क्या है।
0: बिल्कुल, तो खुशी देखो, विश्व वर्षा वन दिवस का उद्देश्य लोगों को वर्षा वन के महत्व के बारे में जागरूक करना और उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित करना। वर्षा वन ऐसे जंगल होते हैं जहां अधिक वर्षा होती है और जहां पेड़ पौधों, पक्षियों और जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां रहती हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, तो शबनम, वर्षा वन को धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
0: तुमने बिल्कुल सही कहा खुशी, कि वर्षा वन को धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है।
1: बात साफ है दोस्तों, वर्षा वन धरती के पर्यावरण को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये हवा को साफ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और जलवायु को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। ये जंगल बारिश के चक्र को बनाए रखने में भी काफी सहायक होते हैं।
0: सही कहा तुमने खुशी, हम अक्सर सुनते हैं कि वर्षा वन धरती के फेफड़े हैं, इसके पीछे क्या कारण है?
1: देखो शबनम, वर्षा वन वातावरण को शुद्ध करने में मदद करते हैं। जैसे इंसान के फेफड़े शरीर को स्वस्थ रखने में जरूरी हैं, वैसे ही वर्षा वन धरती के पर्यावरण को स्वस्थ रखने में काफी योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल खुशी, क्या वर्षा वन केवल पेड़ पौधों के लिए ही जरूरी है?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्षा वन हम इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कई समुदाय इन जंगलों से अपना जीवन चलाते हैं, उन्हें भोजन, लकड़ी, औषधीय पौधों और रहने के साधन मिलते हैं। कई दवाओं के निर्माण में भी जंगलों से मिलने वाले पौधों का उपयोग होता है। दोस्तों, आज वर्षा वनों के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, आइए अब जानते हैं।
0: तो दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो है जंगलों की कटाई, पेड़ों को काटकर खेती, उद्योग और शहरों का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी वर्षा वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
1: अब हम जानेंगे कि अगर वर्षा वन लगातार कम होते गए तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे पर्यावरण पर।
0: इसका असर पूरी पृथ्वी पे पड़ेगा। मौसम में बदलाव, गर्मी बढ़ना, बारिश के पैटर्न में परिवर्तन और कई जीव जंतुओं का खत्म होना जैसी समस्या बढ़ सकती है।
1: तो शबनम, हम अपने साथियों को बताना चाहेंगे कि वर्षा वन की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम।
0: सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे सकता है। जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पानी और बिजली की बचत करना, कागज का कम उपयोग करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना। हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाए।
1: दोस्तों, बातें तो हम और भी करेंगे, पर आगे लेते हैं प्यारा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर

0: नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें, नशा नहीं जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर, जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन।
1: क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई राजनीतिक दिशा का प्रतीक था।
0: सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे और उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या योगदान था।
1: सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें लोग प्यार से नेताजी कहते थे। वे युवाओं में जोश, साहस और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि भारत को जल्द से जल्द पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और क्यों की गई।
0: तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी।

0: उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्होंने एक नया संगठन बनाने का निर्णय बना लिया।
1: बिल्कुल, कांग्रेस से मतभेद का मुख्य कारण था सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन को और अधिक तेज और मजबूत बनाया जाए। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ तुरंत और कठोर कदम उठाने के पक्ष में थे। वे कांग्रेस के कई नेता अलग अलग रणनीति अपनाना चाहते थे। इन विचारों के अंतर के कारण स्थिति बदली।
0: सही कहा तुमने। तो फॉरवर्ड का मुख्य उद्देश्य था क्या आखिर? यह केवल राजनीतिक संगठन नहीं था दोस्तों, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा देने का प्रयास था। नेताजी चाहते थे कि इस देश के सभी वर्ग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करें।
1: तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनका मानना था कि यह समय भारत की आजादी के लिए संघर्ष तेज करने का अवसर है। बाद में उन्होंने विदेश जाकर आजाद हिंद फौज के माध्यम से भी स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया।
0: आइए दोस्तों, अब जानते हैं इतिहास में आज के दिन यानी 22 जून को क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो दोस्तों, 1633 में महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीले को सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का समर्थन करने पर चर्च के दबाव में अपने विचार वापस लेने पड़े थे। यही 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट ने वाटरलू की हार के बाद दूसरी बार फ्रांस के सम्राट पद से इस्तीफा दिया। यह यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है दोस्तों।
1: जी हाँ दोस्तों, 1940 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान फ्रांस ने जर्मनी के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1941 में इसी दिन जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला करते हुए ऑपरेशन बारबारोसा की शुरुआत की, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल दी।
0: आज ही के दिन यानी 22 जून 2001 को द फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे आगे चलकर एक लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी का भी रूप लिया। 1986 में फुटबॉल के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अपना चर्चित हैंड ऑफ गॉड गोल किया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। तो दोस्तों, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन आइए फिर से लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आइए दोस्तों, आप जानते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, यानी कि अमेजिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं दोस्तों, योग दिवस की तारीख 21 जून ही क्यों चुनी गई थी? इसलिए क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे लंबा दिन होता है और भारतीय परंपरा में इसका विशेष महत्व भी है।
1: जी हाँ दोस्तों, रिसर्चर्स मानते हैं कि जंगल में पेड़ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे भूमिगत कवक फंजाई के नेटवर्क के माध्यम से मिट्टी में कार्बन, पानी और पोषक तत्व साझा करते हैं। इसे वुड वाइड वेब भी कहा जाता है, जहाँ स्वस्थ पेड़ कमजोर पेड़ों की मदद करते हैं।
0: आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों ये जानकर कि एक बादल का वजन लगभग 550 टन या उससे भी अधिक हो सकता है।
1: जी हाँ दोस्तों, समुद्र केवल जल का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल, क्या आपको पता है दोस्तों, रात के आकाश में दिखाई देने वाले अधिकांश तारे वैसे नहीं हैं जैसे हम उन्हें इस क्षण देख रहे हैं। उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में वर्षों या सदियों समय लेता है। हम वास्तव में उनका अतीत देख रहे होते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार बेंगलुरु एशिया के AI आधारित स्टार्टअप क्लस्टर्स में दूसरे स्थान पर है। फिनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन 1,78,00,000 तक पहुंच चुका है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। भारत ने वार्या नामक स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
1: 21 जून को भारत सहित दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लाखों लोगों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया और स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन के लिए योग के महत्व को रेखांकित किया गया। नीट यूजी पुनरीक्ष और उससे जुड़े मामलों को लेकर चर्चा जारी की। परीक्षा की प्रदर्शित और प्रक्रिया को लेकर दायरे याचिका पर सुनवाई अब जुलाई में होगी।
0: इसके बाद है दोस्तों, भारत पहली बार FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल को जुलाई 2026 से जून 2027 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह FATF के इतिहास में पहली बार है जब भारत इस पद पर पहुंचा है।
1: जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत के निर्माण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में। एक ऐसे महान नेता के बारे में जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की नई मिसाल कायम की।
0: नेताजी का योगदान केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं था, उन्होंने भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और संगठित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। वे चाहते थे कि भारत विज्ञान, उद्योग, शिक्षा और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़े।
1: नेताजी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के बराबर की भागीदारी देना चाहते थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसमें महिलाओं ने भी सैनिक रूप में योगदान दिया।
0: नेताजी ने आजाद हिंद फौज INA का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। आजाद हिंद फौज ने भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया।
1: उनके विचार आज भी प्रेरणादायक है। वे मजबूत नेतृत्व, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच पर विश्वास करते हैं। वे चाहते हैं कि भारत शिक्षा में और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़े।
0: उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में इसी एनर्जी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त खुशी
1: और शबनम
0: को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: हेरोइन।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:30 में है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार श्रमिक साथियों, मैं आपकी दोस्त जया बस आ पहुंची हूं आपके कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करने और कई जानकारियां साझा करने। तो आइए आप भी जुड़ जाइए आज के कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल जुड़ जाएंगे और मैं भी जुड़ जाऊंगी। तो सभी श्रमिक साथियों को प्रीति का भी स्नेह भरा नमस्कार, अभिनंदन। जय, हमारे श्रमिक साथी यकीनन हमसे तो जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार खत्म करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
0: प्रीति, यकीनन हमारे सभी श्रमिक साथी मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे।
1: बिल्कुल, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हंस तो होना ही चाहिए।
0: और
1: बिल्कुल सही कहा जया। और अगर हमारे श्रमिक साथी हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें, क्योंकि योग हमें तनाव मुक्त, ऊर्जावान और बीमारियों से दूर एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है।
0: बहुत अच्छी बात कही प्रीति। प्रीति, योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाकर दीर्घायु और निरोगी जीवन का प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती है। नियमित योग करने से रक्त संचार बेहतर होता है, जो कि हम सभी को पता है।
1: साथ ही साथियों, योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव कम होता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियां दूर रहती हैं।
0: दीर्घायु और निरोगी जीवन के लिए आप कुछ प्रमुख योग अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बढ़ाते हैं और फेफड़ों को भी मजबूत करते हैं। प्रीति,
1: साथ ही साथियों, योगासन, ताड़ासन, वृक्षासन और त्रिकोणासन शरीर के संतुलन और जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने में बेहद मददगार हैं।
0: और अगर मेडिटेशन की बात करें ना प्रीति, तो नियमित ध्यान मानसिक शांति देता है और बढ़ती हुई उम्र में जो हमारी मेमोरी पावर होती है ना, याददाश्त शक्ति को भी मजबूत करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप जब योग करते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिमाग आपका शांत रहता है, मन एकाग्र रहता है और ये सारी चीजें जो है वो बहुत क्या बोलते हैं कि वो मैटर करती हैं, मतलब वो काम करती हैं कि किस तरह से आपका दिमाग जो है एकाग्र हो और याददाश्त आपकी बनी रहे। श्रमिक साथियों, आप सभी अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। योग के नियमित अभ्यास से हम शरीर और मन को लंबे समय तक स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। अच्छा जय, कई हमारे श्रमिक साथियों को ऐसा लगता होगा कि हम तो दिन भर मेहनत करते हैं, है ना, कई लोग ईंट जो उठाते हैं या जो बिल्डिंग वगैरह में वर्क करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं तो हमें योग करें।
0: ये सभी लोग,
1: लेकिन वो एक अलग चीज है।
0: ये बिल्कुल ना सोचे कि हम अगर दिन भर मेहनत करते हैं तो योग ना करें, तो ये बिल्कुल आपकी जो सोच है ना बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि अगर नियमित आप योगाभ्यास करते हैं ना तो साथ साथ आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही रहेगा और बहुत लंबे समय तक आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीति, जैसे अगर हम योग करते हैं ना तो उसके साथ साथ हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और हमारी जो सोच है ना वो हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और सुखमय जीवन जी सकते हैं, क्योंकि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलन करने वाली प्राकृतिक चिकित्सा है। ये सबसे बड़ी बात है प्रीति।
1: बिल्कुल सही कहा, योग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बीमारी के लक्षण नहीं बल्कि जड़ पर काम करता है। नियमित योग अभ्यास से न केवल रोग नियंत्रित होते हैं बल्कि भविष्य में बीमारियों से भी बचाव होता है, इसलिए योग करें, निरोग रहें। और फिलहाल अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं योग गुरु से, जिनका नाम है रामायण दुबे।
0: और इनसे तो बातचीत जो कर रही है हमारी दोस्त प्रीति, इसलिए प्रीति चाहिए कि जल्दी से जल्दी आपकी मुलाकात करवा दें योग गुरु रामायण दुबे से, जो आपको बताएंगे कि योग करने से हमें क्या क्या फायदा, यानी योग करें और निरोग रहें। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
2: दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। तो योग क्या है और हम इसे कैसे करें, किस तरह से इसके साथ जुड़ें, इन सभी बातों की जानकारी हमें देंगे योग गुरु श्री रामायण दुबे। कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि योग है क्या।
3: देखें, योग एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, एक ऐसी दिनचर्या है जो हमारे जीवन में नियमित होना चाहिए। योग का उद्देश्य मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ मनुष्य को स्वास्थ्य की प्राप्ति बनी रहे और रोगों से दूरी बनी रहे, यही योग का उद्देश्य है। योग हमारे जीवन को अस्वस्थ से स्वस्थ की ओर ले जाता है, क्योंकि जब ही हम योग शुरू करते हैं, योग में कुछ क्रियाएं हैं उनको हम शुरू करते हैं, तो ये एक तरह का उपापचय क्रिया है जो कि हमारे शरीर में गड़बड़ हो जाने से हमारा शरीर बीमार वगैरह होता है। तो इसके योग को करने से ये उपापचय की क्रिया हमारी ठीक हो जाती है, तो वैसे ही हम स्वतः ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज कि योग हम कैसे करें, योग को कब करें और योग को क्यों करें। तो क्यों का जवाब तो करीब करीब मिला, लेकिन कैसे करें तो ये आपके बल के ऊपर है, ताकत के ऊपर है। योग आपके स्वास्थ्य के पर डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप नॉर्मल आधा घंटा डेली योग कर सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो केवल अनुलोम विलोम भस्त्रिका, थोड़ा बहुत कपालभाति से ही काम चलाया जा सकता है।
2: जी बिल्कुल, ये तो आपने कहा कि किस तरह से हम योग कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि योग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पाते, कहीं ना कहीं सही जानकारी नहीं होती है कि योग जो है किस समय करें और कितना करें, तो इसके बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप बता दें।
3: देखिए, योग का समय है सुबह सबसे अच्छा, अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को, दो ही समय है योग का। कुछ प्राणायाम ऐसे भी हैं जिनको हम खाली पेट या खाना खाने के बाद भी थोड़ा बहुत उसे हम कर, जैसे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम नाक के श्वासों प्रश्वास की क्रिया है, तो इसको हम खाना खाने के बाद भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का कर सकते हैं। तो योग को सुबह में करें, हो सके तो 3:30-4 बजे और सुबह 7 बजे तक के बीच में करें सबसे अच्छा है। सबसे पहले तो आप भस्त्रिका करेंगे, लंबा लंबा श्वास लेना छोड़ना, मुंह बंद आंख बंद, ध्यान ईश्वर पे, माता पिता गुरु, और सीधे बैठ करके आप खूब लंबा श्वास लीजिए। इससे आपका एनीमिया, जैसे रक्तालपता होता है, वो ठीक होने लगता है। अगर दमा का रोग है वो ठीक होने लगता है, चमड़े का रोग है, स्किन डिजीज, वो ठीक होने लगता है, पेट तो ठीक ही हो जाएगा। तो सबसे पहले भस्त्रिका, लंबा लंबा श्वास, प्राणायाम, प्राण का आयाम यानी प्राण यानी हवा, तो हवा को अंदर ले जाना और बाहर फेंकने की क्रिया ही प्राणायाम है। तो सबसे पहले हम इसलिए बताते हैं कि आप भस्त्रिका कर लें, क्योंकि जो आगे हम योग करने वाले हैं उसमें आपकी श्वास नलिका खुली होनी चाहिए। तो चूंकि हम रात भर सोए रहते हैं तो हमारी नलियां भी अंदर ही सिकुड़ी रहती हैं, तो अपने श्वास को हम जब गहरे श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो नली खुल जाती है, जिससे आगे के योग करने में हमें सहायता मिलती है। योग करने के कम 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद ही भोजन करें। योग बिना खाए हुए या बहुत ज़्यादा खाए हुए, भरपेट खाकर और बिना खाली पेट भी योग नहीं करना चाहिए। योग करने का अर्थ है कि आप फास्टिंग में तो दिन भर नहीं है, पहले दिन फास्टिंग में थे और दूसरे दिन आज योग कर रहे हैं, ये गलत है। योग करने के लिए आपके शरीर में एनर्जी मजबूत हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर योग किया जाए तो 15 मिनट का भी योग आपके जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है।
2: ये तो आपने बताया कि किस तरह की बीमारियों में कैसे प्राणायाम करें और योग करें। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जो कि उठकर बैठ नहीं सकते, तो ऐसे लोग अगर प्राणायाम करना चाहें या योग करना चाहें तो उनके लिए क्या विधि?
3: जैसे गंभीर रोगी में किडनी के पेशेंट होते हैं, या फिर पैरालिसिस का पेशेंट होते हैं, या फिर मेंटल प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम में अगर योग करें तो पेशेंट के साथ एक अटेंडेंस का होना जरूरी है। जैसे पेशेंट बैठ नहीं पाएगा, सोए सोए ही रहेगा ना पैरालिसिस का पेशेंट, तो वो तो श्वास तो ले रहा है ना, तो आपको अनुलोम विलोम एक अटेंडेंस से उसका अनुलोम विलोम कराना है। जैसे उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वो बाएं ना, सबसे पहले दाहिना नाक को बंद करें उनके और बोले कि बायां नाक से आप श्वास खींचिए। जब ही वो श्वास अंदर लेते हैं तो ही बायां को बंद कर दिए, दाहिना से वो बोलेंगे निकालिए, और फिर निकाल के बोलेंगे कि उसी से आप फिर खींचिए। तो जब ही खींचते हैं तो मतलब दूसरा आदमी उनका नाक को बैलेंस बनाए रहता है, उनका अनुलोम विलोम होने लगता है। और इस तरह से 21 दिन से लेकर के आपका करीब करीब 1-2 महीने होते होते करीब करीब देखा गया है कि पैरालिसिस का पेशेंट भी उठ के चलने लगता है, इतनी तेजी से काम करता है। तो ये बीपी लो होने की शिकायत में हमारा लंबा लंबा श्वास लेना, भस्त्रिका और ये अनुलोम विलोम बहुत ही कारगर देखा गया है। ये तो मिनटों में आपको फायदा देता है। अतः हम सभी भाई बहनों और सभी लोगों से ये अनुरोध है हमारा रहेगा कि आप कम से कम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट योग करें।
2: ये तो आपने बताया कि किस तरह से गंभीर रोगी जो हैं वो योग को कर सकते हैं, लेकिन आज का जो समय है हम सभी बहुत तेजी से भाग रहे हैं, सबके पास समय नहीं होता है, और जहाँ तक योग का सवाल है तो ऐसा लगता है कि कम से कम 1 घंटा योग में देना होगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि कम से कम समय में हम योग भी कर लें, प्राणायाम भी करें और शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारा समय भी कम लगे?
3: आज के भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे यहाँ भी पेशेंट आते हैं तो वो उनका एक ही चीज रहता है कि सर इतना ज्यादा हम बिजी हैं कि हमसे योग नहीं हो पाएगा 1/2 घंटा 1 घंटा। तो हम उनको बताते हैं कि नहीं भैया, कहाँ आपको बोला गया है कि योग आप 1 घंटा करो 2 घंटा करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है सुबह सुबह अपना दिनचर्या पहले फिट करो, पहले तो आप योग के लिए ये ध्यान दीजिए कि हमको सुबह में हमारा कितना समय हमारा हम यूज कर पाते हैं जल्दी से जल्दी। और घबराने की बात नहीं है, योग में कोई उठा पटक, कोई बहुत ज्यादा मेहनत, ऐसा कुछ नहीं है। योग एक आंतरिक श्वासोप्रश्वास की क्रिया है। योग क्या है, फिजिकल कम है और मेंटल ज्यादा है। जैसे योग में हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेट होना सीखते हैं। कंसंट्रेट होना ही आज के जीवन में डिप्रेशन से मुक्ति पाना है। आपको सुबह में योग के नाम पर केवल आपको 15 मिनट समय तो निकाल लेना है, 10 से 15 मिनट में आपका सब योग हो जाएगा। वो पूरे योग को आप न करें, आप नहीं करते हैं तो केवल 3 योग आप करें अपने जीवन में। लंबा लंबा श्वास यानी भ्रस्तिका, दूसरा कपालभाती, तीसरा अनुलोम विलोम। कपालभाती में 1 सेकंड में 1 बार श्वास बाहर पेट अंदर, वो वाली क्रिया 5 मिनट। और तीसरा अनुलोम विलोम, बाएं नाक से श्वास लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बायां से छोड़ा, चलता रहे, यही योग है। और मैं सबसे यही कहूंगा कि आप योग को कभी भी बर्डन

0: कितने समय तक किया जाना चाहिए, इसके लिए जानकारी कहाँ से मिलेगी?
1: जी देखिए, ये जानकारी आपको योग शिक्षक जो आपके अगल बगल योग की क्लास चलाते हैं, कक्षा चलाते हैं, पहले तो आप उनसे जानकारी ले लेंगे। अगर उससे भी नहीं आपको जानकारी मिलता है तो तमाम इंटरनेट पर ऑप्शन है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और योग को आप, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं तो कितने दिन से योग कर रहे हैं, 2 साल से 3, और मैं बोलता हूँ कि आप योग करके दिखाओ तो वो गलत योग करते हैं। तो गुरु का ज्ञान लेना जरूरी है, बिन गुरु का कोई काम होने वाला नहीं है। तो आप गुरु से उसके लिए पहले थ्योरिकल जानकारी लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल जानकारी लीजिए कि किसको क्या करना है, कितना डोज। जैसे सपोज दैट हमें ही बीमारी हो गए और हमको लगे कि हम योग करके ठीक हो जाए, तो हमको कितना योग करना है, कौन सा योग करना है, ये दो चीजें हैं वो योग शिक्षक बताएंगे जो आपके अगल बगल में है। या फिर नेट पर उसको आप सर्च कर लें, अपने बीमारी का नाम लिखें और इसमें कौन सा हमको योग करना है उसको आप सर्च करके देख सकते हैं।
0: ये तो आपने सही कहा कि योग कहीं से भी पहले एक बार सीख ले उसके बाद शुरू करें, तो ये ज्यादा कारगर होगा लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हमें भी लगता है कि हमारे श्रोता जो हैं, जो भी सुन रहे होंगे, इसका फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। तो आप हमसे मिले, हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: प्रीति, बहुत अच्छी जानकारी रामायण दुबे ने दी है कि योग करके हम किस तरह से निरोग रख सकते हैं। और योग को ऐसा नहीं समझते कि आपको बहुत अधिक समय देने की ज़रूरत है, बस थोड़ा समय, आप 15 मिनट भी समय देते हैं और अगर सही टाइम पे अगर योग करते हैं तो आप सचमुच निरोग रहेंगे।
3: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि मन को शांति देना, ये बहुत जरूरी है। जब आप योग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो एकाग्र होता है, शांत होता है। वैसे मन को शांति और भी कई चीजों से मिलती है।
2: मैं इशारा समझ रही हूँ, तुम चाह रही हो कि हम अपने श्रमिक साथियों को एक खूबसूरत सा गीत सुना दें ताकि उनको और भी सुकून मिल जाए।
3: सुकून मिल जाए।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सुन रहे कार्यक्रम श्रमिक लोग जय और
3: प्रीति के साथ।
2: तो प्रीति, अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते और कुछ और जानकारी हम अपने श्रमिक साथियों से साझा कर लेते हैं। श्रोता मित्रों, हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के साथ और भी महान बन जाते हैं, और अमरीश पुरी जी उन्हीं महान कलाकारों में से एक है। प्रीति,
3: बिल्कुल नाम लेने की जरूरत ही नहीं, लोग वैसे ही अगर आप मोगैम्बो भी बोलती तो बेस्ट बन जाते। 22 जून यानी आज के दिन सन 1932 को जन्मे अमरीश पुरी जी ने अपने शानदार अभिनय, दमदार आवाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया। उन्होंने सिर्फ खलनायक का किरदार नहीं निभाया बल्कि उसे एक नई पहचान दी, चाहे मोगैम्बो हो या ठाकुर दुर्जन सिंह। कोई भी हो, कोई भी किरदार हो, हर भूमिका में उन्होंने अपनी जो अमिट छाप है वो छोड़ दी। अच्छा, जो एक कहानी जो है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये अमरीश पुरी एक बार एक पार्टी में चले गए। अब वहां एक महिला ने जब इनको देखा ना, तो वो बिल्कुल चीखने लगी, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, मैं इस आदमी को सामने देख नहीं सकती। मतलब बिल्कुल विलेन वाला एक रूप। उस दिन उनको लगा कि नहीं, ये गलत है, मुझे थोड़ा कैरेक्टर रोल भी करना चाहिए ताकि लोग मुझे अच्छा समझे, क्योंकि वो तो है एक्टर पर कई लोग उसे बिल्कुल रियल मान लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो किरदार होता है वो करना शुरू किया।
2: बिल्कुल सही कह रही हो प्रीति। और साथियों, अगर उनकी अदाकारी के बारे में बात करें तो उनकी जो अदाकारी थी ना प्रीति, इतनी जीवंत थी कि पर्दे पर आते ही दर्शकों की निगाहें उन्हीं पर टिक जाती थी। जैसा कि तुमने अभी बताया कि उनका ऐसा कैरेक्टर था, वे केवल बेहतरीन विलेन ही नहीं बल्कि एक शानदार चरित्र अभिनेता भी थे। जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, विरासत, घातक, करण अर्जुन, नायक जैसे अनेक फिल्मों में उनके अभिनय ने कहानी को नई ऊंचाइयां दी है। आज भी उनका जो मशहूर एक डायलॉग है ना कि मोगैम्बो खुश हुआ, सुनती उनके चेहरे और अंदाज की याद ताजा हो जाती है।
3: बचपन में हमने ये फिल्म देखी थी, लेकिन मुझे अभी जैसे आपने कहा ना, अभी भी याद है कि किस तरह से उन्होंने कहा था, और बहुत मजा आता था उनको देख कर। कहीं ना कहीं लगता ही नहीं था कि अभिनय हो रहा है, बिल्कुल सच्चाई दिखती थी उनके अंदर। अमरीश पुरी ने हमें सिखाया कि अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं बल्कि किरदार को जीना होता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। नमन उस महान कलाकार को जिसने भारतीय सिनेमा को अनगिनत यादगार पल दिए,
2: और उनकी यादें और किरदार हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। और आगे अब क्या करना है कि हम अपने साथियों के एक और गीत सुना दें।
3: बिल्कुल बिल्कुल, गीत तो सुनना ही होगा।

0: और अब आइए दोस्तों थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। दोस्तों ये योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल है, जिसके तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क और व्यापक प्रसव पूर्व जाँच प्रदान की जाती है।
1: हाँ प्रीति, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान उच्च जोखिम वाली महिलाओं की जल्द पहचान करना और उसकी सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना।
0: बिल्कुल, सभी गर्भवती महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। हर महीने की 9 तारीख को जांच के लिए जाएं और अपने साथ माँ और शिशु सुरक्षा कार्ड और आधार कार्ड जरूर ले जाएं। और एक बात याद रखें दोस्तों कि अगर 9 तारीख को संडे पड़ता है या कोई छुट्टी का दिन हो तो आप 10 तारीख को जा सकते हैं,
1: तो आप इसका लाभ जरूर लें। और साथ ही साथ प्रीति, हमारी जो भी श्रमिक साथी अभी तक इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जरूर लें। और अब चलिए दो बातें बचत पर भी हम कर लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा जया, बचत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बचत आगे चलकर बड़ी पूंजी बन जाती है जो भविष्य में काम आती है। और मुझे लग रहा है कि हमारा भी ये जो छोटा छोटा समय का अंतराल है वो अब खत्म होने जा रहा है, तो अपनी दोस्त प्रीति
1: और जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारे शुरू की घड़ी में 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को अगली तिथि तक स्पष्ट निर्देश और आवश्यक जानकारी के साथ अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने धनबाद स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक मोड़ मुख्य शाखा में हुए करीब 1.25 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में 2 दशक से फरार चल रहे 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने देशव्यापी अभियान चलाकर आरोपी ब्रजभूषण प्रसाद को महाराष्ट्र के अहमदनगर और करतार सिंह को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दबोचा है। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित निवारणपुर में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक विशेष टीम ने आज घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। एटीएस के अधिकारियों और जवानों ने मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवघर और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस की सौगात मिली है। स्थानीय सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी शिवधाम से इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इसमें अवैध खनन और खनिज परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले की सड़क सुरक्षा और मंडल कारा सुरक्षा को मजबूत करने की भी विस्तृत समीक्षा की गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: पेड़ लगाओ, धरती के हरियाली बनाओ।
1: खेती बारी सुन भैया, सब भाई बहन मन के युवराज बटले जोहार, और हमार संगे सुकेश दादा के भी जोहार।
0: जोहार युवराज भाई, और संगे संगे सुनवैया खेती बाड़ी करवैया सब भाई बहन मन के जोहार। तो का हाल समाचार है?
1: देखो हाल चाल तो एकदम नगदे है दादा, लेकिन का कह कि आज के मौसम बदलल से थोड़ा सा जीव सवांग तो गड़बड़ाते जाते।
0: बात तो नगद का थी कि देखो बरखा भी होते और तेज धूप भी लगते,
1: हाँ,
0: और तुरते तुरते मौसम में भी बदलाव आते रहते।
1: अब देखो कहे कि जी सवांग बेस नहीं रहले नहीं कि मनो ठीक नहीं बुझायला,
0: बात तो नगद
1: मनो फरिहर नहीं बुझायला। तो से ले आज के समय में जीव सवांग हुए के बहुत बेस हुए के बहुत जरूरी है। और संगे संगे क्या है दादा कि देखो सकारात्मक सोच भी, अगर हम लोग जीव सवांग बेस रही तो हमरे में सकारात्मक सोच भी आई।
0: देखो ये बात तो कहा थी कि सकारात्मक सोच तभी हो सकेला जब मन में और तन में दुयो बढ़िया से रही, और स्वस्थ जीवन शैली ही रोरे के सकारात्मक सोच की ओर आगे ले जा सके, जीवन के भी सकारात्मक पक्ष की ओर ले जाएगा, है नहीं? तो हर आदमी के चाहिए कि जीवन में सकारात्मक जीवन शैली के ही अपनाए के चाहिए और उकरे संगे चले के चाहिए।
1: और संगे संगे क्या है कि देखो सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि अगर हमारे के दृष्टिकोण सही नहीं रही, हमेशा हमारे नकारात्मक सोच की ओर जाब, नकारात्मक काम करब, तो बेस तो नहीं हो सकेला दादा।
0: कहे का मतलब ये है कि देखो सकारात्मक जीवन शैली एक हिसाब से रोरे कर जीवन कर जे स्वस्थ जीवन कर एक अंग है। कहे इकर संगे चल के रोरे आपन के चाहे जितना भी हैं सब कर जीवन में स्वस्थ कर प्रचार प्रसार भी होई, लेकिन इकर ले अपना एक होई कि सकारात्मक सोच वाला आदमी मन से रह कर।
1: एकदम सबसे नगद बात कर दी दादा रोरे कि देखो अगर हमने सकारात्मक सोच वाला आदमी मन से रहब तो उकर से बेस बेस बात तो सीखब। और क्या है कि जे भी हमारे में नकारात्मकता है, चाहे जे भी हमारे में जे बुरा चीज के हमारे सोचा थी, वो तो कम से कम दूर हो जाए।
0: दूर इसलिए दूर भी हो का है कि सकारात्मक सोच वाला आदमी मन से बैठ ले बात विचार कर ले, का है वो जीवन में एक दूसरे से प्रेरित होला। कहे का मतलब है कि दुयो कर बीच में अगर यदि सकारात्मक सोच वाला आदमी कर बीच में है तो अन्योनाश्रय संबंध भी होला, ताकि एक दूसरे के उमन प्रेरित कर सके ना और प्रेरित हो भी सके ना।
1: तो देखो क्या है दादा कि सकारात्मक जीवन शैली अपना एक से सबसे पहले हमरे का जरूरी है कि बेस खान पान, हमरे खान पान एकदम में ध्यान ही देवीला। कहे कि देखो हमरे का जीव सवांग बेस रही, तो जीव सवांग किसे बेस रही, हमरे का खान पान से। अगर हमरे खान पान बेस तरी करत ही तो एकदम अपने आप हमरे में सकारात्मकता आवी, जैसे बढ़िया बढ़िया ताज़ा फल खाती, ताज़ा सब्जी खाती, समय सिरे व्यायाम करती, समय सिरे नींद लेवती, तो ये सब सब चीज जे है के सकारात्मकता कर पहचान है के।
0: देखो सकारात्मक सोच और जीवन शैली में बहुत महत्वपूर्ण है कि रोरे के शारीरिक रूप से सुदृढ़ होक चाहिए, स्वस्थ रहक चाहिए। इकर ले का है कि देखो पर्याप्त रूप में नींद भी लेक चाहिए, संगे संगे का है कि सुबह शाम कम से कम चहल कदमी भी होना चाहिए ताकि शरीर के भी स्वस्थ मिली। और ये भी बात है कि कम से कम हर आदमी के 20 से 15 मिनट तक कम से कम व्यायाम भी करना चाहिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, है नहीं?
1: सही कह ले दादा। देखो जे आदमी मना के मान के चलो व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत आदमी जिम जाते हैं, जिम नहीं जाते हैं तो कम से कम आधा से एक घंटा कम से कम आदमी अगर डेली बिहाने बिहान रोज दिन घूरबे फिरबे भी तो ताजा हवा मिली उकर से भी हमारे

0: में सकारात्मकता आवेला और मन भी हमारे कर बहुत फरहर और चहल पहल मन में रहेला।
1: बिल्कुल नगद बात कर ली को तो हर आदमी के जीवन शैली के में बदलाव लाने चाहिए और उसन बदलाव करूँ कि समाज के लिए भी घर परिवार के लिए भी सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ सकेला,
0: एकदम
1: है
0: नगद बात
1: नहीं?
0: कहले दादा। और हमारे के जे भी सुनवाई है भाई बहन मन सुनत है तो उ मन के हमारे यह संदेश देवे के चाहब कि हमेशा सकारात्मकता सोच राखू और हमेशा अच्छा अच्छा आदमी मन से रहू, हमेशा बढ़िया खाना पीना खाओ और पर्याप्त नींद के ले।
1: चलो तो बात तो निश्चित रही और कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाए है तो हमरे मन एक नागपुरी लोकगीत सुनब देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल गीत।

0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा और अब तक के अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। आप अपने जीवन और कार्यों की इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं?
2: मैं रेलवे नौकरी करता था। उस टाइम में गार्ड का नौकरी में दो स्टेज है। एक स्टेज में गुड्स ट्रेन वर्किंग करने पड़ता है, तो गुड्स ट्रेन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जिम्मेदारी ज्यादा है और एकाकी का काम है, अकेला ही रहता है। वो झड़ आदि तूफान जो भी है उसको सामना करने पड़ता है, और आधारी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी का तो भी देखभाल करने होता था।
1: अशोक जी, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपकी प्रमुख प्रेरणा क्या रही? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
2: प्रेरणा मिला काम करते प्रगति का साथ रहते हुए। अंधारी डिब्बा में जब अकेलापन था उस टाइम में चिंतन भावना, और प्रगति में क्या देखा, बाहर जगत में क्या है क्या नहीं है, वो हम अंदर में ले लेता, माने बाहर दर्शन अंतर दर्शन में आ जाता था। उसके बाद जब हमारा नौकरी खत्म हो जाता है, ड्यूटी शेष शेष टाइम में तो रेस्ट मिलता है, घर चला आता है, कभी रानी हूं में चला जाता है। उसके बाद जब घर फिकता वही जो भावना मेरा कल्पना जो देखा हम जो फेस किया वही चीज हम आके पेन पेपर में लिख, जो मेरा चिंतन क्या है, क्या हम बाहर जगत में टोबिक में देखा और क्या होना चाहिए। मेरा भी वैसा ही है, एक संसार में फूल खिलती है और फूल भी झड़ जाता है और उसको कोई कीमत नहीं रहता है। जब तक फूल बगीचा में रहता है तब तक उसको कीमत है। मेरा आदमी का जीवन मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, जब तक आपको काम रहेगा तब तक कीमत रहेगा, और काम का अभाव में और कोई इसको कीमत नहीं है। तो एक तो जगह में कीमत है, जहाँ आप ऐसा काम करना है जो काम समाज का हर आदमी को काम में आएगा। कुछ चेतना समाज चेतना के लिए हम सोचा

0: समाज जागरण के लिए आदमी के लिए हम सोचा, क्या हम देखा आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज एक अनुप्रेरणा हम प्रवृत्ति से मिला। उसका बाद मालगाड़ी का बाद जब पैसेंजर में प्रमोशन हुआ तो आदमी का साथ मेरा काम हुआ। आदमी जब जाता है काहे के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाता है। दिन में रात में आदमी का साथ हम था और उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान का हम किताब में लिखा है जो क्या आदमी परिश्रम करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अगेंस्ट द नेचर वी हैव टू परफॉर्म आवर जॉब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हम देखा और उसी चीज का हम किताब में लिखा है।
1: अशोक जी, आपको इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है बल्कि आपके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी है। तो इस सम्मान के लिए चुने जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, कोई अवार्ड मिलने से एक तो इंस्पिरेशन मिलता है और हम जो हमारा काम हमारा रास्ता सही था और मेरा काम भी सफल हुआ जिससे कारण से हमको मिला। 30 साल तक हम ये साधना किया, लेखा पढ़ा के साथ जुड़ा हुआ है और वो काम करते चले। हम कभी नहीं सोचा कर्मण्येवाधिक रस्ते में पुरुष पदाचरण, मैंने कभी नहीं सोचा जो हमारा एक पुरस्कार मिलेगा। हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया तो उसमें और चेतना हमारा इंस्पिरेशन वाला समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो हम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार को, उसके बाद मोदी जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो सही कर्मों का फल मिला है मेरा समाज को मिला। हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक अनुप्रेरणाएं जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षा अनुरोगी मानुष, उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है उसको साथ मेरा विजय हम बांटने चाहता है।
1: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?
0: नेक्स्ट जेनरेशन, देखिए, कोई काम दृष्टि ठीक रख के प्रोचेस्टा जारी रखना है अविराम, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हमारा काम में बाधा आ सकता है, रुकावट आ सकता है, लेकिन जब हमारा प्रोचेस्टा रहेगा उसका ऊपर डिवोशन रहेगा काम का ऊपर, तब कामयाब हो जाएगा, यही मेरा सोच है। और यही मैंने सोच हम संसार को, मानुष आदमी को, समाज को देने चाहता है जे शिक्षा चेतना आदमी को होता है तब उसको सही दिशा सही काम में वो काम करेगा। देखिए, मुंह का तो जैसा वर्षा का पानी नदी में बह जाता है तो बह ही जाता है, तो समाज में पैसा बहुत ही आदमी आता है, भीड़ करता है, अपना काम हो जाता है, चला जाता है, लेकिन वास्तविक में जो है सो एक लय है। सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से विलीन हो जाता है, यही मेरा सिद्धांत है। तो इसमें कोई आवेश नहीं है, यही हमारा दीरो सिद्धांत है।
1: अशोक जी, आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया, और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?
0: शिक्षा तो चेतना देता ही है। देखिए, आज का जो समाज व्यवस्था है, आज का जो शिक्षा है, हमारा पीरियड में ऐसा नहीं था, इतना फैसिलिटी भी नहीं था और इतना मोबाइल फोन भी नहीं था और टेलीफोन भी बहुत आदमी के पास नहीं था। बड़ा बड़ा आदमी जो था उसके पास टेलीफोन का मुझे व्यवस्था था, और जो सामान्य आदमी था उसके लिए एक ही काम था, जो हमको कुछ करना है तो क्या करेगा, हमको लेखा पढ़ा सीख के समाज को परिवार को बचाना है, रोजगार करना है, और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। तो पहले अपना विकास करो, उसके बाद दूसरा विकास करने जाओ, चिंता करो, तब विकास होगा। तो वो सोच हम लोग मेरे को मिला इनिशियल स्टेज से इस चीज हम अपना से सोचा। उस टाइम में कोई विनोदन का व्यवस्था नहीं था और शिक्षा चेतना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पोस्ट कार्ड का व्यवहार था, एक तो जोगाजोग व्यवस्था भी अच्छा नहीं था, पोस्ट कार्ड में सब कुछ वो तो टाइमिंग फैक्टर था, जिससे कारण से एक ही चीज आनंद मिलता था, किताब मिला, किताब पढ़ने से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है, शिक्षा भी उसमें ही जाता है, यही मेरा विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको संयोग रहेगा।
1: अशोक जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, श्री अशोक कुमार हल्दर से विशेष बातचीत हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी।
4: तो युवराज भाई, चलो कार्यक्रम जो हमरे मन चलत रहे से के आगे बढ़ाई ला और हमरे मन जानकारी करब। देखो एखन जे किसान भाई बहन मन जे खेतीबाड़ी करत हैं और कोई कोई तो लगाए दे हैं, जैसे कंद फसल वाला खेतीबाड़ी कर बारे में, तो कंद फसल कर खेती जो तकनीकी आधारित है एक वैज्ञानिक खेती कैसन करल जाएगा एक बारे में हमरे मन विस्तृत जानकारी करब शुभ्रांशु सेन गुप्ता से और एक से बातचीत करी हैं कृष्ण जीवन पौराणिक। चलो जानकारी करिए।
5: चलो तो जलवायु एवं संस्कृति कंद फसलों जैसे ओल, कच्चू जिसको हम लोग पेचकी कहते हैं, साखिन, आड़ू, सुथनी, शकरकंद, सेमल कंद एवं मिश्री कंद के लिए अनुकूल और खरीफ एवं गर्मी के मौसम में लाभप्रद खेती की जा सकती है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट एवं पोषण के अन्य अवयवों से भरपूर फसलें हैं। विकास के आरंभ से ये फसलें हमारे साथ हैं और वर्तमान में मौसम परिवर्तन तथा विषम परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ये फसलें काफ़ी अनुकूल पाई गई हैं। सेमल कंद दक्षिण भारत में काफ़ी लोकप्रिय है, सब्जी के अलावा जानवरों को खिलाया भी जाता है। इसी सेमल कंद से साबूदाना बनाया जाता है। मिश्री कंद के कंद उजले और बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं और सलाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओल, कच्चू, साखिन, आड़ू, सुथनी, शकरकंद की खेती लगभग सभी किसान छोटे या व्यावसायिक स्तर पर करते हैं। इन सभी फसलों से विभिन्न प्रकार के मूल्य संवर्धित जैसे अचार, पापड़, चिप्स, जैम एवं पाउडर इत्यादि बनाकर अच्छे लाभ का उपार्जन किया जा सकता है। तो इसी कंद फसलों के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शुभ्रांशु सेन गुप्ता, वैज्ञानिक उद्यान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है।
6: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कंद फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए।
6: जी हाँ, इसके लिए ऐसा है कि देसी हल या ट्रैक्टर से 3 से 4 बार गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें।
5: जी,
6: शकरकंद और मिश्रीकंद को जून जुलाई माह में लगाएं, बाकी को सिंचाई की सुविधा रहने पर मार्च अप्रैल महीने में ही लगा दें, क्योंकि पहले लगाने से उत्पादन में अच्छी वृद्धि होती है। सिंचाई की सुविधा नहीं रहने पर मई जून महीने में बुआई करें। ओल को जो है 40 सेंटीमीटर x 40 सेंटीमीटर के गड्ढे में लगाएं। आड़ू और सेमल कंद को गड्ढे या मेड़ नाली में और बाकी सभी को मेड़ नाली में लगाएं। गोबर की खाद को गड्ढे में दे दें या खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाकर मेड़ नाली बना लें। कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी जो है वो ओल के लिए 60 से 75 सेंटीमीटर, गुना 60 से 75 सेंटीमीटर, यानी कतार से कतार और पौधे से पौधे की।

0: जी
1: कच्चू के लिए 60 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर, साखिन एवं सुथनी के लिए 60 से 75 सेंटीमीटर बाई 60 से 75 सेंटीमीटर, आड़ू एवं सेमलकंद के लिए 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर और मिश्रीकंद के लिए 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर पौधा से कतार पहले, उसके बाद पौधा से पौधा दूरी की। ओल के लिए 500 ग्राम के बीज कंद का चुनाव करें। अगर बड़े बीज कंद हैं तो उन्हें लंबवत इस प्रकार काट लें कि हर एक टुकड़े में अग्रस्त कली का ऊपर का जो बड है उसका कुछ भाग जरूर रहे। ओल के लिए बीज दर जो है 9 से 14 टन प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है। कच्चू और साकिन के लिए 25 से 30 ग्राम के स्वस्थ बीज कंदों का चुनाव करें। इनका बीज दर जो है वो 1 टन प्रति हेक्टेयर होता है। सुतनी के लिए 100 से 125 ग्राम और आड़ू के लिए 200 से 250 ग्राम के स्वस्थ बीज कंदों का चुनाव करें। मिश्रीकंद जो है वो बीज के द्वारा होता है, बाकी सब आपका कटिंग से या उसके कंद से होता है, लेकिन मिश्रीकंद जो है बाकी सीड से होता है। तो उसका बीज दर जो है वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो उसी हिसाब से ये करें। और शकरकंद के लिए लत्तर के जो ऊपरी भाग है उसका 20 सेंटीमीटर मतलब करीब एक बित्ता का कटिंग बना लें। शकरकंद के लिए प्रति हेक्टेयर करीब 83,000 कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और सेमलकंद के लिए क्या है कि पौधे के ऊपरी 1/3 भाग एवं निचले जो भाग है उसको छोड़ करके बीच का जो 25 से 30 सेंटीमीटर है उतना बड़ा बड़ा कटिंग बना लें और करीब जो है 12,350 कटिंग की ज़रूरत पड़ती है सेमलकंद में। जी
0: अब हमारे किसान भाइयों को यह बताएं कि इन फसलों में खाद एवं उर्वरक की कितनी आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ, चूँकि ये सभी जो है ज़मीन के अंदर बैठते हैं, भूमिगत फसलें हैं, इसलिए गोबर खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें। मिट्टी जितनी भुरभुरी और हल्की होगी उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। अगर मिट्टी अम्लीय है तो चूना का प्रयोग करें। ओल, कच्चू, साखिन, सुतनी, आड़ू और सेमलकंद के लिए 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 100, 60, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का व्यवहार करें। ये जो है 100, 60, 80 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मतलब है, उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे यूरिया के फॉर्म में तो अपना यूरिया या DAP या MOP तो जो कन्वर्जन है उसके अनुसार वो दें। मिश्रीकंद और शकरकंद के लिए 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद और 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का व्यवहार करें। गोबर की खाद फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा लगाने के समय दें। बाकी जो आधी मात्रा है उसको 30 से 45 दिनों के बाद और 60 से 75 दिनों के बाद दो भाग में उसका उपरिवेशन करें, टॉप ड्रेसिंग करें। उपरिवेशन के पहले खरपतवार की सफाई कर लें और जो टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ा दें।
0: डॉक्टर साहब, उत्पादन का सबसे अधिक प्रभाव किस्म के चुनाव पर निर्भर करता है।
1: जी बिल्कुल,
0: इसलिए इन फसलों के उन्नत किस्मों के बारे में बताएं।
1: जी हाँ, ओल के लिए अब तक की जो सबसे अच्छी किस्म है वो गजेंद्र है और आमतौर पर हम इसे मद्रासी ओल के नाम से सभी जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली जो है आंध्र प्रदेश के कोभूर चयन के द्वारा विकसित की गई ये एक किस्म है और इसकी उत्पादकता काफ़ी अधिक होती है, करीब 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसकी होती है। इसमें एक ही जो है चिकना सुडौल कंद बनता है और कुलकुलाता नहीं है ये।
0: जी
1: जी, इसके अलावा विधान कुसुम और श्री पद्मा भी अच्छी किस्में हैं, पर अभी भी गजेंद्र जो वैरायटी है मद्रासी होल ये सबसे अग्रणी है। और कच्चू के लिए जो है वो मुक्ताकेशी, शतमुखी, श्री रश्मि, श्री पल्लवी एवं श्री किरण बहुत अच्छी किस्में हैं। साखिन के लिए एक जो कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा विकसित किस्म है NDB 1 वो अच्छी पाई गई है। आड़ू के लिए श्री कीर्ति, श्री रूपा और सुतनी के लिए श्री लता किस्मों को अच्छा पाया गया है। मिश्रीकंद के लिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर द्वारा राजेंद्र मिश्रीकंद 1 RM1 एक बहुत अच्छी किस्म है। सेमलकंद के लिए श्री विजया और श्री जया कम अवधि की अच्छी किस्म के रूप में इसे पाया गया है। और शकरकंद की अच्छी किस्मों में कलिंगा, श्रीभद्रा, राजेंद्र शकरकंद 47 ये सभी जो है ऊपर से इसका लाल है और अंदर खाया जाने वाला भाग सफ़ेद है। भूसोना जो है शकरकंद की पीला नारंगी रंग की नई किस्म है, इसमें विटामिन ए की प्रचुर

0: मात्रा भरी हुई है
1: जी।
0: और भूख कृष्णा एक और वैरायटी है शकरकंद की, ये बैगनी रंग की है और इसमें एंथोसाइनिन की एक नई वैरायटी है, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। और एंथोसाइनिन जो है एंटीऑक्सीडेंट के तरह बहुत अच्छा इसका उपयोग है। और इनको खिलाकर जो है, खासकर के बच्चों को खिलाकर, उनमें जो कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इनमें से अधिकतर किस्में, खासकर जिसके नाम के पहले श्री जुड़ा हुआ है, वो जो है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, ये त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी में अवस्थित है और इनके द्वारा ये विकसित किस्में हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, इन फसलों को लगाने के बाद किन किन बातों का ख्याल हमारे किसान भाई को रखना चाहिए?
0: जी हाँ, मिट्टी को हल्की भुरभुरी रखने का प्रयास करें, सूखे पत्ते, पुआल या काले पॉलिथीन का प्रयोग करके मल्चिंग करें। आड़ू और सुथनी की खेती में, खासकर आड़ू के लिए बांस, रस्सी, मिट्टी आदि का प्रयोग कर झांकी और सहारा दें। मिश्रीकंद की खेती अगर कंद के लिए कर रहे हैं तो कली और फूल को तोड़ करके फेंक दें, नहीं तो जो है इसका ट्यूबर कम बैठेगा। और ये सभी फसल जो है जल जमाव के लिए बहुत संवेदनशील हैं, अतः खेत में जल निकास की व्यवस्था जरूर रखें। कंदों की खुदाई, खास करके शकरकंद और मिश्रीकंद में विलंब नहीं करें, नहीं तो फिर उसमें चीना लगेगा, विभिल, और खेत को खरपतवार से मुक्त रखें
1: जी। डॉक्टर साहब, पौध संरक्षण किसी भी फसल के महत्वपूर्ण घटकों में एक है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए यह बताएं कि इन फसलों में कौन कौन से रोग एवं कीट व्याधि आते हैं
0: जी,
1: और उनसे छुटकारा किस प्रकार पाया जा सकता है।
0: बिल्कुल जी, ये जो कंद फसल है इनमें रोग और कीट का प्रकोप थोड़ा कम ही आता है, फिर भी एक जो ओल में है वो फाइटोफ्थोरा फफूंद है, उससे जनित झुलसा रोग आता है, और कच्चू और साखिन का भी ये प्रमुख रोग है। ओल में एक और घातक रोग जो है, बरसात के समय अगर ज़्यादा जल जमा हो जाता है तो उसमें स्क्लोरेशियम फफूंद से एक तना विगलन की समस्या आती है, उसमें आधार से ही जो है पौधे गल करके गिर जाते हैं, इससे काफ़ी क्षति होती है। आड़ू और सुतनी में फफूंद जनित एंथ्रेक्नोज देखा जाता है, और शकरकंद में चीना और विभिल एक प्रमुख समस्या है, जिसमें बने कंद पर कीड़े छेद कर देते हैं और पूरे कंद का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाता है और आर्थिक दृष्टि से बेकार हो जाता है। इसके अलावा मिश्रीकंद और शकरकंद में सरकोसपोरा फफूंद से भी देखा जाता है प्रकोप, और इनसे बचने के लिए जो रोपण सामग्री है उसको कार्बेंडाजिम 0.15% और इमिडाक्लोरपीड 0.05% से करें दवाओं से, और बीजोपचार जो है 20 से 30 मिनट तक करें, और बीज सामग्री को लगाने के पहले 3 से 4 घंटे तक छाया में सुखा लें। और खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम 0.1% या डायथेन M45 0.2% और इमिडाक्लोरपीड 0.05% का 20 से 25 दिन के अंतराल पर 4 से 5 बार छिड़काव करें। छिड़काव के समय जो है समुचित स्टिकर का उपयोग करें।
2: एक हर हमरे बन जानकारी करत रही कंद फसल कर वैज्ञानिक खेती बतात रहे शुभ्रांशु सेन गुप्ता और इकर से बातचीत करत रहे कृष्ण जीवन पौराणिक। तो जुवराज भाई, इकरे संगे आइज हमरे कर खेतीबाड़ी कार्यक्रम बेरा सिरालक, और सुनवैया भाई बहन मन कहीं न जावे, तुरंत हमरे मन हाजिर होवत ही अगला कार्यक्रम हमारे दुनिया कार्यक्रम में।
3: तो सुनवैया भाई बहन मन के फिर से हमारे दुनिया कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है। तो दादा देखो, का है कि हमरे काम करीला, कोई भी काम के करीला तो बहुत निष्ठा से करीला, और देखो हमरे कर्म ही पूजा है कहल भी जाएला। तो हमरे कर देखो कोई भी काम के ईमानदारी से, निष्ठा से और समर्पण भाव से करल काम कभी अकारत नहीं जाएला, हमेशा उकर फल लाभदायक ही हुएला।
2: बात नगद कह रही, देखो कर्म ही पूजा है, कहे कर मतलब है कि हर आदमी के अपन काम निष्काम भाव से करते चले चाहिए। और बात रहलक कि काम तो करते जाए है, लेकिन बहुत मन सोचा ना कि भाई काम करे थे तो तुरंत होकर परिणाम भी आना चाहिए,
3: परिणाम कर तुरंत असर देखे लगे ना,
2: लेकिन परिणाम कर चिंता कभी नहीं करना चाहिए। काहे जब कर्म करे थे तो अगर परिणाम सकारात्मक होना ही है, निश्चित है। इकरे में देखो रोरे कर

0: श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कही रहे हैं अर्जुन से, है नहीं, उपदेश दे रहे हैं कि मन सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो।
1: ये तो बहुत बड़ा बात बता दिली दादा रो रहे कि देखो श्री कृष्ण के कितना बड़ा संदेश दे दिला, उतना बड़का युद्ध चलत है से बेर अर्जुन के, और ये हमरे के सीखे के भी दरकार है, हमरे का जैन जे दैनिक जीवन है उकर में भी हमरे के उके अपन में लाने कर भी बहुत
0: आत्मसात करे कर जरूरत है हर आदमी के कि भाई हम कर्म करी ला तो उकर फल निश्चित है मिले ही। तो यही बात लेके श्रीमद् भगवद गीता में कही रहे, तो आदमी के निस्वार्थ भाव से कर्म करते चले चाहिए, और कर्म ऐसा होना चाहिए कि अपन घर परिवार कर हो, समाज कर हो, राज कर हो, देश कर उन्नति में भी उकर योगदान हो सकेला, है नहीं?
1: हम सही बात कर लिए दादा। देखो हमरे ईश्वर कर जो मूर्ति पूजा करीला बहुत ही श्रद्धा भाव से करीला, बहुत प्रेम से सम्मान कर भाव से करीला, वह लखे हमरे के भी अपन काम के वह भाव से वह आदर सम्मान से करे के चाहिए। तो देखो कोई भी के हमरे काम अगर करती लगन से करती तो उकर फल हमरे के अवश्य मिली, जे तरी हमरे अगर ईश्वर भाव के ईश्वर से अपन भाव प्रकट करीला और जे उकर फल मिलेला वह फल हमरे के अपन कर्म करे से भी मिली। अगर ऐसा नखे कि खाली हमारे ईश्वर जगह बैठल ही या कर्म का आसार रखती तो ईश्वर भी वैसा आदमी का साथ कहियो नहीं देवे ना।
0: देखो आदमी मन में विश्वास है कि कर्म कांड कर ले ही फल कर प्राप्ति हो जाए, चाहे जे इच्छा करती से मिल जाए। तो कर्म कांड से भी अधिक जरूरी है कि भाई जे की जरूरत है उकर सेवा करूं, और सेवा करते में ये भी बात होना चाहिए कि जेकर में जन कल्याण होना चाहिए।
1: तुम नगद बात कर रहे था
0: और उकर से समाज भी आगे बढ़ सकेला, उसम उसन काम करूं ताकि वो कर्म कांड से भी रोरे के बेहतर फल मिल सकेला।
1: देखो कोई भी करल काम अपन स्वार्थ वास्ते एकदम वो अकारत चल जाए, अगर अपन स्वार्थ वास्ते रोरे काम करे थी तो फिर रोरे के कर्म ना लागे, वो कहब तो खाली अपन स्वार्थ हके। तो इसलिए हमरे को वह काम करे के चाहिए जेकर से दोसर के भी लाभ मिले। अपन लाभ तो मिलबे करे लेकिन उकर संगे संगे दोसर के भी लाभ मिले, और ऐसा हमरे के भी देखे के चाहिए कि दोसर के नुकसान काम से ना हो, तो वह हमरे का असली कर्म हके।
0: तो जितना सुनो या भाई बहन मन, यह बात है कि कर्म करते चलू, वही ही पूजा है, और कार्यक्रम में हमरे आगे बढ़ीला, और चलू नागपुरी लोकगीत सुनो आप, रामलखन गोप और संगी मनकर गावल गीत के।

0: एखन हमरे मन सुनत रहे नागपुरी लोकगीत राम लखन गोप और संगी बनकर गावल गीत रहे।
1: तो चलो कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए हमरे एक परगनिया में एक कविता सुन ले ला और इकर बहुत ही बढ़िया कवि है के गौर क्वेरी और इकर जे कवि है कवि रचना है जे है के पचकर परगनिया में वो के हमरे सुनी ला।
0: चलो
2: कविता गुरु सेवा के लिए है, गुरु सेवा के लागे। वंदे।

বেতার একথা শিরোমণি, বাঁশি হলাক উপকারে আর ভাতে।

ए लागे दहेज बंद करिए, दहेज बंद करिए कैसन न कैसे काटब दिन काटब दिन, बेटी के बिहाए थासाए गेला दिन, कैसे दिन काटब दिन बेटी के बिहाए थासाए गेला दिन, लोगे कोखे भेड़ी छागल केन, कैसे काटब दिन काटब दिन बेटी के बिहाए थासाए गेला दिन, आ टाका।

एखन हमरे मन सुनत रही पंच परगनिया में पंच परगनिया कविता कवि रहें गौर कोयरी। चलू बाँचल समय में खोरठा लोकगीत सुनीला करुणा कुमारी और संगी मनकर गावल गीत के।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। देशभर में एआई तकनीक से मिलेगी कानूनी मदद। प्रधानमंत्री के जनसेवा काल के उपलक्ष्य में देवघर गुड्डा को मिली 7 नमो एम्बुलेंस की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सेमरा में अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय सख्त। उत्तर कुंजी न दिखने की तकनीकी खामी पर जेएसएससी से मांगा जवाब। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में रांची की कॉमर्स छात्रा अमनी केजरीवाल ने रचा इतिहास। शत प्रतिशत अंक हासिल कर बनी नेशनल टॉपर। और 16वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल रांची में संपन्न। 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। यह पुनर्गठित योजना 31 मार्च 2031 तक शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों में लागू रहेगी। इसमें विधि संजीवनी और एआई संचालित न्याय सेतु चैटबॉट जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 3 करोड़ लाभार्थियों तक कानूनी मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आदिवासियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। उन्होंने रामगढ़ की स्थानीय समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिया।
1: एक ऐसी सरकार है जो कि गरीब की चिंता करते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक सर्वांगीण विकास पिछले 12 सालों में जो उन्होंने किया है उन्हीं सब को लेके हम लोग आम नागरिकों तक जा रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं रामगढ़ आया हूँ। यहाँ पे मेरी स्थानीय लोगों से भी मुलाकात हुई है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवघर और गुड्डा लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस की सौगात मिली है। स्थानीय सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी शिवधाम से इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। सांसद की पहल पर शुरू की गई इस 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली सेवा का लाभ देवघर, मधुपुर, जरमुंडी, पौड़ियाहाट, गोड्डा और महगामा के लोगों को मिलेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-112-500 जारी किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची जिले के इटके स्थित सेमरा गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने शहीद विलियम प्रदीप तिर्की, प्रभु सहाय तिर्की, महावीर महली और एनएसजी कमांडो अजय भगत के परिजनों तथा वीर माताओं को

0: अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों का यह गांव हमारे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने तकनीकी खामी पर जेएसएससी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया। पोर्टल में गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी उत्तर कुंजी नहीं देख सके थे। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। राज्य में संचालित नशा मुक्ति अभियान के तहत आज धनबाद नगर निगम में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप नगर आयुक्त संदीप अनुराग के नेतृत्व में निगम अधिकारियों और कर्मियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके बाद विशाल मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। उप नगर आयुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।
1: के द्वारा शपथ लिया गया कि अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे जिले को नशा मुक्त बनाना है, अपने देश को नशा के कुप्रभाव से बचाने के लिए हम लोग सब नशा पान को त्याग करेंगे। इसके अलावा भी अन्य दिनों में भी अलग अलग अंचलों में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलेगा।
0: राज्य सरकार ने विशेष परिस्थितियों में स्थायी कर्मचारियों को 1 महीने का अग्रिम वेतन देने का निर्णय लिया है। इस राशि को 2 महीने के भीतर बिना ब्याज के लौटाना होगा। तय समय पर भुगतान न करने पर इसे 12 महीनों में सामान्य ब्याज के साथ किश्तों में चुकाना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल की कॉमर्स स्ट्रीम की छात्रा अवनी केजरीवाल ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। अवनी ने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस अभूतपूर्व सफलता से न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे रांची शहर और झारखंड का नाम देश भर में रोशन हुआ है। जमशेदपुर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल क्रियान्वयन को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित निवारणपुर में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक विशेष टीम ने आज घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। एटीएस के अधिकारियों और जवानों ने मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। रांची के आईजी मनोज कौशिक ने इसकी पुष्टि की है।
2: उसमें वो महत्वपूर्ण कांड था तो महानिदेशक सब पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार उस केस को हम लोग एटीएस को ट्रांसफर किए हैं और कांड अनुसंधान अंतर्गत है और जो भी उसमें फर्दर लिंकेजेस है उसमें वर्क किया है।
0: सीबीआई ने धनबाद एसबीआई शाखा के 25 करोड़ रुपए के घोटाले में 20 साल से फरार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान के तहत आरोपी ब्रजभूषण प्रसाद को महाराष्ट्र और करतार सिंह को छत्तीसगढ़ से दबोचा गया। वर्ष 2005 में इस मामले में दोनों आरोपी पहचान बदलकर छिपे थे। धनबाद पुलिस ने निरसा क्षेत्र से 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इन आरोपियों का धनबाद और पश्चिम बंगाल में पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
3: पूछताछ करने पर ये लोग चोरी हुआ मोटरसाइकिल को बेचने के लिए प्रयास कर रहे थे। इन लोगों के पास 5 गाड़ी रिकवरी मिला था और इन लोगों को निशानदेही पर 8 और गाड़ी हमको मिला था और वो भी रिकवरी हुआ है और जिस साधन यूज करके वो मोटरसाइकिल का चोरी करते हैं।

0: का जो मोटरसाइकिल का जो लॉक खोल देते हैं वो भी साधन हमको बरामद हो गया है।
1: तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाली 16वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल आज रांची में संपन्न हुआ। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस ट्रायल में राज्यभर से 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने बताया कि जुलाई में विशेष शिविर के बाद अंतिम 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की जाएगी।
2: जुलाई 28 से लेकर 8 अगस्त तक तमिलनाडु में जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता है हॉकी इंडिया के द्वारा, जिसके लिए आज झारखंड टीम का ट्रायल हो रहा है, जिसमें विभिन्न जिला से कई खिलाड़ी आए हैं। इनका भी हम लोग ट्रायल लेंगे और इनमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनको 30 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करेंगे। इन 30 खिलाड़ियों का 15-20 दिन का कैंप कराएंगे और उसमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। देश भर में एआई तकनीक से मिलेगी कानूनी मदद। प्रधानमंत्री के जन सेवा काल के उपलक्ष्य में देवघर गुड्डा को मिली 7 नमो एम्बुलेंस की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सेमरा में अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय सख्त। उत्तर कुंजी न दिखने की तकनीकी खामी पर जेएसएससी से मांगा जवाब। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में रांची की कॉमर्स छात्रा अवनी केजरीवाल ने रचा इतिहास। शत प्रतिशत अंक हासिल कर बनी नेशनल टॉपर। और 16वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल रांची में संपन्न। 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला को लेकर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। समय कम बचा है, इसलिए देवघर में वरीय अधिकारियों का लगातार भ्रमण जारी है। पर्यटन विभाग के निदेशक नमन प्रियस तकड़ा ने बताया कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हर व्यवस्था समय पर पूरी कर ली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह देवघर बासुकीनाथ आने में परेशानी न हो।
2: जो हम लोगों ने पिछले बैठक में ये एक्सपीरियंस किया था, इसको एड्रेस किया जा सके, उनको काफी हद तक एड्रेस किया गया है। कुछ आवंटन वगैरह की जो बातें हैं वो डिस्कस की गई, क्या हम लोग मैं और वेंडर कर सकते हैं ताकि हमारे जो श्रद्धालु बने हुए वो आए और उनको बेहतर जलापन का वो लाभ मिल सके सुरक्षित एवं बिल्कुल सुरक्षित वहां पे। और हम लोग आशा करते हैं कि पूर्व के वर्ष में जिस तरह से अच्छा हुआ है और भी बेहतर हो 2024 साल शराबी और वाटर मेला ड्रेनेज को हम लोग और बेहतर बनाएंगे। टेंट सिटीज में हम लोग अलग से हेड काउंटिंग करेंगे ताकि वहां पे जो भी हम लोग डेली बेसिस पे सुविधा दे सके उसको हम लोग बेटर मैनेज कर सके।
1: इधर देवघर नगर निगम को नई प्रशासक सुलेचना मीना मिल गई है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पेयजल, साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था है। सावनी मेला को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो।
3: नगर निगम का प्राथमिकता उसकी यही रहेगी नगर निगम की कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और इसमें हम ट्रैकर्स यूज करेंगे। जितनी भी ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पर सफाई करनी यदि नहीं पहुँचते हैं और तो ऐसी समस्याओं को टैकल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको ट्रैक किया जाएगा, उनके ट्रैकर सिस्टम होंगे। एक तो नासी वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में हमने सुना है जो कि काफ़ी ज़रूरी है देवघर के लोगों के लिए, उस पर भी हमारा विशेष फोकस है।
1: नशा मुक्ति को लेकर देवघर में जिला प्रशासन सख्त है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुमानिया और पुलिस अधीक्षक परवीन पुष्कर खुद कमान संभाले हुए हैं। दोनों अधिकारियों ने कहा कि इस बार देवघर को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस योजना पर काम किए जा रहे हैं ताकि देवघर एक नशा मुक्त जिला बनकर उभरे।
4: नार्कोटिक्स का अगर हमें सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं, अरेस्टिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलें और एक ये जो जागरूकता अभियान 15 दिनों का है उसमें सभी लोग भाग लें और ये जागरूकता अभियान सभी लेवल्स पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर लेवल पे चलेगा। जागरूकता के साथ साथ साथ में कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी और इन 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ड्रग पेडलर, जितने भी ड्रग पेडलर्स ये काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
5: जैसे नशा मुक्ति को लेकर ये जागरूकता है 26 जून को जो इसके लिए अभियान का जो एक दिवस है, उससे पहले 2 सप्ताह का एक अभियान चल रहा है सभी स्कूलों में, हॉस्पिटल में और अन्य सार्वजनिक जगहों में, जहाँ पे सभी बच्चे और सभी युवाओं को ये संदेश दिया जाएगा कि नशा मुक्त होने से देश के विकास में और खुद के जीवन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे।
1: प्रदेश की एकमात्र एम्स अस्पताल में लगातार सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ब्लड बैंक खुल जाने से आम लोगों को अब जीवन दान के रूप में ब्लड बैंक से ब्लड की आवश्यकता पूरी होगी। आशीष कुमार अकम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे उराव भाषा में।

0: मुंजरा हुरमा मिनुरिन नीम मेना लगदर आकाशवाणी रांची ती आदिवासी अखड़ा थतम एन हिकदन बीना लकड़ा
1: अरा एन हिकदन के मंजू बखला हुरमार मिनुरिन एंगहतर ती ओ लगी
0: मंजुदे इनलता बेड़ानु स्वरोजगार एकला ढिबा कमा बाना घी मधे दिम मल्ली पहे तंगा खेडनु इजना की डहरी हूँ रही
1: मानिम बिना इन्निम नमहे चेड़ा जोखर अरा मुक्कर तंगा पसिंद गही नलक नना की सन्नी सन्नी नलक नना ती ढिबा कमा बाना घी उरे नना उंगनर इदिति आर तंगा आर्थिक रूपी घी बढ़ियर नना उंगनर अरा नन्ना आलर आलरिन हूँ नलक ची आउंगनर है मला
0: हाँ दे तो संगियरो निम है गुसन तंगा पसंद अरा अखना जगे नलक रई होले नीम तंगा नलक उरे नना बिद्दर होले सरकारी योजना की जानकारी हो अर्की अदिति लाभ हो आउंगदर
1: हाँ बिना चेड़ा जोखर अरा मुक्कर इजर और होले अके पुना पुना नलक अरा योजना की लाभ हो आउंगनर है मला
0: हाँ मंजुते इनलता बेड़ा नु हुरमा आलर एने लेखा घोकनर कडीबा कौड़ी घी रूपे नु बढ़िया मना बेदनर अरा है मला मना
1: हाँ,
0: बेदनर
1: हाँ, हाँ,
0: अरा तंगा एड़पा आबूर हुरमी चार लेखा आलोन दाव लेखा पूरा नना बेदनर
1: मानिम बिना पहे कई नो बेर आलर तंगा पसंद आबो नलक नना बेदनर पहे ढिबा कौड़ी की जुक्की करने तंगा नलक ओरे नना पुलना है मला
0: मानिम कथा बाज की दे एने लेखा आलर गे सरकार

0: हजार कैनो योजना ओरे नंज की रही रही कमला।
1: हाँ हाँ
0: इकैया महबा लेखा योजना रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
1: तू बिना हुरमिति मुंद नमे अखड़ा मिनूर रीन तिंग गए का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंदिरा तली।
0: मजे दे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इदत्तु माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ई योजना घी उद्देश्य सन्नी नलक इदत्तु व्यापार गुट्ठीन ओरे नन्ना अरा मुंती चलरना आबो व्यवसायन मुंदवारे हो आगे आर्थिक सहायता चीन तली।
1: अच्छा तेंगे तो बिना या एकालिखा नलक के ऋण हो आ उंगतारी।
0: ई योजना ती दुकान कुलना एड़ा पोसना हेर पोसना किचरी डुड्डो जना हिक्का ती कमचका आलू मोबाइल कमना उन्ना मोखना घी आलू कमना सन्नी सन्नी नलक नन्ना अरा नन्ना रोजगार नलक के ऋण चीतारी।
1: तो इया नो इंदिर इंदिर ऋण की जुदा जुदा डाड़ा रही।
0: हाँ दई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नु मुंद खड़ा नु खटका रही एका से का बोलोर गे 50,000 गुटी रिन।
1: अच्छा
0: चेड़ा जोखर गे 50,000 ती 5 लाख गुटी पचका अलर गे 5 लाख ती 10 लाख गुटी।
1: अच्छा अके महबा जोगे जानकारी चिचकी भी ना पहे नमहे मिनो आबोर संगियर घी मिद्दो नो इन्ने लिखा मिन्ता मनो होतंग इन्ने लिखा योजना घी लाभ हो आगे एक्शन का ना मनो
0: दे इदिगे आलरिन तंगा हेदे ता बैंक ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक अरा नन्ना अधिकृत वित्तीय संस्थान नु काला उंगनर।
1: तो संगियरो इदा तो निम्हे गुसन इंद्रीम महबागार अखना जोगे नलक रही होले नीम तंगा नलक ओरे नाना उंगदर अरा सरकारी योजना घी जानकारी हो आ अरा अरा अधिक ही लाभ हो आ उंगदर।
0: दे जानकारी की कथा घर ढेर कचना करकत तो अकुन बेड़ा रही पसंद गही डंडी में ना घी तो नमह मिनूरिन मिनता आदि कमला।
1: हाँ बिना नमह मिनूरिन एकदम मिन तो उन तो अकुन नाम मिनोत सुमित्रा मींज अरा संगियर घी पाड़का डंडी मेना बिदकर अनर रांची मोरा बाती बादी ती जीता उराव अरविंद सतीश सुशीला सरिता खुशबू शाश्वत पंकज अरा गोट्टा उराव परिवार।

0: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
2: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से, समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं और उसको संज्ञान में लेकर के, और जब ये घोषणा हुई तब बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन भी मैं, मां नर्मदा जयंती थी, मां नर्मदा जी की सेवा में, स्वच्छता में हम सब हमारी टीम के साथ लगे हुए थे और इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर।
1: आपको समाज सेवा की सीख कहां से मिली?
2: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूं, मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। सर, जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
2: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहां का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहां बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी, और वहां का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता है क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांवों की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किए जाए। बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, डैम बनाने का, बड़े तालाब बनाने का, तो ग्राम स्तर पर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां बहुत बड़ी संरचना बनाना ये संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे काम हमने प्रारंभ किए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टार्ट डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हमने एकल विद्यालय भी वहां पर

0: 500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांवों में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके एक एक दो दो एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला, गांव में जलस्तर भी बढ़ा। जिन गांवों में फरवरी में मार्च में ही पानी समाप्त हो जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, वो फिर मई जून तक भी और उस गांव में पानी ठहरने लगा और इसलिए रोग भी रुकने लगे।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एजुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे। पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गांव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परम्परागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। हमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किया, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं। आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रह करके तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के। कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बह के जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गौपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था। फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहां की जो सोना घाटी है उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहां जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवर टैंक है, पानी की टंकियां हैं। जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है, उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं, तो ये पहाड़ हमारे

0: पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है, बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था, वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, जैसे वो भी इस बार बारिश आने वाली है, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी, तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए, फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये 3 बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहां गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारे घर की छत 1000 फुट के भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके, गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर भी करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उतने माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोनाघाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई, और उसके बाद फिर 32000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। 2-4 साल में फिर से कह सकते हैं सतपुड़ा के घने जंगल घूमते अनबने जंगल। तो ये काम हम छोटे छोटे समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक प्रकार का एक काव्य संग्रह है जो प्रकृति को समर्पित है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया, और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुराने 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए, और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा, ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया है।
1: बिल्कुल सर, आपके लिए परिवार और गांव आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं?
0: परिवार तो हमारा मूल आधार है हमारे समाज का। जब तक कुटुंब व्यवस्था हमारे समाज में है, तब तक ही हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का है, हिंदू संस्कृति का है, वो अक्षुण है। क्योंकि हमको जितने संस्कार मिलते हैं सब प्रकार के, वो हमारे परिवार में मिलते हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का, जल का जो मुझे संस्कार मिला, वो अपने परिवार के माध्यम से मिला। कि घर में शाम के समय आज भी आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े जो है, वो बच्चा कोई अगर पेड़ को हाथ लगाता है तो पेड़ को हाथ नहीं लगाना, इस प्रकार का वो करते हैं रात को। तो ये परिवार से ही सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है। ये कुटुंब व्यवस्था और ये ग्राम में आधारित जो भारत की व्यवस्था थी कि कैसे एक परिवार की तरह पूरे गांव रहता है, आप देखेंगे प्रत्येक गांव स्वावलंबी था। किसी गांव को केवल नमक खरीदने के लिए गांव के लोग जाते थे, बाकी सारी चीजें गांव में पैदा होती थी, सारे कारीगर गांव में थे। 4 महीने भी अगर गांव के बाहर नहीं जाता तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था। गांव गांव में किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई उद्योग होता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, और उसका विदेशों में जाकर के व्यापार होता था। और इसलिए अंग्रेजों के आने के पहले हमारी जो परिवार व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था, ये बहुत सुदृढ़ थी सारी दुनिया में। आज जैसे हमको उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो एक अभियान चला है कि कुटुंब कैसे फिर से सुदृढ़ बने, कैसे संयुक्त परिवार हमारे हो, ताकि ये सारी बातें जो सहज हमको सीखने को मिल जाती थी परिवार में, वो आज उसके लिए हमको अलग से प्रशिक्षण देना पड़ रहा है हमारे बच्चों को। पहले सारी चीजें परिवार में सीखने को मिल जाती थी, इसलिए उन गांवों को फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बैतूल जिले का एक बाचा गांव को हमने उस रूप में लिया है, वो जनजाति गांव है। तो एक अच्छा गांव कैसे बन सकता है अपने गांव के लोगों के माध्यम से, तो बाचा गांव को सोलर ग्राम, जल ग्राम, आज पर्यटन गांव के रूप में गांव के लोगों के सहयोग से एक आदर्श गांव के रूप में उसकी ख्याति हुई है। तो ऐसे गांव हम फिर से बनाए ताकि देश दुनिया हमारे गांव को देखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है परिवार को, तो वाकई घर परिवार से ही सीखे तो बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही सर, जो युवा वर्ग है वो कैसे इस जल संरक्षण पर्यावरण की दिशा में, काफी युवा कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो और जुड़ना चाहते हैं छोटे छोटे प्रयास क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, युवा इस दिशा में अभी पिछले एक दशक से जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, तो केस द रेन को लेकर के, फिर एक पेड़ माँ के नाम को लेकर के, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का और महिलाओं का, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने नवांकुर सखी जो अभियान चलाया था उसमें हजारों महिलाओं ने उसमें योगदान किया था, और अभी हमने युवा जन अभियान परिषद के माध्यम से जब काम प्रारंभ किया तो उसमें हजारों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। मैं देखता हूं कि पहले युवा जो है वो अपना जन्मदिन मनाते थे तो कहीं केक काटते थे, कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में देखता हूं कि अधिकांश युवा अपने जन्मदिन पर कोई पौधा लगाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं, या कोई गौशाला में जाकर के गोग्रास देते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति हमारे युवा आगे आ रहे हैं, और युवा जो है वो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, मोदी जी बार बार कहते हैं, और इसलिए युवा जिस दिशा में जाएंगे उधर पूरा समाज जाएगा। और आज हमारा युवा अपनी प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, अपने समाज को लेकर के जागरूक हुआ निश्चित रूप से, और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। हमारे हर अभियान में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का रहता था तो वो युवाओं का और महिलाओं का ही बड़ी मात्रा में रहा है, और आगे भी युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि हम अपने स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़े, उद्यमी को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन साथ में प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण, इसको लेकर के भी अपने जीवन का एक भाग इसमें रखें, और जीवन व्यवहार में हमारे प्रकृति और जल संरक्षण ये रहे। छोटे छोटे काम करके हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर में हम पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जितना भी बजट हम अपने घर का बनाते हैं तो पानी का भी बजट बनाए कि हमारे एक व्यक्ति को 60 लीटर पानी लग रहा चाहिए, 60 से 100 लीटर, उससे ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज समाज को, प्रशासन को, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने भूगर्भ जल को बचा सकते हैं और वर्षा जल को बचा सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे उपाय हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि पानी का बजट बनाना पड़ेगा, पानी का सदुपयोग बहुत जरूरी है। मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित

0: AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, श्री मोहन नागर से विशेष बातचीत हमारे दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

0: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माई गॉड, कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहां टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं, हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए, नंबर है 94318-99002, 94318-99002। और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005, ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि

0: हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने कुछ सारे बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, ये भी इनका पार्ट आ जाता है।
1: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
0: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहां कार्डियक सर्जरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ बुनियाद कार्यक्रम है युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं, और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, या रोजगार है ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है, एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
0: जी, क्योंकि जैसा पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है, और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है, और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब 3 तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
0: सर, बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं, रोजगार वाले, रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है।

0: और उस वैसे वैसे कोर्सेज को हमारे मैनेजमेंट वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेज लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेज वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
1: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
0: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाए,
1: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800120051 डायल करें या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में है वहां आए, देखें, पढ़ें, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
0: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है और फैकल्टी जो हमारे हैं अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
1: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये सारी चीजें, तमाम चीजें, हाँ, हमारे युवा साथी उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
0: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और कई दफा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
1: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियो

0: वेस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में भी आपसे ही बात होगी क्योंकि सवाल आएंगे, मुझे पता है। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051। टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने को राजेश को मौका दिया, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम रजनीगंधा लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी पूजा, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म दिल का रिश्ता के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की, सप्तरचना समीर का, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म प्रेम रतन धन पायो से, आवाजें अन्वेषा विनीत सिंह और हर्षदीप की, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने और शब्द रचना इशाद कामिल का।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म हम साथ साथ हैं से आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक की, सप्तरचना किरण आर का, संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुलाम का ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर का और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म सलामे इश्क से। आवाज़ें सोनू निगम, श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन की। संगीत से सजाया है शंकर महादेवन, एहसान और लॉय ने। शब्द रचना समीर का।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। मुझे यानी अपनी रेडियो सखी पूजा को दीजिए विदा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: भारत को कल 3 नए नौसैनिक जहाज मिले। इनमें स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे वेसल संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय शामिल हैं। इन जहाजों को कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इन जहाजों और भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक कॉमोडोर केडी जोशी। कॉमोडोर जोशी, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, अलग अलग जहाजों की विशेषताओं पर बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इन जहाजों का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इनके निर्माण में भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ 200 से अधिक एमएसएमई की भी व्यापक भागीदारी रही है, तो आपके विचार में ये कितना महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, ऐसा है कि आज के वातावरण में जो दुनिया में चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं इस बारे में और जो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ऊपर जा रही है उसके कारण, चाहे वो शिप बिल्डिंग में हो, चाहे शिप निर्माण में जो अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, बनाए जाते हैं, वो आजकल भारत में बन रहे हैं। इसका उदाहरण ये 3 जहाज हैं जिनमें करीब 75-80% इक्विपमेंट जो है वो भारत में बना हुआ है। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 200 एमएसएमई लघु उद्योग इसमें इन तीनों जहाजों में इनके साथ जुड़े हुए थे, ताकि उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए, उन्होंने जो आइटम्स बनाए, वो इन जहाजों में लगे हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम मौका है कि पूरे इस दिशा में अच्छी प्रगति करें, और जितना ये गैप रह गया पूरी तरह इंडिजिनस होने में, जो आप कह सकते हैं कि जो वेपन्स और सेंसर्स हैं उसमें ये थोड़ा गैप ज्यादा दिखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं शिप बिल्डिंग के, जिसमें शिप की जो बॉडी है जिसको हल बोलते हैं वो, और शिप के मशीनरी जो अंदर लगी हुई है, वो प्राइमरीली हमारे पास अच्छी कैपेबिलिटी है उनका भारत में ही निर्माण करने की और भारत में ही उसको अपने जहाजों पे लगाने की। अगर आप देखिए, भारत में जहाज निर्माण का जो कार्य है वो अभी यहीं पे हो रहा है। कुछ दशक पहले हम लोग जहाज बाहर से मंगवाते थे, आज जहाज घर में बन रहे हैं। और जिसके कारण, अगर आप दोबारा से इसी 3 जहाजों का उदाहरण लेंगे, तो 200 एमएसएमई जैसा आपने बताया, करीब करीब 4,000-4,500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 10,000 के करीब लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिनमें कह सकते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है।
1: जी कॉमोडोर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि किसी देश की समुद्री शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका आर्थिक और सामरिक

0: प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के ही शब्द।
1: मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा।
0: कॉमोडोर जोशी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और अब आपसे ये बात करना चाहूंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय नौसेना ने इसे एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि स्टेल्थ फ्रिगेट आखिर होता क्या है।
2: अभी आप देखें, इसके लिए जो स्टेल्थ शब्द है उसका मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब है छुपा हुआ, आंखों को एकदम ना दिखे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो अगर आप देखिए, पुराने जो पहले जो जहाज बनते थे, आप उनको अपने से दूरबीनों से या अपनी आंखों से थोड़े डिस्टेंस तक देख सकते थे। बट आजकल जो जहाज बन रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो आज की डेट में करीब 10 से 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को, उसकी जो प्रेजेंस है कि जहाज मौजूद है कि नहीं 300 किलोमीटर दूर, उसको देखने की क्षमता रखते हैं। बट अगर जहाज की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, उसका निर्माण ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रेडार है जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को देख सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दूसरे जहाज की अगर कंस्ट्रक्शन एक अलग तरह से हो तो ये रेडार जो है वो देख नहीं पाता है उसको। तो रेडार जो एक इक्विपमेंट है, वो एक बीम फेंकता है, वो बीम वापिस आती है दूसरे जो टारगेट जहाज है उससे। लेकिन जो स्टेल्थ शिप है वो टारगेट, वो जो बीम उसके ऊपर जाएगी, उस बीम को कहीं और डायरेक्ट कर देगा ताकि वो जिसने बीम आपके पास भेजी है उस जहाज को वापस ना मिले, उस जहाज को आपकी प्रेजेंस का, आपके वहां मौजूद होने का पता नहीं लगेगा। इस जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसमें सिर्फ जहाज निर्माण नहीं, उसका जो पेंट लगाया जाता है उसका भी योगदान रहता है।
0: आपने काफी विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि आखिर स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कॉमोडोर जोशी, और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और इस ही दिन सर्वे वेसल लार्ज INS संशोधक को भी नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज की भूमिका क्या रहेगी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
2: इंडियन नेवी में जो सर्वे वेसल्स है उनका काम, जैसे कि वो नाम दर्शा रहा है, सर्वे करना है। मतलब उसको नीचे, जो समुद्र के नीचे है उसको देखना है कि क्या चीजें मौजूद हैं, कुछ डेबरी है क्या, कुछ शिप्स का रैक है क्या, उसमें समुद्र का जो बॉटम है उसमें इवन नहीं होता है। जैसे सड़क ऊंच नीच होती है, वैसे समुद्र का जो नीचे का हिस्सा रहता है, जो पानी के नीचे, वो भी ऊंचा और नीचा रहता है। तो अगर कोई जहाज किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहां उसको सफिशियंट डेप्थ नहीं है, जहां गहराई नहीं मिल रही है, तो जहाज के ग्राउंडिंग होने का खतरा रहता है। तो अब जहाज को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है? तो वो चार्ट में उनकी डेप्थ वगैरह लिखी जाती है, और वो डेप्थ कौन लिखता है, शिपरेक इंडिकेट कौन करता है, डेबरी है करके इंडिकेट कौन करता है, वो सर्वे वेसल्स जो है वो सर्वे करते हैं, और वो फाइनली इंफॉर्मेशन चार्ट्स पे दर्शा दी जाती है। और अगर कोई शिपरेक वगैरह है तो मरीनर्स को सबको बता भी दिया जाता है बुलेटिन्स के द्वारा कि इस एरिया में फला फला जगह पे एक शिपरेक है, आप इस जगह से ट्रांजिट मत कीजिए। तो इन जहाजों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। संशोधक जो है, हमारे पास अभी करीब करीब चार सर्वे वेसल्स हैं, उसमें से संशोधक जो है वो लेटेस्ट परसों कमीशन हुआ है, और इसमें अंडरवाटर सोनार साइट स्कैन लगा हुआ है, जो साइट स्कैन सोनार है उससे जहाज की कैपेबिलिटी दाएं बाएं देखने की, नीचे देखने की, किसी एक टाइम पे ज्यादा अच्छे से बढ़ती है।

0: और जो फिर वो एक पिक्चर बनती है उसके सामने कि एक समुद्र के जो नीचे सतह है वो कैसे दिख रही है, वो ज्यादा अच्छे से आती है सामने। तो इनकी जो सर्वे कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा बेहतर है, ये वाले जहाज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसके कारण पूरा मैरिटाइम सेक्टर, विच डजेंट ओनली इंक्लूड भारतीय नौसेना के जहाज अपितु बाकी जो कमर्शियल ट्रेडिंग है उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो ये काम करते हैं अपने सर्वे वेसल्स।
1: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगी INS अग्रय की। ये अर्नाला श्रेणी का है और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को किस प्रकार मजबूत कर रहा है?
0: जी, जैसा कि नाम में आ रहा है, शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो का मतलब है कि ज्यादा गहराई भी नहीं, उसका काम है कि वो जो कम गहराई वाले एरिया है उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकता है। एंटी सबमरीन का मतलब है कि जो समुंदर के नीचे से जहाज को अटैक होने के चांसेस हैं वो उनका पता लगा सकता है। तो काफी सारे जहाज हैं जो थोड़े डीप वाटर्स में जाके वो अपने ASW ऑपरेशन, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये वाला जो जहाज है ये शैलो वाटर में भी कर सकता है। आजकल की डेट में एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी बढ़ गया है, हमको पता नहीं चलता है कि किस जगह से हमको एक वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट आ सकता है, तो कई बार शैलो वाटर से भी थ्रेट होता है। तो ये जो जहाज है ये वहां पे पता कर सकता है कि वहां से कोई थ्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके पास में इसके लिए एडवांस सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा थ्रेट है जो कंफर्म भी हो जाता है, लाइट वेट टॉर्पिडोज लगे हुए हैं जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन जहाजों के द्वारा।
1: कमांडर जोशी, आपसे सबसे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि महासागर यानी कि ओशन और डीप सीज में क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और ऐसे में जितना हम अपने मैरिटाइम डोमेन को स्ट्रांग करेंगे, तो आपको लगता है कि मैरिटाइम डोमेन को जितना हम सशक्त बनाएंगे उससे हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस बाकी के बाहर के देशों पर कम हो पाएगी?
0: जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये अगर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने जो हर एक कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो उसके शोर तटीय लाइन से करीब 200 माइल्स तक समुन्दर के अंदर, वो EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर जो अगर नीचे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे तो वो देश के समझे जाते हैं, उसके बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। तो अगर हमारा जो माइनिंग कैपेबिलिटी है वो अगर सशक्त बनाई जाए, डीप अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी, तो समुन्दर की सतह के नीचे ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे अपने डे टू डे इवन मेडिकल अगर आप देखे जाएं, या फिर किसी और भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काफी सारे मिनरल्स हैं जो देश में अपनी जमीन पे नहीं है लेकिन हो सकता है वो सागर के अंदर मौजूद हो और जो हमें जरूरत है। तो हमारा सबसे पहले बनता है कि वो ये जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहे, उसमें ज्यादा अपने को वल्नरेबिलिटीज ना रहे, अपने को उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे बाकी लोगों से, क्योंकि ये जो है ये ऑल्दो EEZ बोल सकते हैं बट नेविगेशन फ्रीडम सभी कंट्रीज को, सभी जहाजों को वहां से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज रुक जाएंगे, आना जाना रोक दिया जाएगा, तो जहाज आते जाते रहेंगे दूसरी कंट्रीज के, लेकिन हमारा इतना ये होना चाहिए कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं नीचे तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई और उसपे हक नहीं जमा पाएगा, तो ये अपना एरिया बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए देके बनाया गया हो, ये सारा का सारा इसको इसका जो एक अफेक्ट बोलते हैं, विच इज एक डोमिनो अफेक्ट बनेगा इसका, उसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार का इस टाइम जो एक फोकस एरिया लग रहा है, एक ऐसा एक अंदाजा है कि भारत को एक समुद्री शक्ति बनाया जाए।
1: जी कॉमोडोर जोशी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस पूरे विषय के बारे में हमें समझाया। आपने हमें ये भी बताया कि क्या महत्व है उन तीनों शिप्स का जो कल कमीशन हुई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को दिया, उसके लिए आपका बहुत

0: nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सीतर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की

0: शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
3: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

0: एस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिले भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिले भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफ्फुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज सुपहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाके एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC लखनऊ में दाखिल कराया गया है। ज्यादातर अमवात घुटन के सबब हुई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: बताया जा रहा है कि ये आग इंस्टीट्यूट की इमारत के अंदर लगी और तेजी के साथ फैल गई और लोग अंदर फंसे रह गए। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। आग बुझाने वाले अमले की टीमें, पुलिस अहलकार और जिला इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग बुझाने वाले अमले के अफराद ने दीवार को तोड़ कर और इमारत में दाखिल होकर लोगों को बचाया। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर मुश्तमिल आला सतह की एक टीम इस मामले की तहकीकात करेगी और आग लगने की वजह का तयन करेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसे न हों।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों के अपने दौरों को बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। उन्होंने जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में वफात पाने वाले अफराद के तहीं अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने महलूकीन के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रूपये मुआवजे का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हजार रूपये दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिले भरोसा मईशत है और ये एक काबिले भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गई। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
5: भारत जो कर रहा है

0: वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरों ने पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबरान पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबरान असेंबली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नजरियात को महफूज रखना और पार्टी के हिन्दुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबेन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमू दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अजम से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के अपने हम मनसब बदसित्सक बतमुख से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने बताया कि इस तबादला ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी कुव्वत और मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाहियत साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और जरई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौकों के बारे में भी बातचीत की। बीजेपी की क्यादत वाली मगरबी बंगाल सरकार ने आज 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में समाजी फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोजगार पैदा करने पर खास जोर दिया गया है। बजट में ख्वातीन पर मरकूज कई इकदाम का ऐलान भी किया गया। 6,070 करोड़ रूपये के खसारे वाला बजट पेश करते हुए वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने इसे एक तरक्की याफ्ता बंगाल बनाने के लिए एक रोड मैप करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत का बकाया कर्ज 8,00,000 करोड़ पैसे तजावुज कर गया है, इसमें माली नज्म जब्त को अव्वलीन तरजीह दी गई है। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की हिफाजत और रेलवे के कामकाज की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की खातिर मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर रूट पर ट्रेन की हिफाजत के खुदकार निजाम कवच को नस्ब करने की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मशरकी साहिली रेलवे के 6 अहम रेलवे सेक्शन पर मुश्तमिल है जिनमें बगवापाल बुद्धापंख, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बालनगीर, गुन्नूपुर नौपाड़ा, लांजीगढ़, जूनागढ़ और बबीली सलूर शामिल हैं। इन रास्तों पर कवच निजाम की तंसीब से रेलवे के कामकाज के हिफाजती मियार में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि ये खुदकार निजाम ट्रेन की हिफाजत और ट्रेनों की टक्कर से बचाव के लिए जदीद सलाहियतें फराहम करता है। वजारत ने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट से ओडिशा और मशरकी साहिली रेलवे के जेर इंतजाम इलाकों में मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों दोनों किस्म की ट्रेन खिदमात को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा

प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के उस जारी मिशन को भी तकवीत देगा जिसका मकसद ज्यादा मसरूफ और कलीदी अहमियत के हामिल रेलवे रास्ते पर कवच निजाम की कवरेज की तौसी करना है। ये आकाशवाणी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टार्मर ने अपने ओहदे से और लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह खुद अपनी ही पार्टी के बढ़ते हुए दबाव के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर उनकी मुद्दत कार का इख्तिताम हो गया। अपने इस्तीफे के मुतालिक बयान देते हुए जनाब स्टार्मर ने 2 साल कबल डाउनिंग स्ट्रीट पर अपनी आमद को अपनी जिंदगी का फख्र से भरपूर एक लम्हा करार दिया और कहा कि उन्होंने सियासत में लाखों अफराद की जिंदगी को तब्दील करने के मकसद से कदम रखा था। इधर सीनियर सियासतदान एंडी बर्नहम ने केर स्टार्मर की जगह लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने की अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के अगले ओहदेदार के तायुन के लिए दौड़ अगले माह शुरू होगी। लेबर पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 9 जुलाई से नामजदगियां कबूल करना शुरू करने का ऐलान किया है। दोहा में भारतीय सिफारतखाना ने कल रैस लेफन सनती शहर में पेश आए अफसोसनाक वाकये पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। हुक्काम के मुताबिक इस वाकये में कई लोग जख्मी हो गए और कुछ अफराद लापता हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सिफारतखाना ने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। किसी भी तरह की मदद और पूछताछ के लिए सिफारतखाना से हेल्पलाइन नंबर +97455647502 या +97455348483 और ईमेल cons.doha@mea.gov.in पर राब्ता किया जा सकता है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स के 11 मेंबर मुल्कों के सिक्योरिटी सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। मीटिंग के दौरान होने वाली बातचीत में कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बदलती हुई नौइयत के अलावा उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल पर भी गौर खौस किया जा रहा है। इस मीटिंग के मौके पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। तरफेन ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरतहाल का जायजा लिया और ब्रिक्स प्लेटफार्म के तहत तआवुन और भारत ईरान दोतरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। निशानेबाजी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत ने मजीद 4 तमगे जीतकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और वो तमगे के लिहाज से सरे फहरिस्त है। 9 उम्र निशानेबाज प्रीतम केंद्रे ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल जूनियर मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया। इस तरह उन्होंने चैंपियनशिप में भारत के लिए 5वां सोने का तमगा जीता। ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल टीम मुकाबले में अंजलि महेंद्र भागवत, परीक्षा गुप्ता और निथिला आईवी डार्लिंग प्रवीण क्रिस्टोफर पर मुश्तमिल टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। भारत ने मर्दों के 25 मीटर पिस्टल जूनियर टीम मुकाबले में भी कांसे का तमगा हासिल किया। अभिनव चौधरी, राजचंद्र और जतिन पर मुश्तमिल टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा जीता। इससे पहले अनवी राठौड़ ने ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। इस तरह भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 12 हो गई है। इसमें सोने के 5, चांदी का 1 और कांसे के 6 तमगे शामिल हैं। फीफा आलमी कप 2026 में आज रात ग्रुप जे के एक मैच में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। मैच अमेरिका के अर्लिंगटन में होगा। रात देर गए 2:30 बजे फिलाडेल्फिया में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा। इससे कबल आज सुबह मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 गोल से हराकर पहली मरतबा आलमी कप का कोई मैच जीता और इस तरह उसे ग्रुप जी में पहला मकाम हासिल हो गया। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है।
शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेन्दु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-04-81 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-44-44 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेन्दु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहां हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहां पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स है वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला।
2: रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं।

0: इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए है।
1: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
2: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में, वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहां रह जाता है, तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम वो 15,000 रूपये,
1: जी
2: तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रूपये तक मिलते हैं, और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए, तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रूपये तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने,
2: 6 महीने
1: के
2: दो दो बार में दिया
1: जी
2: जाता
1: जी
2: है।
1: आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
2: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपकी कंपनी जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहां आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे, तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉय का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सबके लिए क्या प्रावधान है?
2: कंपनी के लिए दो तीन चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में, साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रूपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रूपये, अगर 20,000 रूपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रूपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रूपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रूपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है, और ये एम्प्लॉयर को प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा। अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
2: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनके बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हाँ जी थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
4: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का ही हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन, क्या
1: पात्रता क्या होनी चाहिए?
0: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताए कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाए।

0: जाएगा और उसके बाद एडिशनल सिक्स मंथ्स के बाद आपको दूसरा केस दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उन सबके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आप आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
2: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम दो भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज बता दूं आपको कि जहां पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, दो आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए। तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
3: मैडम कर दिया माना।
1: जी जी,
3: कर दिया कर दिया।
1: सवाल
3: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ एनआईसी मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी,
3: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग, लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुनीन्द्र जी,
2: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग आपके जो भी यहां पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
4: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी,
4: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है, जैसे ज्वाइंट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, और कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणीत जी,
0: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है, आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है या नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थी सविता राय और आप सुन रहे थे राग नद में ख्याल गायन, बोल थे साजन अब तो आजा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पर

0: सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched

शुभरात्रि, जय हिंद। सुबह के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभरात्रि, जय हिंद।